ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 अगस्त सन 2026 सवेरे के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे।
1: समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय

सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं एसओपी को तैयार करने के लिए बहु एजेंसी केंद्र एमएसी मंचों पर उपलब्ध सूचनाओं का एआई आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण भगोड़ों को वापस लाकर और अनुपस्थिति में सुनवाई के प्रावधानों का उपयोग करके मुकदमों में तेजी लाने और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यूएपीए मामलों की जांच करते समय व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। दो दिन का यह सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से शुरू होने वाली कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारियों को मजबूत करना, निवेश संबंधों को गहरा करना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र में माओवादियों के एक ठिकाने से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर जिला सुरक्षा बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर लड़ाकों ने कल भंडारपदर और मुनुरुकोंडा के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा के महासचिव संगठन बीएल संतोष ने पटियाला में कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और पार्टी चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। श्री संतोष पंजाब के दो दिन के दौरे पर हैं। मिजोरम विधानसभा का दो दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। दो दिन का यह सत्र बुधवार को समाप्त होगा। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि नए प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के राजस्व के सभी संभावित स्रोतों को रोकना है। उन्होंने अन्य देशों को ईरान के साथ आर्थिक संबंध न तोड़ने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि संघर्ष के अस्पष्ट क्षेत्रों में काम करना अब स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने किसी भी ऐसे देश का नाम नहीं लिया जिस पर प्रतिबंध लग सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सैनिक कहते हैं, हम अपने वतन के वास्ते अपना जीवन न्योछावर कर देंगे, तिरंगे की शान में अपना हर श्वास समर्पित कर देंगे, देश की आन बान और सम्मान की रक्षा हेतु हंसते हंसते अपने प्राण भी अर्पित कर देंगे।

नंदी है, दूसरी ओर सिंह, कहीं मूषक है तो कहीं मयूर, कहीं नाग है तो कहीं गण, स्वभाव में भिन्नता होने पर भी सब एक साथ रहते हैं। यह हमें परिवार और समाज में सामंजस्य, सहिष्णुता और परस्पर सम्मान का संदेश देता है। मतभेद होना स्वाभाविक है, परंतु मनभेद नहीं होना चाहिए।

यही सत्य दर्पण, इसी मंत्र मणि को करो मन समर्पण, यही सुंदर।

माँ, आपने हमें जन्म दिया, पालन किया और जीवन की प्रत्येक कठिन घड़ी में अदृश्य रूप में हमारा हाथ थामे रखा। जब हम निराश होते हैं तब आप आशा बनकर आती हैं। जब हम भयभीत होते हैं तब आप साहस बन जाती हैं। जब हम अंधकार में भटकते हैं तब आप ज्ञान का दीप प्रज्वलित करती हैं।

राधा और कृष्ण का प्रेम केवल शब्दों का नहीं बल्कि भावों का संवाद है। जहां शब्द मौन हो जाते हैं वहां प्रेम अपनी सबसे मधुर अभिव्यक्ति पाता है। राधिका का मौन ही उनका प्रेम बन जाता है और श्री कृष्ण की बांसुरी उस प्रेम की भाषा। बांसुरी के मधुर स्वरों में अनुराग, समर्पण और भक्ति का ऐसा संगम है जो सीधे हृदय को स्पर्श करता है। राधा की मुस्कान और कान्हा की बांसुरी मिलकर वृंदावन की उस अलौकिक छवि का सृजन करती है जहां प्रेम में शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, प्रसारण आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से किया जा रहा था।
1: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
2: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
3: आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सवेरे के 6:30 होने वाले हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं इस समय हम प्रतिदिन हमारा कार्यक्रम चिंतन। लीजिए सुनिए कुछ अनमोल विचार आज के चिंतन में।
1: प्रकृति का सबसे मौलिक नियम परिवर्तन है। हम अक्सर अंत शब्द से डरते हैं क्योंकि यह अनिश्चितता और विदा का प्रतीक लगता है, लेकिन यदि गहराई से एक विचार किया जाए तो अंत एक पूर्ण विराम नहीं बल्कि एक अल्प विराम है जो अगली पंक्ति की तैयारी करता है। जब तक बीज मिट्टी में मिलकर अपना अस्तित्व समाप्त नहीं करता तब तक एक विशाल वृक्ष का आरंभ संभव नहीं है। पतझड़ में पत्तों का गिरना एक अंत है, लेकिन यह अनिवार्य है ताकि वसंत में नई कोपले फूट सके। सूर्यास्त एक दिन का अंत है, लेकिन यही वह घटना है जो सितारों के उदय और अगले दिन की नई भोर का मार्ग प्रशस्त करती है। समुद्र का पानी भाप बनकर अपना स्वरूप खत्म करता है, तभी वह बादलों के रूप में नया जीवन पाकर वर्षा के रूप में फिर से धरती पर लौटता है। भारतीय दर्शन में शिव को संहारक कहा गया है। यहाँ संहार का अर्थ विनाश नहीं बल्कि पुनरुद्धार है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम् जन्म मृतस्य च, यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी

0: मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। ये चक्र दर्शाता है कि आत्मा कभी मरती नहीं, वो केवल एक पुराने अध्याय को समाप्त कर नए अध्याय शुरू करती है। बौद्ध दर्शन में भी अनित्यता का सिद्धांत यही सिखाता है कि हर पुरानी अवस्था का विसर्जन ही नई अवस्था का सृजन है। मानव जीवन में हम कई बार अंत का अनुभव करते हैं, जैसे शिक्षा का समाप्त होना, किसी नौकरी का छूटना या किसी प्रिय रिश्ते का टूटना। एक व्यापार का विफल होना उस पद्धति का अंत है जो काम नहीं कर रही थी, ये उस अनुभव का आरंभ है जो भविष्य की सफलता की नींव बनेगा। विज्ञान का ऊर्जा संरक्षण का नियम भी इसी दर्शन की पुष्टि करता है। ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जब एक मोमबत्ती जलकर नष्ट होती है तो वह प्रकाश और ऊष्मा के रूप में नया स्वरूप ले चुकी होती है। ब्रह्मांड में एक तारे का सुपरनोवा यानी विस्फोट होना नए ग्रहों और जीवन के लिए आवश्यक तत्वों का आरंभ होता है। जो लोग अंत को स्वीकार कर लेते हैं वे ही नई शुरुआत का आनंद ले पाते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से पुरानी आदतों या अतीत के बोझ को छोड़ना ही मानसिक स्वास्थ्य का आरंभ है। जब हम पुरानी कहानियों को पीछे छोड़ते हैं तभी हम अपने जीवन की नई पटकथा लिखने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अंत ही आरंभ है एक सुविचार नहीं है बल्कि जीने की एक कला है। यह हमें सिखाता है कि अतीत के जाने पर शोक न करें, परिवर्तन को साहस के साथ गले लगाएं, हर विदाई में एक स्वागत की संभावना तलाशें। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है बल्कि एक महान यात्रा का नया पड़ाव है। इसी तरह आज की हर मुश्किल घड़ी कल की नई संभावना का गर्भ है। इसलिए जब कभी हमें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो समझ लीजिए कि अब बहुत कुछ ही सुंदर और नया शुरू होने वाला है। नए वर्ष का आगमन अंत ही आरंभ के दर्शन का सबसे जीवंत और उत्सवपूर्ण उदाहरण है। हर साल 31 दिसंबर की याद ही रात को हम एक साथ दो विपरीत भावनाओं का अनुभव करते हैं, बीते हुए वर्ष की विदाई और आने वाले वर्ष का स्वागत। बीता हुआ वर्ष अपनी सफलताओं, असफलताओं, खट्टी मीठी यादों और सीखों के साथ अंत की ओर बढ़ता है। कैलेंडर का आखिरी पन्ना पलटना इस बात का प्रतीक है कि हमने समय के एक बड़े हिस्से को जी लिया है और अब उसे पीछे छोड़ने का वक्त है। यह अंत आवश्यक है ताकि हम पिछले बोझ को उतार कर नए संकल्पों के लिए जगह बना सकें। जनवरी की पहली तारीख एक तारीख ही नहीं बल्कि एक कोरा कागज है। यह हमें विश्वास दिलाता है चाहे पिछला साल कैसा भी रहा हो, ब्रह्मांड हमें फिर से शुरू करने का एक नया अवसर दे रहा है। नया साल हमें सिखाता है कि समय कभी रुकता नहीं। यह मनुष्य की अदम्य जिजीविषा को दर्शाता है कि वो हर अंत के बाद मुस्कुराकर एक नई शुरुआत करने का साहस रखता है। जब हम नया वर्ष मनाते हैं तो हम वास्तव में इसी सत्य का उत्सव मना रहे होते हैं। हम पुरानी डायरियों को बंद करते हैं ताकि नई डायरियां लिखी जा सके। ये चक्र हमें याद दिलाता है कि जीवन निरंतरता का नाम है, जहां हर ढलता हुआ सूरज अगले दिन के उदय की प्रतिज्ञा है। पुराना वर्ष एक अनुभवी शिक्षक की तरह विदा होता है और नया वर्ष एक उत्साहित शिष्य की तरह प्रवेश करता है। सार ही शीर्षक है कि अंत ही आरंभ है।
1: अभी आप सुन रहे थे कुछ अनमोल विचार आज के चिंतन में। विषय था अंत ही आरंभ है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज आप जानेंगे सोयाबीन की खेती में अल का उपयोग, इस विषय पर जानकारी। आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारे किसान और कृषि क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आज कृषि के क्षेत्र में नई नई तकनीकें तेजी से आ रही हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण तकनीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, जिसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। आज मैं डॉक्टर सविता कोले, वैज्ञानिक राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर, आपसे इसी विषय पर बात करना चाहूँगी कि सोयाबीन की खेती में AI का उपयोग हम किस तरह कर सकते हैं और इससे हमारे किसानों को क्या लाभ हो सकता है। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि खेती में सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। कब

0: बुआई करनी है, फसल में रोग या कीट कब आ सकता है, उसका नियंत्रण कब करना है और मौसम के अनुसार क्या सावधानी रखनी है। इन सभी बातों की सही जानकारी किसान के लिए बहुत उपयोगी होती है। यहीं पर AI हमारी मदद कर सकता है। सरल भाषा में कहें तो AI एक ऐसी तकनीक है जो बहुत सारी जानकारी को जल्दी से समझकर उसका विश्लेषण करती है और हमें बेहतर निर्णय लेने में सहायता देती है। सोयाबीन की खेती में AI का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग रोग और कीट की पहचान में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसान की सोयाबीन की पत्ती या पौधे पर कोई असामान्य लक्षण दिखाई दे रहा है तो किसान उसकी तस्वीर लेकर AI आधारित मोबाइल ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। AI उस तस्वीर का विश्लेषण करके संभावित रोग या कीट की पहचान करने में सहायता करता है। इसके साथ ही किसान को उस रोग या कीट के प्रभावी नियंत्रण और प्रबंधन के उपायों की जानकारी भी मिल सकती है। यानी किसान को केवल यह पता नहीं चलता कि फसल में क्या समस्या है, बल्कि उस समस्या के समाधान के लिए क्या करना है, इसकी जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। AI का दूसरा महत्वपूर्ण उपयोग है रोग और कीट का पहले से पूर्वानुमान लगाना। यदि हमारे पास पिछले वर्षों के मौसम, तापमान, वर्षा, आर्द्रता और फसल से जुड़े आंकड़े उपलब्ध हैं तो AI इन आंकड़ों का विश्लेषण करके यह अनुमान लगाने में मदद करता है कि आने वाले दिनों में किसी रोग या कीट के प्रकोप की संभावना है या नहीं। अब इसमें IoT तकनीक भी हमारी मदद कर सकती है। IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में खेत में लगाए गए सेंसर तापमान, नमी, वर्षा और अन्य मौसम संबंधी आंकड़े लगातार रिकॉर्ड करते हैं। ये आंकड़े इंटरनेट के माध्यम से AI आधारित सॉफ्टवेयर तक पहुंचते हैं। AI इन आंकड़ों का विश्लेषण करके सोयाबीन के प्रमुख रोगों और कीटों के संभावित प्रकोप का पहले से पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। इस पूर्व चेतावनी के आधार पर किसान समय रहते उचित नियंत्रण एवं प्रबंधन उपाय कर सकता है और फसल को होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। इसे हम AI और IoT आधारित प्रिसीजन सोयाबीन फार्मिंग कह सकते हैं। AI का उपयोग खरपतवार की पहचान में भी किया जा सकता है। खेत में सोयाबीन और खरपतवार कई बार एक जैसे दिखाई दे सकते हैं। AI आधारित इमेज तकनीक से खरपतवार की पहचान करके उसके नियंत्रण के लिए उचित सलाह दी जा सकती है। इससे अनावश्यक खरपतवार नाशी के प्रयोग को कम करने और खेती की लागत घटाने में मदद मिल सकती है। इसी तरह मौसम आधारित कृषि सलाह में भी AI उपयोगी है। मौसम और फसल की स्थिति से जुड़ी जानकारी का विश्लेषण करके किसान को कृषि कार्यों की बेहतर योजना बनाने में सहायता मिल सकती है। भविष्य में ड्रोन, सेंसर, रिमोट सेंसिंग और AI को एक साथ जोड़कर खेती की निगरानी, फसल की स्थिति का आकलन और आवश्यकता के अनुसार कृषि कार्यों की योजना बनाने में भी मदद ली जा सकती है। किसान भाइयों, इसी दिशा में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर ने सोयाबीन ज्ञान नाम का AI पावर्ड मोबाइल ऐप विकसित किया है। इसमें किसानों के लिए AI आधारित फोटो से रोग एवं कीट की पहचान तथा उनके प्रभावी नियंत्रण की सलाह, AI IoT आधारित मौसम आधारित रोग एवं कीट पूर्व चेतावनी उपलब्ध हैं। इसके अलावा ऐप में सोयाबीन की खेती की सलाह, अच्छी कृषि पद्धतियाँ, साप्ताहिक सोयाबीन सलाह और मंडी भाव जैसी उपयोगी जानकारी भी उपलब्ध हैं। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। जय किसान, जय भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। सोयाबीन की फसल में AI का उपयोग कैसे किया जाए, इस विषय पर जानकारी दी जा रही थी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं समूह स्वरों में श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग।

राजा जनक के धनुष यज्ञ में श्री राम के हाथों शिवजी का कठोर धनुष भंग हो चुका है। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि गूंज रही है। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग श्री राम की कीर्ति का गान कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई आदि मंगलवाद्यों का संगीत ढोल और नगाड़ों की ताल पर चारों ओर व्याप्त है। राजा जनक की चिंता दूर हो चुकी है। सखियों समेत रानी अत्यंत हर्षित हैं। दृश्य कुछ ऐसा मानो सूखते धान के खेत को पानी मिल गया है। किंतु धनुष टूट जाने के फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा में भाग लेने आए राजे महाराजे इस प्रकार श्रीहीन हो गए हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही दीपक की शोभा समाप्त हो जाती है। उधर जनक नंदिनी सीता रूपी चातकी को मानो स्वाति नक्षत्र का वर्षा जल मिल गया है। कुल पुरोहित शतानंद जी की आज्ञा पाकर हाथों में जयमाल लिए सखियों के मंगलाचार गायन के साथ सीता बालहंसनी की चाल से श्री राम का वरण करने चली। तन में संकोच है किंतु मन में है परम उत्साह। उन्होंने दोनों हाथों से जयमाल उठाई किंतु प्रेम विवश होने से वो पहनाई नहीं जाती। हाथों की शोभा ऐसी मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को संकोच रूपी भय के साथ जयमाल पहनाने को उत्सुक हों।

समूह स्वरों में भी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब आपको देते हैं जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण में

0: सवेरे 7:20 पर आप सुनेंगे सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरे पल, 8:30 पर खेलों पर आधारित कार्यक्रम खेल पत्रिका सुनवाई जाएगा। लोक संगीत का समय रहेगा सवेरे 9:00 का और शाम 6:45 का। कलाकार होंगी तृप्ति नागर और साथी। सुगम संगीत में मोहम्मद रिजवान खान को सुनवाएंगे। समय रहेगा सवेरे 9:15 का और शाम 6:30 का। शास्त्रीय संगीत का समय रहेगा हमेशा की तरह सुबह 9:30 का। इस कार्यक्रम में आज सुनिएगा देव प्रसाद चक्रवर्ती से सितार वादन, राग होगा भटियार। सवेरे 10:00 जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से रिले की जाएगी। श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन प्रसारित होगा सवेरे 10:05 पर। श्रोता अगर हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं और अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं। हमारे फोन नंबर होंगे 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड होगा 0731। तो श्रोता समय याद रखेंगे सवेरे 10:05 से सवेरे 11:00 तक। दिन में 1:00 महिला साथियों का कार्यक्रम होगा महिला कार्यक्रम। आरंभिक चर्चा होगी राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा पर। योजना क्रम के तहत आयुष्मान भारत योजना पर जानकारी होगी। मेरी उड़ान क्रम में सिलाई क्लास संचालिका वंदना मालाकार से चर्चा होगी। फूड जोन में मूंग दाल का चीला बनाना सिखाएंगे। रूप लावण्य क्रम में मानसून में चिपचिपी त्वचा से राहत के लिए अपनाए ये टिप्स दिए जाएंगे। और काम की बातें के अंतर्गत बारिश में घर में रखे ये सावधानियां, इस विषय पर चर्चा होगी। युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी होगा शाम 5:00। आज का क्रम में हमारे शहर के तहत शहडोल पर चर्चा होगी और कुछ अन्य सेगमेंट्स भी होंगे। 5:45 पर फिल्म संगीत सुनिएगा। 6:00 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। 7:20 पर चर्चा एवं लोक संगीत और 7:30 प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आकाशवाणी भोपाल से रिले होगा। रात 8:00 यहीं से यानी आकाशवाणी भोपाल से सुर्खियों में कार्यक्रम रिले होगा। 8:15 पर दिल ने फिर याद किया। 9:15 पर चित्रगीत। 9:30 उर्दू कार्यक्रम कहकशा आकाशवाणी भोपाल से रिले होगा। और रात 10:00 श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन भावन का समय रहेगा। 10:30 शास्त्रीय संगीत में प्रवीण शर्मा का बांसुरी वादन सुनवाएंगे राग चंद्रकौंस में। तो श्रोताओं ये तो थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण में, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी इंदौर। आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर और गूगल पर आकाशवाणी इंदौर लाइव सर्च करके भी सुन सकते हैं। इस समय सवेरे के 6:55 होने वाले हैं। वक्त है समाचारों का, पहले संस्कृत में और उसके बाद हिंदी में। रिले होंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी युव कूटनीतिज्ञान स्वनियुक्ति देशेषु जनस्तरे दृढ़ संपर्कम् स्थापयितुम् तथा स्थानीय समुदायैः सह भारतस्य संबंधान् अधिकं सुदृढ़ीकर्तुं च प्रेरितवान्। सेवातीर्थे भारतीय विदेश सेवायाः गतवर्षीय समूहस्य प्रशिक्षु अधिकारिभिः सह संवादं कुर्वन् श्रीमोदी तान् पारंपरिक कूटनीतिक वृत्तेः परे स्वसंपर्क जालस्य विस्तारं कर्तुं अथ जनैः सह संपर्कं च सुदृढ़ीकर्तुं प्रोत्साहितवान्। असौ भारतस्य रिक्थ सम्बद्ध शक्तीनां प्रौद्योगिक्या नवोन्मेषेण प्रभावी सम्प्रेषणेन च सह संयोजनं कृत्वा भारतस्य वैश्विक सम्पर्कं अधिकं सुदृढीकर्तुं प्रेरितवान्। असौ भारतीयोपक्रमाणां अंकीयोपस्थितिं सुदृढीकर्तुं महत्त्वमपि प्रतिपादितवान्। विश्वस्य युवकेषु भारतं प्रति अधिक रुचिं जनयितुं भारत को जानिए इत्येतस्य प्रश्नोत्तर कार्यक्रमस्य उपयोगस्य असौ परामर्शं प्रदत्तवान्। प्रशिक्षु अधिकारिभिः स्वप्रशिक्षणस्य भारत दर्शनस्य च अनुभवाः अभिव्यक्ताः। अस्मिन् समूहे देशस्य विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्र शासित प्रदेशेभ्यश्च आगताः 50 भारतीय विदेश सेवा प्रशिक्षुअधिकारिणः सम्मिलिताः सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः सर्वेभ्यः संस्थानेभ्यः अन्तः प्रवेशस्य विरुद्धं कठोर पदक्षेपानि स्वीकर्तुं निर्देशं दत्तवान्। नवदिल्ल्याम् ऐषमः नवम राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति सम्मेलनस्य उद्घाटनं कुर्वन् श्री शाहः निर्देशितवान् यत् बहुसंस्थान केन्द्रस्य मञ्चे उपलब्धानां सूचनानां कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः आधारेण विश्लेषणं करणीयम्, येन विविध राष्ट्रिय सुरक्षाह्वानानां प्रतिकाराय मानक संचालन प्रक्रियाः निर्मातुं शक्यन्ते। सम्मेलनस्य प्रथमदिने राष्ट्रिय सुरक्षायाः महत्वपूर्णेषु पक्षेषु चर्चा अभवत्। तेषु आतंकवाद विरोधी आह्वानानां प्रतिकारः, बहुसंस्थान केन्द्र माध्यमेन गुप्त सूचनानां एकीकरणं, विश्लेषणं कार्यान्वयनं च मादक द्रव्याणां नियन्त्रण सम्बद्ध दृष्टिपत्रं, अवैध प्रवासिनां परिचयः निर्वासनं च तथा तेषां प्रतिकाराय नीति निर्माणं इत्यादयः विषयाः सम्मिलिताः आसन्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः ह्यः क्रेमलिन इत्यत्र रूसस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिन इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। उपवेशने द्विपक्षीय
2: भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने उन्हें पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों को भारत की सभ्यतागत शक्तियों को प्रौद्योगिकी, नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़कर भारत की वैश्विक भागीदारी और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से भारत के वैश्विक आर्थिक संबंधों को गति देने में प्रेरक की भूमिका निभाने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का एआई आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन पर बल दिया। दो दिन की इस सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा महासचिव बीएल संतोष ने पटियाला में कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और पार्टी चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। श्री संतोष पंजाब के दो दिन के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से शुरू होने वाली कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारियों को मजबूत करना, निवेश संबंधों को प्रगाढ़ करना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाना है। टोरंटो में अपनी यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री फ्रांसवा फिलिप शोपानियो के साथ

0: आर्थिक और वित्तीय संवाद में भाग लेंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल एक वर्चुअल बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ उभरती प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा की। श्री जोशी ने बताया कि चर्चा में खेलो इंडिया अभियान भी शामिल था। इसमें शिक्षण संस्थानों में खेलों को बढ़ावा देने, विद्यार्थियों की व्यापक भागीदारी प्रोत्साहित करने और युवाओं में खेल प्रतिभाओं को निखारने पर बल दिया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में माओवादियों के एक ठिकाने से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर जिला सुरक्षा बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर लड़ाकों ने कल भंडारपदर और मुरुकोंडा के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान एसएलआर, राइफल, बीजल लॉन्चर और थूथन लोडिंग बंदूकों सहित 23 हथियार बरामद किए गए। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अमरीका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमरीका के वित्त मंत्री स्कॉट बिसेंट ने कहा कि नए प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के राजस्व के सभी संभावित स्रोतों को रोकना है। उन्होंने अन्य देशों को ईरान के साथ आर्थिक संबंध न तोड़ने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: मालवा की शान,
6: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म गीत।
5: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
7: आरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
8: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: और
1: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: इस समय आप हैं हमारे साथ।
3: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियाँ हिमालय की।
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं।
2: और झूलते झूलते सुनते हैं
0: मालवा की शान आकाशवाणी
3: इंदौर।

0: अरे दीदी धीरे धीरे।
1: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आज सवेरे 10:05 से सवेरे 11 बजे तक आप सुनेंगे अपना बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम MH हॉटलाइन। इस कार्यक्रम में श्रोता हमसे फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं। हमें फ़ोन करने के लिए और अपना गीत सुनने के लिए हमारे नंबर हैं 2710223 और 2710224, इंदौर का STD कोड 0731। तो श्रोताओं, याद रखें, समय रहेगा सवेरे 10:05 से 11 बजे तक आपका पसंदीदा कार्यक्रम MH हॉटलाइन। और इसी तरह से रात 10 बजे आप सुन सकते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, जो कि पत्रों पर आधारित होता है, मन भावन। इस कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर। सवेरे के 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से रिले होंगे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रादेशिक समाचार बस कुछ ही पलों में होंगे।
3: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से की मुलाकात। ग्वालियर के डबरा में आज बलराम कृषि महोत्सव, किसानों से वर्चुअल संवाद करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 कॉन्क्लेव में विकास के लिए मजबूत साझेदारी पर जोर। और प्रदेश में आज आधे से ज्यादा हिस्से में तेज बारिश का दौर जारी, 5 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के 50 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने युवा राजनयिकों से भारत की सभ्यता, संस्कृति और तकनीक को जोड़कर देश की वैश्विक भागीदारी मजबूत करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारी जिन देशों में तैनात हों वहां स्थानीय लोगों से सीधे जुड़ें और भारत के साथ उनके संबंधों को मजबूत करें। उन्होंने दूतावासों की डिजिटल सेवाओं को आसान, तेज और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने पर भी जोर दिया। भोपाल में कल समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 विषय पर आयोजित कॉन्क्लेव में राज्य के विकास के लिए केंद्रीय संस्थानों, सरकार, उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच मजबूत साझेदारी पर जोर दिया गया। संस्थानों ने शोध, कौशल विकास, तकनीकी नवाचार, कृषि उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन और डिजिटल गवर्नेंस में सहयोग की प्रतिबद्धता जताई। IIT इंदौर ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में विशेषज्ञता और 10,000 युवाओं को प्रशिक्षण देने की बात कही। सभी संस्थानों को एक संस्थान एक संकल्प के तहत ठोस कार्य योजना और मापनीय परिणामों के साथ 2047 के विकास लक्ष्य से जोड़ने पर सहमति बनी। ग्वालियर जिले के डबरा में आज बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जिले के किसानों से वर्चुअल संवाद करेंगे। कृषि उपज मंडी परिसर में होने वाले इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे। कार्यक्रम में किसानों को उन्नत कृषि तकनीकी, ड्रोन, स्मार्ट सिंचाई, डिजिटल कृषि सेवाओं और मौसम आधारित खेती की जानकारी दी जाएगी। वहीं कल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दतिया में बलराम कृषि महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसानों के खेत खलिहान और घर आंगन में खुशहाली लाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वनकर्मी प्रदेश के जंगल, जल, वन्यजीव और जैव विविधता की रक्षा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। कल भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने वन विभाग के 4,506 अधिकारी और कर्मचारियों को पदोन्नति मिलने पर बधाई दी। इनमें 188 सहायक वन संरक्षक, 2,821 वनपाल और 761 उप वन क्षेत्रपाल समेत अन्य कर्मचारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पदोन्नति के बाद खाली हुए पदों को भरने के लिए नई भर्ती के आदेश भी दिए गए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. यादव ने कहा,
1: लगभग 4,506 शासकीय सेवकों को पदोन्नत किया गया। हमारे अपने इस विभाग के लिए अकेले बात करूं तो 25,379 पद स्वीकृत है, 18,115 हमारे सभी पदों पर लोग काम कर रहे हैं, जब पदोन्नति का मौका मिला है। लेकिन इसके साथ साथ सभी विभागों में पदोन्नति के बाद हमने नवीन भर्ती के भी आदेश दिए हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल संबल योजना 2.0 के तहत 9,149 श्रमिक हितग्राहियों के खातों में 203 करोड़ रुपए की सहायता राशि सिंगल क्लिक से भेजी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबल योजना से अब तक प्रदेश के 1,84,00,000 से ज्यादा श्रमिकों को मुश्किल समय में आर्थिक सहारा मिला है। सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी योजना में शामिल किया है और संबल हितग्राहियों को आयुष्मान योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले 1 से 3 सितंबर तक 3 दिन विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कृष्ण लीला, नाटक, नृत्य, भाषण और निबंध प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। विद्यार्थियों को श्री कृष्ण के जीवन, गीता के ज्ञान और उनके आदर्शों से भी परिचित कराया जाएगा। जन्माष्टमी का मुख्य पर्व 4 सितंबर को मनाया जाएगा और इस दिन स्कूलों में अवकाश रहेगा। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान संशोधित डाक सेवा एप्लीकेशन और डाक मित्र ऐप लॉन्च किए। उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि डाक सेवा एप्लीकेशन के माध्यम से डाक विभाग की सेवाएं देश के नागरिकों के लिए आसान और अधिक सुलभ होंगी।
3: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाए। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अब सारे प्रोसेस

प्रयोगशालाओं, खेल, पेंटिंग और संगीत जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन, समय प्रबंधन और लगातार मेहनत के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान देने की अपील की। प्रदेश में सरकारी पैसों की निगरानी के लिए चल रही कार्रवाई के नतीजे सामने आए हैं। स्टेट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सेल की जांच के बाद 530 से ज्यादा आरोपियों पर FIR दर्ज की गई है। गंभीर मामलों में 22 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। अब तक गबन और गलत ट्रांसफर से जुड़ी 223 करोड़ रुपए की रकम सरकारी खजाने में वापस लाई जा चुकी है। SFIC ने 2011 से अब तक के लेनदेन की जांच में 315 करोड़ रुपए को संदिग्ध मानकर कार्रवाई की, जिसमें 61 करोड़ रुपए के गबन की वसूली और 162 करोड़ रुपए सरकारी खाते में जमा कराए गए। केंद्र सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। भोपाल में 15 जनवरी 2027 को भव्य आर्मी डे परेड का आयोजन किया जाएगा। मुख्य परेड भेल के कालीबाड़ी मार्ग पर होगी, जबकि टीटी नगर स्टेडियम में शौर्य संध्या का आयोजन किया जाएगा। जम्बूरी मैदान में सेना के अत्याधुनिक हथियारों और सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन होगा। वहीं बड़ा तालाब के VIP बोट क्लब क्षेत्र में इंटीग्रेटेड कॉम्बैट डिस्प्ले के जरिए सेना की सामरिक क्षमता और शौर्य दिखाया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG ने मानेसर स्थित ट्रेनिंग अकादमी में महिला पुलिस एवं केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए पहला कमांडो कन्वर्जन कोर्स शुरू किया है। 12 सप्ताह के इस प्रशिक्षण में महिला कर्मियों को शारीरिक प्रशिक्षण, हथियार संचालन, निशानेबाजी, सामरिक हस्तक्षेप और बंधक बचाव जैसी तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इंडियन शुगर एवं बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार मौजूद है और घबराहट कम होने पर कीमतों में गिरावट आ सकती है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में कीमतों में बढ़ोतरी मुख्य रूप से सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई है। बल्लानी ने इथेनॉल उत्पादन को चीनी की कीमत बढ़ने की वजह मानने से इनकार किया। उनका कहना है कि घरेलू खपत सरकार और उद्योग की प्राथमिकता है। वहीं दूसरी तरफ पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार ने एहतियात के तौर पर 10 लाख टन चीनी आयात करने का भी फैसला किया है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में आज आधे से ज्यादा हिस्से में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, बैतूल और राजगढ़ में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 25 जिलों में 2.5 इंच से ज्यादा बारिश होने की संभावना है, जबकि भोपाल समेत कई अन्य जिलों में भी तेज और हल्की बारिश होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार कलेक्टर कार्यालय में कल फोटो निर्वाचन नामावली के कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। सतना में वार्ड 1 से 45 तक पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष शिविर 24 अगस्त से 12 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे हैं। अशोकनगर कलेक्टर ने जिला जनगणना हस्त पुस्तिका की ग्राम एवं नगरी निकायवार अद्यतन रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। गुना में TB मुक्त भारत अभियान के तहत शासकीय जिला चिकित्सालय में 35वीं वाहिनी NCC कैडेट्स को TB वार्ड की व्यवस्थाओं, मरीजों के इलाज और आवश्यक सावधानियों की जानकारी दी गई। डिंडौरी के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान को सुंदर बनाने के उद्देश्य से रविवार को वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। शिवपुरी में सांदीपनी विद्यालय खनियाधाना में 12वीं की बोर्ड परीक्षा के प्रैक्टिकल एवं प्रोजेक्ट अंकों में लापरवाही बरतने पर प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया है। सिंगरौली में नगर निगम द्वारा बारिश में जल निकासी के लिए विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। उज्जैन में सावन माह की चौथी सवारी में बाबा महाकाल ने 4 स्वरूपों में भक्तों को दर्शन दिए। खंडवा में क्षेत्रीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने ओंकार पर्वत की परिक्रमा कर भगवान ओंकारेश्वर का अभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। बैतूल मुख्यालय स्थित ऑडिटोरियम में 24 अगस्त से 4 दिवसीय भव्य राखी मेले का शुभारंभ किया गया। और पन्ना जिले में मानसून की सक्रियता के चलते लगातार बारिश का दौर जारी है। बीती रात कई क्षेत्रों में तेज बारिश दर्ज की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से की मुलाकात। ग्वालियर के डबरा में आज बलराम कृषि महोत्सव, किसानों से वर्चुअल संवाद करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 कॉन्क्लेव में विकास के लिए मजबूत साझेदारी पर जोर। और प्रदेश में आज आधे से ज्यादा हिस्से में तेज बारिश का दौर। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

सुनहरे पल कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आइए इस कार्यक्रम में सुनवाते हैं कुछ सदाबहार फिल्मी गीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर के गाए गीत के साथ। गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत मदन मोहन का, और फिल्म का नाम देख कबीरा रोया।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना अभिलाषा फिल्म का गीत। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: सो योर प्लेस और माइन,
4: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
3: कॉन्डम? लेकिन हम तो
4: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
3: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
5: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: हेमलता की आवाज में अभी आपने सुना ये गीत। फिल्म का नाम था अखियों के झरोखों से। गीत और संगीत रविंद्र जैन का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: बुधवार की शाम आपकी पसंदीदा फिल्मों के नाम।
1: बंध के रक्षा बंधन से।
0: जी हाँ, युववाणी कार्यक्रम में इस बुधवार एक ही फिल्म से में हम लेकर आए हैं आपके लिए भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित फिल्म रक्षाबंधन।

0: तो इस बुधवार सुनना मत भूलिएगा ठीक शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी।
1: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आइए श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरे पल, और लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर, उदित नारायण।

0: बुधवार की शाम आपकी पसंदीदा फिल्मों के नाम।
1: बंध के रक्षा बंधन से।
0: जी हाँ, युववाणी कार्यक्रम में इस बुधवार एक ही फिल्म से में हम लेकर आए हैं आपके लिए भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित फिल्म रक्षा बंधन।

0: तो इस बुधवार सुनना मत भूलिएगा ठीक शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
6: आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया फागुन फिल्म का गीत, संगीत ओपी नैयर का।

तुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना मुझसे क्या।

0: बुधवार की शाम आपकी पसंदीदा फिल्मों के नाम।
1: बंध के रक्षा बंधन से।
0: जी हाँ, युववाणी कार्यक्रम में इस बुधवार एक ही फिल्म से में हम लेकर आए हैं आपके लिए भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित फिल्म रक्षाबंधन।
2: ये

राजकुमार फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की थी। गीतकार थे हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। और आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और हेमंत कुमार का गाया हुआ गीत। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और फिल्म का नाम जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली।

0: बुधवार की शाम आपकी पसंदीदा फिल्मों के नाम।
1: बंध के रक्षा बंधन से।
0: जी हाँ, युववाणी कार्यक्रम में इस बुधवार एक ही फिल्म से में हम लेकर आए हैं आपके लिए भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित फिल्म रक्षा बंधन।
2: Yeah!

0: तो इस बुधवार सुनना मत भूलिएगा ठीक शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी।
1: श्रोताओं, इस संदेश के पूर्व आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और हेमंत कुमार का गाया हुआ गीत। और इस गीत और इस संदेश के साथ ही आज का ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरे पल अब यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे सुनहरे पल, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेन देन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता करेंगे। और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में 2025 बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की वैश्विक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए देश की सभ्यगत खूबियों को तकनीकी नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़े। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से यह भी कहा कि वे दुनिया के साथ देश की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की सभ्यगत, सांस्कृतिक और भौगोलिक खूबियों को दुनिया के सामने लाकर भारत को एक आकर्षक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में काम करें। प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रशिक्षण और भारत दर्शन के अपने अनुभव प्रधानमंत्री मोदी से साझा किए। इस ग्रुप में भारतीय विदेश सेवा के 50 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल थे जो देश भर के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हैं। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का एआई आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद विरोधी चुनौतियों का सामना करने, बहु एजेंसी केंद्र के माध्यम से खुफिया जानकारी के एकीकरण, विश्लेषण और संचालन, मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए एक रणनीतिक दस्तावेज, अवैध प्रवासियों का पता लगाकर उन्हें निर्वासित करने, साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नीतिगत ढांचा और पाकिस्तान द्वारा परोक्ष युद्ध को लेकर चर्चा की गई। 2 दिन के इस सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश छोड़कर आए लोगों से नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नए आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर से कार्य करना शुरू कर देगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से 100 कोलकाता, 50 पहाड़ी क्षेत्रों और 50 समुद्र में तैनात किए जाएंगे। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली की रीढ़ बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए यूपीआई के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं। इससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। महानिदेशालय की अधिसूचना में सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के गेहूं और ड्यूरम गेहूं के निर्यात को प्रतिबंध से मुक्त घोषित कर दिया है। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों के इस मौसम में निरीक्षण गतिविधियों को तेज कर दिया है। विभाग ने ओखला सब्जी मंडी में निरीक्षण के दौरान 500 किलोग्राम से अधिक मिलावटी पनीर नष्ट कर दिया और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने पिछले 48 घंटों में दिल्ली के विभिन्न जिलों से खाद्य पदार्थों के 22 नमूने एकत्र किए और उन्हें विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा। भारतीय जनता पार्टी महासचिव बीएल संतोष ने पटियाला में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष के शुरू में होने हैं।
5: बीजेपी के संगठन महासचिव श्री संतोष की यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच फिर से गठबंधन की संभावना को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। उन्होंने कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और भाजपा भी बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और राज्य में अगली सरकार बनाएगी। पंजाब के 2 दिन के दौरे पर आए श्री संतोष ने कल पटियाला और

0: नोएडा में संगठनात्मक बैठकें की। आज वे लुधियाना, जलंधर और अमृतसर में संगठनात्मक बैठकें करेंगे। इन बैठकों में पूरे पंजाब से पार्टी कार्यकर्ता और नेता आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। आज शाम अमृतसर में भी राज्य के महासचिवों के साथ एक अलग बैठक संभावित है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: मिजोरम विधानसभा का दो दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। दो दिन का ये सत्र बुधवार को संपन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ लोगों की संगति में रहना और विद्वानों से सत्य पर चर्चा करना जीवन को समृद्ध बनाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जो लोग लोभ से मुक्त लोगों से मित्रता करते हैं वे कभी निराश नहीं होते। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल दो दिन की चीन यात्रा पर पेचिंग पहुंचे। डोभाल वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए एक पूर्व शर्त है। श्री डोभाल और श्री वांग दोनों ही सीमा वार्ता के लिए नामित विशेष प्रतिनिधि हैं। इसकी स्थापना 2003 में भारत चीन सीमा विवाद के व्यापक समाधान के लिए की गई थी। पिछले वर्ष अगस्त में चीन और भारत ने वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दों पर खुलकर और गहन विचार विमर्श किया और कई सामान्य सहमतियों पर पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमरीका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंध और वित्तीय संबंध मजबूत करना है और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। टोरंटो में यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद करेंगे। ये संवाद दोनों पक्षों को व्यापक आर्थिक विकास, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग, द्विपक्षीय निवेश के अवसरों और साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। केरल में आज उत्थरादम उत्सव मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 10 दिन तक चलने वाला ओणम उत्सव का अंतिम दिन है।
2: उत्थरादम सिर्फ तिरुओणम से पहले का दिन ही नहीं है बल्कि ये त्योहार की तैयारियों और आखिरी समय की खरीदारी करने का भी दिन है। पारंपरिक उत्थरादा पाशिल ने राज्य के बाजारों में रौनक ला दी है। घरों को रंग बिरंगे ओड़ा पूक्कलम फूलों की रंगोली से सजाया जा रहा है और साथ ही कल परोसे जाने वाले पारंपरिक ओड़ा साध्या ओणम के खास भोज की तैयारियां भी चल रही है। पूरे केरलम में कल से ओणम और पर्यटन सप्ताह समारोह शुरू हो गए हैं। तिरुवनंतपुरम और कई जिलों में इन समारोह के अंतर्गत कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और कर्नाटक में आज गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में सक्रिय कम दबाव का असर राज्य के कई हिस्सों में महसूस किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अभी भी सक्रिय है और उड़ीसा में मौसम पर इसका असर बना हुआ है। आईएमडी का कहना है कि आज से बारिश कम हो जाएगी लेकिन 30 अगस्त तक बारिश जारी रहने की उम्मीद है। आज सुबह तक 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 16 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। बाढ़ से प्रभावित भद्रक और जाजपुर में लगातार बारिश और जल भराव के कारण एहतियात के तौर पर कई संवेदनशील स्कूल आज बंद रखे गए हैं। इस बीच आखुआपदा में बैतरणी नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है। हीराकुद बांध के और गेट खोले जाने के कारण महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं जलका नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: बिहार में गंगा और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से पटना समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है।
4: गंगा और इसकी सहायक नदियों के उफान से भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के राघोपुर में रिंग बांध टूटने से बाढ़ का पानी गांव में फैल गया है। बेगूसराय जिले के झमटिया गांव के पास भी रिंग बांध करीब 30

0: की टूटने से कई पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। जल संसाधन विभाग की टीम बांधों की मरम्मत में जुटी है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को पूरी तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इधर गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आग्रह पर पश्चिम बंगाल सरकार ने फरक्का बैराज के सभी गेट खोल दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल एक वर्चुअल बैठक के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ उभरती प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा की। श्री जोशी ने बताया कि जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की खबर पर पंजाब केसरी ने लिखा है। राजनीतिक दायरे जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से लिखा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेल दिवस से पहले युवाओं को करेंगे संबोधित, देश भर के युवा और खिलाड़ी अभियान में दिखेंगे एक साथ, IIT, IIM, NIT और अन्य संस्थान होंगे शामिल। दैनिक जागरण के अनुसार 20 राज्यों में फैला साइबर ठगी का नेटवर्क ध्वस्त, विदेश भेजते थे रकम, 1 घंटे में 400 खातों में ट्रांसफर होती थी राशि। 27,850 करोड़ रुपए के लेनदेन के सबूत मिले। जनसत्ता की सुर्खी है, मॉस्को में पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु सहयोग पर हुई बात। पत्र के अनुसार भारत और रूस के कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करने के कारण जयशंकर और पुतिन की बैठक महत्वपूर्ण है। अमर उजाला का शीर्षक है, कांदा एक्सप्रेस आज पहुंचेगी दिल्ली, कल से 35 रूपये किलो मिलेगा प्याज। दैनिक भास्कर के अनुसार मरीज के ट्यूमर से बनेगी वैक्सीन, शरीर खुद कैंसर कोशिकाएं ढूंढकर मारेगा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत UPI के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेनदेन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और कोलंबो में ध्रुव जुरैल और देवदत्त पडिक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स अपॉन यंग डिप्लोमैट्स टू बिल्ड स्ट्रांग ग्रासरूट्स लेवल एंगेजमेंट इन द कंट्रीज ऑफ पोस्टिंग एंड डीपन इंडियाज कनेक्शन विद लोकल कम्युनिटीज। UN Home Minister Amit Shah asks all security agencies to take strict measures against infiltration. UPI completes 10 years of digital payments revolution, clocks nearly 13,000-fold rise in transaction volume. Government lifts export restrictions on wheat, flour and related products. BJP to contest all 117 seats in upcoming Punjab Assembly elections. National Security Advisor Ajit Doval to hold special representative talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi on India-China boundary issue in Beijing today. And in men's cricket, centuries by Dhruv Jurail and Devdutt Padikkal give India command over Sri Lanka in the second and final test in Colombo. Prime Minister Narendra Modi has called upon young diplomats to build strong grassroots level engagement in the countries of posting and deep

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम खेल पत्रिका। श्रोताओं नमस्कार, खेल पत्रिका लेकर हाजिर है आपकी दोस्त विजया जैन।

श्रोताओ, आज से कुछ दशक पहले तक की स्थिति यह थी कि हमारे देश में यह माना जाता था कि अगर खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे खराब और पढ़ेंगे लिखेंगे तभी बनेंगे नवाब। लेकिन बदलते दशकों में इस मानसिकता में बदलाव हुआ है, लोगों में अवेयरनेस आई है और लोग खेलों के प्रति गंभीर हुए हैं और शायद यही कारण है कि आज हम पहले की तुलना में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं और निरंतर पदक लाने के लिए प्रयासरत हैं। भारत में खेलों की स्थिति पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदली है। आज देश केवल क्रिकेट तक सीमित न रहकर एक बहु खेल राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। सरकार की नीतियां, कॉरपोरेट निवेश और वैश्विक स्तर पर भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने देश में खेलों का एक नया माहौल तैयार किया है। सरकार ने भी युवाओं को खेलों से जोड़ने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। भारत अब केवल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाला देश नहीं रहा, बल्कि यह खेल आयोजनों का एक बड़ा केंद्र बनना चाहता है और बन रहा है। भारत भविष्य में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए अपनी दावेदारी को मजबूती से पेश कर रहा है, जिससे देश के खेल बुनियादी ढांचे में बदलाव आने की उम्मीद है। आइए श्रोताओं, जब बात खेलों की हुई है तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे बहुचर्चित खेल क्रिकेट की। इस वक्त भारत श्रीलंका दौरे पर है। 2026 की स्थिति यह है कि वर्तमान टेस्ट सीरीज में भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका के मुकाबले में बहुत ही मजबूत और हावी स्थिति में है। भारतीय टीम इस समय श्रीलंका के दौरे पर है, जहां पर दोनों देशों के बीच 2-2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। पहला टेस्ट भारत ने गोल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 165 रनों से करारी शिकस्त दी थी और इस जीत के साथ भारत सीरीज में 1-0 से आगे है। इसी तरह से कोलंबो के सिहली स्पोर्ट्स क्लब में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। भारत ने अपनी पहली पारी 503 रन और 9 विकेट पर घोषित की, जिसमें ध्रुव जुरेल का 115 रन के साथ और देवव्रत पडिक्कल का 117 रन के साथ शानदार शतक लगाया गया। जवाब में दूसरे दिन का खेल खत्म होने की स्थिति तक श्रीलंका की स्थिति बेहद खराब थी और उसने 8 रन पर 2 विकेट खो दिए थे। श्रीलंका अभी भी भारत में 495 रन पीछे है और भारत यहां क्लीन स्वीप करने की मजबूत स्थिति में है। भारत इसी जोश के साथ आगे बढ़ता रहे और खेलता रहे।

0: बुधवार की शाम आपकी पसंदीदा फिल्मों के नाम।
1: बंध के रक्षा बंधन से।
0: जी हाँ, युववाणी कार्यक्रम में इस बुधवार एक ही फिल्म से में हम लेकर आए हैं आपके लिए भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित फिल्म रक्षा बंधन।

0: बुधवार सुनना मत भूलिएगा ठीक शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी।
1: श्रोताओ, अब बात करते हैं वर्ल्ड कप हॉकी 2026 की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम शुरुआती गोल गंवाने के दबाव से उबर नहीं सकी और सोमवार को अर्जेंटीना के हाथों से 3-5 की हार के साथ विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की उनकी उम्मीदें भी खत्म हो चुकी है। अपने पिछले मैच में नीदरलैंड से हारने के बाद भारत पूल ई में अंतिम 4 की दौड़ से लगभग बाहर हो गया था। हालांकि अर्जेंटीना की इंग्लैंड पर जीत ने तकनीकी रूप से भारत के क्वालिफिकेशन की उम्मीदें जीवित रखी थी। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कम से कम 3 गोल के अंतर से जीत दर्ज करनी थी, लेकिन अर्जेंटीना ने शुरुआती 6 मिनट में ही 2 गोल कर दिए और भारतीय टीम वापसी के लिए संघर्ष करती रही। खराब पासिंग, बार बार गेंद पर नियंत्रण खोना और कमजोर रक्षा शक्ति ने भारत की मुश्किलें और बढ़ा दी। भारत ने मैच के आखिरी दौर में 2 मिनट के भीतर 2 गोल जरूर किए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नीदरलैंड्स पहले ही इस पूल में सेमीफाइनल में पहुंच चुका है और दूसरे सेमीफाइनलिस्ट का फैसला इंग्लैंड और नीदरलैंड्स के बीच पूल के अंतिम मैच से होगा। श्रोताओं, इसी के साथ हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना आखिरी मुकाबला 0-0 से ड्रॉ खेलने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम भी सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत न दर्ज कर पाने के कारण भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए अहम मुकाबले में दोनों टीमें निर्धारित समय पर कोई गोल नहीं कर पाई और मैच 0-0 बराबरी पर छूटा। अब भारतीय टीम टूर्नामेंट में 5वें या 6वें स्थान के लिए अपनी चुनौती पेश करेगी। श्रोताओं, हॉकी की स्थिति इस वक्त बहुत खराब है, लेकिन फिर भी जीतने की मेहनत हमेशा जारी रहनी चाहिए।

श्रोताओं, राष्ट्रमंडल खेलों का रोमांच खत्म होने के बाद अब खेल प्रेमियों पर एशियाई खेलों का रंग चढ़ने वाला है। जापान के आइची नगोया में 19 सितंबर से एशियाई खेल 2026 का आगाज होगा। ये खेल 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के आइची प्रांत और नगोया शहर में होने जा रहे हैं। खेल मंत्रालय ने इन खेलों के लिए 492 सदस्य भारतीय दल को मंजूरी दी है, जिसमें 73 एथलीट शामिल है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा एशियाई खेलों में भारतीय एथलेटिक्स टीम की अगुवाई करेंगे। वह पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में लगातार 3री बार स्वर्ण पदक जीतकर खिताबी हैट्रिक पूरी करने के इरादे से उतरेंगे। भारतीय

एथलेटिक्स दल में होंगझाओ एशियाई खेलों के 16 पदक विजेताओं को शामिल किया गया है, जिसमें से 5 व्यक्तिगत चैंपियन अपने खिताब का बचाव करेंगे। नीरज के साथ पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रोहित यादव भी चुनौती पेश करेंगे। रोहित ने हाल ही में भुवनेश्वर में विश्व एथलेटिक्स सिल्वर लेवल कॉन्टिनेंटल टूर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतते हुए शानदार प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह 19 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 8 बजे जापानी समय के अनुसार पालोमा मिजुहो स्टेडियम में किया जाएगा और टोक्यो और हिरोशिमा के बाद जापान का यह तीसरा शहर है जो इन खेलों की मेजबानी करेगा। इस एशियाई खेल का शुभ शंकर आधिकारिक रूप से एक जापानी रक्षक देवता शाचिहोको, जिसे होनहोन के नाम से जाना जाता है, वो सभी को प्रेरित करेगा। इस बार 41 खेलों में लगभग 461 से अधिक पदक स्पर्धाएं आयोजित की जाएगी और इस संस्करण में कई आधुनिक और नए खेल शामिल किए गए हैं। नए शामिल खेलों में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, वर्चुअल ताइक्वांडो पैडल, टेक बॉल, फ्री स्टाइल बीएमएक्स और सर्फिंग जैसे खेल शामिल होंगे। पिछले संस्करण की तरह इस बार भी ई स्पोर्ट्स के राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले देखने को मिलेंगे और महिला और पुरुष दोनों श्रेणियों में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट भी खेला जाएगा।

श्रोताओं, इस वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से खेलेगा भारत जीतेगा भारत थीम के तहत 28 से 30 अगस्त तक 3 दिवसीय भव्य खेल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। खेल दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को देश भर के खिलाड़ियों और युवाओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। यह विशेष कार्यक्रम खेलो इंडिया संवाद खेल की बात पीएम के साथ इस नाम से देश भर के 1500 से अधिक स्थानों पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रमुख एथलीट और शैक्षणिक संस्थान भाग लेंगे। इसी के साथ फिट इंडिया मिशन के तहत राष्ट्रव्यापी अभियान फिट इंडिया मूवमेंट का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें आम जनता और युवाओं को सरल फिटनेस गतिविधियों और खेल चुनौतियों से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के सम्मान में 28 अगस्त को डिजिटल श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाएगा और साथ ही इस अवसर पर देशव्यापी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी, जिसके तहत अंडर 14 हॉकी टूर्नामेंट देश के विभिन्न राज्यों के जिला एवं खेल विभागों द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए विशेष जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिताओं और कौशल प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही स्कूल कॉलेजों और खेल संघों में मैराथन हॉकी ड्रिल्स कबड्डी बास्केटबॉल और पारंपरिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। परंपरा के अनुसार इस विशेष अवसर के आसपास भारत के राष्ट्रपति द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों को खेल रत्न अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे सर्वोच्च खेल सम्मानों से सम्मानित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इस वर्ष का मुख्य उद्देश्य देश के जमीनी स्तर यानी रूट लेवल तक खेल संस्कृति और फिटनेस इकोसिस्टम को मजबूत करना है।

तो श्रोताओं, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि हमारे सभी खिलाड़ी अपने अपने क्षेत्रों में, खेल के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत सारे पदक हासिल करें, अपना नाम और अपने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करते रहें। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की खेल पत्रिका समाप्त करने की आज्ञा दें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे खेल पत्रिका कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे तृप्ति नागर और साथियों के गाए मालवी लोकगीत। लीजिए सुनिए इनकी आवाज में पहली रचना, जो कि बहुत ही पारंपरिक रचना है।

तृप्ति नागर के गाए मालवी लोकगीत आप सुन रहे हैं लोक संगीत के कार्यक्रम में, और लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज़ में कार्यक्रम की अगली रचना।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: बुधवार की शाम आपकी पसंदीदा फिल्मों के नाम।
1: बंध के रक्षा बंधन से।
0: जी हाँ, युववाणी कार्यक्रम में इस बुधवार एक ही फिल्म से में हम लेकर आए हैं आपके लिए भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित फिल्म रक्षा बंधन।

0: तो इस बुधवार सुनना मत भूलिएगा ठीक शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी।
1: लोक संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। कलाकार हैं तृप्ति नागर और साथी। इनकी आवाज में प्रस्तुत है कार्यक्रम की अंतिम रचना।

0: तृप्ति नागर की गायी लोक रचना आप सुन रहे थे लोक संगीत के कार्यक्रम में।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: संदेश के पूर्व आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम, कलाकार थे तृप्ति नागर और साथी ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। कलाकार है मोहम्मद रिजवान खान, इनकी आवाज में सुनिए कार्यक्रम की पहली गजल।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

मोहम्मद रिजवान खान की गाई गजल आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम में। इन्हीं की आवाज़ में सुनिए कार्यक्रम की अगली रचना। गजलकार हैं एहसान दानिश।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रिजवान खान की गायी गजलें। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे देव प्रसाद चक्रवर्ती का सितार वादन राग है भटियार। तबले पर संगति उल्हास राजहंस की है।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे देव प्रसाद चक्रवर्ती का सितार वादन, राग था भटियार, तबले पर संगति उल्लास राजहंस की थी। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। सवेरे के 10 बजे हैं, कुछ ही पलों में जिले की चिट्ठी भोपाल से रिले होगी।
1: नितिन गुप्ता का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। देवास जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मौसम की। पिछले दिनों हुई अच्छी बारिश से लोगों को राहत मिली है और खरीफ फसलों की स्थिति भी फिलहाल सामान्य बनी हुई है। इस साल अभी तक जिले में औसतन 646 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 460 मिलीमीटर बारिश हुई थी। लगातार बारिश से कई नदी नाले उफान पर आए हैं और बागली के पास गुनेरी नदी में बाढ़ से सैकड़ों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से प्रभावित हुआ। देवास शहर की कुछ निचली बस्तियों में भी जलभराव की स्थिति बनी। बारिश के साथ अगर खेती की बात करें तो किसानों के लिए फिलहाल स्थिति संतोषजनक है। जिले में सोयाबीन की बोवनी के लिए 3,98,000 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया था, जबकि करीब 4,06,000 हेक्टेयर में सोयाबीन बोई गई है। इसके अलावा करीब 3,38,000 हेक्टेयर में कपास, तुअर और मक्का जैसी फसलें बोई गई हैं। हाल की बारिश से फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद है। अब बात स्वतंत्रता दिवस समारोह की। देवास में बीते दिनों स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने वाहन में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रदेशवासियों के नाम संदेश को पढ़कर सुनाया। इसी बीच ग्रामीण रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देवास के खादी उत्पादन केंद्र में एक दिवसीय जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें ग्रामीण युवाओं, बेरोजगार युवक युवतियों और पारंपरिक कारीगरों को ग्रामोद्योग से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने की जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को प्रशिक्षण, सरकारी योजनाओं और उद्यम शुरू करने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया। इसी कड़ी में जिले में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत शिविर भी लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में जनप्रतिनिधि और अधिकारी लोगों से सीधे आवेदन लेकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जो मामले मौके पर हल नहीं हो पाते उन्हें सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कर आगामी शिविर से पहले निराकृत करने की व्यवस्था की गई है। शिविरों में अलग अलग विभागों के स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी भी दी जा रही है। वहीं संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर जिले में समरसता अभियान चल रहा है, जिसके तहत श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान और कलश रथ यात्रा जिले के अलग अलग क्षेत्रों में पहुँच रही है। करीब 20 दिन तक चलने वाली इस यात्रा के माध्यम से संत रविदास के जीवन, आदर्शों और सामाजिक समानता का संदेश लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान विभिन्न मंदिरों और रविदास मंदिरों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी देवास में जागरूकता अभियान चलाया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिले में अलग अलग ब्लॉकों के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों को CPR की ट्रेनिंग बीते दिनों दी गई।

0: जिसमें अचानक सांस या धड़कन रुकने की स्थिति में किसी व्यक्ति को शुरुआती मदद देने की तकनीक बताई गई। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य आपात स्थिति में समय पर मदद पहुंचाने के लिए लोगों को तैयार करना है। अब बात कानून व्यवस्था से जुड़ी खबर की। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋतुराज सिंह ने जिले में सुरक्षा और लोक शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर चलने और बिना अनुमति सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस या रैली निकालने पर रोक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश 2 महीने तक प्रभावी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ देवास के एक निजी संस्थान में उद्यमियों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उद्यमियों को ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और डिजाइन से जुड़े अधिकारों की जानकारी दी गई। सेमिनार में विभिन्न विभागों के अधिकारी, उद्योग प्रतिनिधि और स्थानीय एमएसएमई उद्यमी शामिल हुए। रोजगार के मोर्चे पर भी जिले में युवाओं के लिए पहल की गई है। देवास में रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप के अवसर एक ही जगह उपलब्ध कराने के लिए युवा संगम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी विभागों ने युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और करियर काउंसलिंग की जानकारी दी। निजी कंपनियों ने युवाओं का चयन कर उन्हें ऑफर लेटर प्रदान किया। वहीं कार्यक्रम में युवाओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। और आखिर में बात बुजुर्गों के अधिकारों से जुड़ी पहल की। देवास के वृद्धाश्रम परिसर में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बुजुर्गों को सुरक्षा, भोजन और शिक्षा तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकारों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही सभी के अधिकारों का सम्मान और रक्षा करने का संकल्प दिलाया गया। अधिकारियों ने कहा कि मानवाधिकार किसी खास वर्ग के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए जरूरी अधिकार है। देवास जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे देवास जिले की चिट्ठी। आलेख था नितिन गुप्ता का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन।
3: हेलो, एमएच हॉटलाइन।

0: एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को विजया जैन का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जीवन में मुस्कुराने के लिए बड़ी बड़ी बातों का होना जरूरी नहीं, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढिए और मुस्कुराते रहिए। तो आज के कार्यक्रम में मैं आपके साथ आपकी दोस्त हाजिर हो चुकी हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर। और दोस्तों, आज कार्यक्रम का सिलसिला शुरू करें, आपके फोन कॉल्स का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले एक बार फिर आप सभी को नंबर बताना चाहूंगी। हमारे नंबर है 2710223 और 2710224, इंदौर का एसटीडी कोड 0731। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर और देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन हैं। हेलो, एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते जी, कौन बात कर रही हैं?
1: मैं अमीना बी मंसूरी बोल रही हूँ, पालराना का इंदौर से। मैडम कैसे आप?
0: मैं अच्छी हूँ अमीना बी। अमीना जी आप कैसी है?
1: मैं भी अच्छी हूँ मैडम, आपकी दुआ है साथ में।
0: बिल्कुल, आपका स्वास्थ्य ठीक है अभी?
1: हाँ अभी ठीक है मैडम
0: जी।
1: और आपको राखी की और ईद मिलादे की शुभकामनाएं मैडम।
0: बिल्कुल, आपको भी राखी की और ईद की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और बहुत मीठी मीठी सेवैयां खाइए और मिठास घोलते रहिए सबके जीवन में।
1: मिठाई से ही तो सब कुछ है मैडम
0: जी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा बताइए, कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: हसीना।
0: हेलो,
1: गाने के बोले हैं।
0: हाँ जी,
1: हसीना मान जाएगी।
0: अच्छा, हसीना मान जाएगी। ओके ओके।
1: गाने के बोले, बेखुदी में सनम उठ गए कदम।
0: क्या बात है, लता जी और मोहम्मद रफी का गाया हुआ बहुत ही खूबसूरत गीत आपने चूज किया है। तो चलिए सुनवा देते हैं आपकी पसंद का बहुत ही खूबसूरत गीत। सुनवा दें?
1: जी जी मैडम।
0: चलिए, फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए आपकी पसंद का ये खूबसूरत गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हेलो, एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
3: हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
2: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं?
3: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश सिंह बोल
2: रहा। नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से कौन बात कर रहे हैं आप?
3: जी, अविनाश।
2: अविनाश जी, त्रिपुरा से बात कर रहे हैं आप, क्या बात है? मेरे ख्याल से पहली बार आपका कॉल लगा है इस कार्यक्रम में, है ना?
3: जी, बिल्कुल।
2: क्या बात है। तो हमने तो देखिए त्रिपुरा का नाम सिर्फ मतलब पढ़ा है, त्रिपुरा के बारे में कभी देखा नहीं है। तो कैसा है त्रिपुरा, क्या मतलब, चूंकि एमपी बिल्कुल अलग एरिया आ जाता है, त्रिपुरा बिल्कुल अलग एरिया आ जाता है। आप कभी आए हैं एमपी में या इंदौर कभी आए हैं?
3: नहीं नहीं, उधर मुझे मौका नहीं मिला।
2: अच्छा, कभी मौका नहीं मिला। तो क्या खासियत है त्रिपुरा की, बताइए। और इस वक्त त्रिपुरा में बारिश कैसी हो रही है?
3: त्रिपुरा में तो अप्रैल महीने से बारिश जारी है और ये अक्टूबर तक चलेगा और उसके बाद फिर सर्दी का मौसम आता है, तो उस टाइम पे बारिश नहीं होता, लेकिन अप्रैल से लगातार बारिश चलता रहता है। और यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ पर देखिए टी गार्डन,
2: हाँ हाँ,
3: बहुत जी, यहाँ टी गार्डन बहुत सारे हैं और रबड़ का भी यहाँ पर,
2: अच्छा
3: जी, खेत होता है। और हमारे त्रिपुरा है,
2: आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं त्रिपुरा में?
3: सर, मेरा वेल्डिंग का काम
2: जी,
3: मेरा वेल्डिंग का काम।
2: अच्छा, वेल्डिंग का काम करते हैं। तो आप त्रिपुरा में ओरिजिनली त्रिपुरा में ही रहते हैं या आसपास के किसी गांव में रहते हैं?
3: नहीं नहीं, मेरा त्रिपुरा में ही रहना है।
2: अच्छा, त्रिपुरा में रहना है। और वहाँ तक रेडियो कैसे सुनते हैं, मतलब रेडियो से सुनते हैं या मोबाइल से सुनते हैं?
3: रेडियो में तो नहीं आता है, मोबाइल।

0: अच्छा, मोबाइल ऐप के जरिए आप सुनते हैं। तो रेगुलर सुनते हैं आकाशवाणी इंदौर?
1: जी, बिल्कुल सुनते हैं, क्योंकि देखिए मोबाइल ऐप आने से भारत के किसी भी कोने से कहीं भी सुन सकते हैं,
0: हाँ, ये बात तो है। बहुत बहुत अच्छा हो
1: सकते
0: गया ये कि मोबाइल ऐप की वजह से, मतलब प्राइमरी चैनल हो, विविध भारती चैनल हो, पूरा देश कनेक्ट होता हुआ लगता है। और आपने इतनी दूर से पहली बार फोन किया है। चलिए जल्दी से बता दीजिए, गीत कौन सा सुनेंगे आज आप?
1: जी। सर मुझे सुन रही, मूवी का नाम है अनपढ़ गाने के बोल हैं, आपकी नजरों में समझा प्यार के काबिल नहीं,
0: वाह वाह, क्या गीत है,
1: लगा।
0: बहुत ही खूबसूरत गीत है। और कौन कौन है आपके परिवार में?
1: जी मेरे परिवार में तो मेरे पिताजी हैं, मैं हूँ, और मूवी तो फिलहाल ये दो ही लोग हैं हम।
0: अच्छा, आपके पिताजी हैं और आप हैं, और माता जी भी हैं आपकी?
1: हाँ नहीं, वो तो
0: अच्छा,
1: बहुत
0: माता जी
1: पहले।
0: नहीं है। ओके ओके ओके, चलिए, अब मैं आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है, और पहली बार आपने फ़ोन किया है, तो आपकी फरमाइश बिल्कुल हम पूरी करते हैं। तो सुनवा दें आपकी पसंद का ये खूबसूरत गीत?
1: जी, बिल्कुल
0: चलिए सुनिए अनपढ़ फिल्म का ये खूबसूरत गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।
1: जी।

0: हेलो, एम एच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: जय माता दी।
0: जय माता दी। कौन बात कर रहे हैं?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमेल बुगला।

0: और आज सावन का पहला सोम मतलब सावन का सोमवार है, तो शिव भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी जल्दी से खूब बारिश दे ताकि धरती हरी भरी रहे, है ना?
1: यहाँ तो आखिरी हो गया मैडम, आपके लेट मनाया जाता है।
0: हाँ, ये मतलब बस लगभग होने को ही है सावन तो, पर ठीक है, सावन का अपना महत्व है वैसे। चलिए बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: जी मैडम, आज क्योंकि आपको तमाम सुनने वालों को रक्षाबंधन का पावन त्योहार आ रहा है, तो उसकी पूरी आकाशवाणी टीम को तमाम सुनने वालों को शुभकामना देना चाहता हूँ मैडम।
0: जी जी जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे मनाते हैं रक्षाबंधन का त्योहार आप?
1: जी मैडम, रक्षाबंधन मनाते हैं, जैसे हमारी सिस्टर भी आती है घर पे, और जो हमारी भाभी होती है वो उनके घर पे जाती है, तो ऐसे मनाया
0: अच्छा।
1: जाता है रक्षाबंधन पे राखी का
0: बिल्कुल
1: त्योहार।
0: बहन आती है, कहाँ रहती है आपकी बहन?
1: जी मैडम, वो भी रहती है जैसे हमारे से 20 किलोमीटर दूर है।
0: अच्छा, पास में ही है, मतलब ज्यादा दूर नहीं है।
1: जी मैडम।
0: चलिए बताइए, तो आज मुझे ऐसा लगता है आप बहन के लिए कोई गीत चूज करेंगे, ऐसा मुझे पता नहीं क्यों प्रतीत हो रहा है।
1: जी मैडम
0: बताइए तो। चलिए जल्दी से बता दीजिए आप कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: हाँ जी, फिल्म का नाम है चंबल की कसम, और उसमें गाने के बोल रहे रक्षाबंधन वाला एक गाना है वो,
0: चंदा रे मेरे भैया से कहना।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: चलिए तो बिल्कुल आपकी पसंद पूरी करते हैं और आपको सुनवाते हैं ये बहुत ही खूबसूरत गीत, है ना?
1: थैंक यू मैडम, धन्यवाद, आपसे
0: बहुत
1: बात
0: बहुत
1: करके बहुत
0: धन्यवाद
1: अच्छा
0: आपको
1: लगा।
0: भी फोन करने के लिए।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: हेलो, एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
3: हेलो, एमएच हॉटलाइन, परम आदरणीय दीदी शारदा सुप्रीम, प्यार से नमस्कार।
2: नमस्कार आपको भी। कौन बात कर रहे हैं बहुत स्टाइलिश तरीके से? हमारे श्रोता कौन है?
3: दीदी, मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, गोवर्धन रोड मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ।
2: शारदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आपके पीछे रेडियो चल रहा है, थोड़ा सा उसे दूर कर दीजिए, पीछे से आवाज गूंज रही है मुझे, है ना?
3: रेडियो नहीं चल रहा है।
2: हाँ, कुछ पीछे पीछे आवाजें आ रही है, या तो आप थोड़े शांत जगह पे आके। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे सबसे पहले? तो
3: दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, गाना है माना हो तुम देह देहसीन, ऐसे बुरे हम भी नहीं।
2: क्या बात है, बहुत अच्छा गीत है।
3: आपसे अनुरोध करना चाहता हूं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये गीत आपको जरूर सुनवाएंगे। और मथुरा में क्या हालचाल है भक्ति के? इस वक्त तो अभी सावन चल रहा है, तो बहुत भीड़ होगी मथुरा में।
3: जी निसंदेह, मथुरा में इस वक्त काफी श्रद्धालु भक्त कांवड़िए आ रहे हैं और देवों के देव महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं गंगा जल से, और वातावरण भी बहुत खूबसूरत सुहाना है। पिछले दिनों अभी बारिश हुई थी झमाझम, और रिमझिम रिमझिम फुहार पड़ रही थी, और आज तो खिला खिला धूप है और हल्की हल्की हवाएं ठंडी ठंडी चल रही हैं। और इस वक्त मंदिरों में देवालयों में काफी भक्तों की भीड़ है, क्योंकि सावन का बहुत ही पवित्र महीना होता है
2: और आज सोमवार भी है, तो सोमवार तो विशेष माना जाता है शिव भगवान के हिसाब से।
3: आज तो मंगलवार है जी।
2: हाँ हाँ जी, मतलब कल सोमवार गया तो काफी अच्छी भीड़ होगी। जी जी, आज मंगलवार है। बिल्कुल, चलिए ऐसे ऐसे देखिए ना, जो बहुत जागरूक श्रोता होते हैं उनके लिए कभी कभी ऐसा उल्टा बोलना पड़ता है, ताकि समझ में आए कि हाँ वो हमें ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं। चलिए, पर मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके।
3: आपका पेडिकल करना बहुत अच्छा लगा दीदी, और सर्वप्रथम मैं आपको आकाशवाणी इंदौर परिवार को, सभी श्रोताओं को आने वाली रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं करता हूं।
2: जी जी जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कृष्ण भगवान की कृपा, शिव भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। और चलिए आपकी पसंद पूरी करते हैं और सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये बहुत ही खूबसूरत गीत।
3: जी हृदय से धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।
2: धन्यवाद।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: हेलो, MH हॉट लाइन कार्यक्रम।
3: हेलो, नमस्ते दीदी।
2: नमस्ते जी, कौन बात कर रहे हैं?
3: जी दीदी, मैं महेश बिलाला बात कर रहा हूँ, जिला आगर मालवा, ग्राम मनासादी।
2: आगर मालवा से महेश जी बात कर रहे हैं। महेश जी, क्या करते हैं महेश जी आप?
3: जी दीदी, खेती किसानी का काम अपना, तो अभी खेत पर आए थे, हल्की बारिश हो गई है।
2: अच्छा, तो रिलीफ मिली है, मतलब फसलें नुकसान होने से बच रही है अब?
3: हाँ दीदी, बिल्कुल बच रही है। अभी सोयाबीन की जरूरत थी तो हल्की बारिश हो गई सुबह सुबह।
2: अच्छा,
3: तो और को 5 लाख के अभी फ्री हुए हैं, तो हमने सोचा कि टाइम भी हो गया आकाशवाणी को, तो हम मिला रहे थे कॉल, लेकिन लग नहीं पा रहे थे। लेकिन
2: नहीं, एक्चुअली हमारा प्रोग्राम ऐसा होता है कि बहुत सारे श्रोता इसमें कॉल लगाने की कोशिश करते हैं, कई बार की बहुत लोगों के कॉल लग जाते हैं और कई बार रह जाते हैं, पर इसीलिए वैसे ये सप्ताह में हर दिन होता है प्रोग्राम, तो इसमें बहुत सारे श्रोताओं को चांस मिलता है बात करने का। चलिए,
3: तो ये कोशिश करता हूँ जैसे कि नए श्रोताओं को अगर आवाज सुनने को हमें मिले तो अच्छा है।
2: हाँ देखिए, हम तो रोज सबसे यही मतलब वो करते हैं, मतलब रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो श्रोता एक बार हमें कॉल कर ले वो कम से कम 15-20 दिन का गैप रखे, अंतराल रखे, ताकि नए श्रोताओं को भी चांस मिले।
3: 1.5 महीने बाद कॉल किया है।
2: हाँ हाँ, नहीं बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो अच्छे से समझ जाए ना उनका हम शुक्रिया करते हैं, और दूसरों से भी उम्मीद करते हैं कि वो भी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखें, तो जितना प्रोग्राम में वैरायटी आएगी आप ही लोगों को मजा आएगा, है ना, और नए नए गीत भी सुनने को मिलेंगे। चलिए, आप बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आज आपको।
3: जी दीदी, आप तिरंगा पिक्चर का सुनवा देना।
2: तिरंगा पिक्चर का कौन सा गीत सुनना है आपको?
3: जी दीदी, वो इसे समझो ना, रेशम का तार भैया।
2: अच्छा अच्छा, राखी का त्योहार आने वाला है, तो
3: दीदी रक्षाबंधन की आपको पूरे परिवार को दीदी, आकाशवाणी परिवार को शुभकामनाएं।
2: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो क्या क्या क्या खास तैयारी कर रहे हैं इस बार बहन के लिए?
3: जी दीदी, बहन के लिए तैयारी यही कर रहे हैं हम कि बहन दूर से आएगा तो उसे कुछ मिठाई विठाई बनाएगा तो खिलाएंगे, ऐसा कुछ कर

0: दीदी।
1: वो तो मम्मी बनाएंगी घर पे, है ना, मिठाई तो।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: सही बात है। आप क्या करने वाले हैं? तो बहन, छोटी बहन है आपकी या बड़ी बहन है?
0: जी दीदी, दोनों ही बहन दीदी बड़ी है हमारी।
1: अच्छा, तो छोटी बहनों को तो बड़ा क्रेज रहता है गिफ्ट्स का, मतलब नेग का, है ना।
0: हाँ दीदी।
1: तो बिल्कुल उनके लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। और बहुत ही अच्छा त्योहार है ये, भाई बहन का त्योहार है, और ये रिश्तों में प्रेम बढ़ाता है, मिठास बढ़ाता है
0: दीदी
1: ना।
0: इंदौर का मौसम कैसा है?
1: इंदौर का मौसम अच्छा है, अभी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, हल्की हल्की रिमझिम होती रहती है, और अच्छी बारिश और हो ऐसी उम्मीद करते हैं हम लोग, है ना। चलिए
0: जी जी जी
1: गीत
0: जी
1: सुनवा दें आपका जल्दी से आप।
0: दीदी बिल्कुल सुना दीजिए।
1: चलिए
0: धन्यवाद
1: सुनिए
0: दीदी।
1: आपकी पसंद का गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आज के दिन

0: पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
1: nmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
2: हेलो हेलो, एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
3: हेलो, नमस्ते।
2: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
3: ग्राम सुराना, जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
2: बहुत बहुत बधाई आपको, फोन लग गया आपका, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज?

0: पहले तो मैडम मेरी ओर से सभी पूरे आकाशवाणी टीम और सभी श्रोता बंधु को ईद मिलादुन्नबी और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से।
1: बिल्कुल, आपकी शुभकामनाएं सभी तक पहुंच रही है और हम भी आपकी शुभकामनाएं कबूल करते हैं और आपको भी शुभकामनाएं देते हैं।
0: कल मैडम मेरे घर एक पोती आई है, मतलब लड़की पैदा हुई है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको।
0: तो उसी के उपलक्ष्य में, मतलब उनकी खुशी में एक गीत सुनना चाहता हूँ, ये मेरे घर आई एक नन्ही सी परी।
1: क्या बात है, तो नाना जी बने हैं कि दादाजी बने हैं?
0: दादाजी
1: दादाजी बने हैं, क्या बात है। पोती आई आपके घर में, लक्ष्मी आई है?
0: हाँ लक्ष्मी आई है।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बधाई आपको भी, और चलिए आपकी खुशियों को दुगुना करते हैं इस गीत के साथ।
0: ओके ओके
1: ओके जी, थैंक यू।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम। हेलो,
1: हेलो हेलो।
0: हाँ जी, एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: अच्छा, हेमेच होटलान कार्यक्रम। नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, बताइए कौन बात कर रहे हैं आप।
1: मैं सचिव बात कर रहा हूँ जी, ठीक, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश कानपुर के बात में।
0: फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं आप। नाम क्या बताया आपने अपना?
1: सतीश सतीश
0: सतीश। ओके सतीश जी, क्या गीत, कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: मैडम जी, ये बताइए जो प्रोग्राम का नाम है एमएच होटलाइन के कार्यक्रम, जो एमएच मालूम क्या होता है?
0: वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, फिलहाल आप पहले गीत बता दीजिए मुझे।
1: फिल्म का नाम है वो, जैसे मेरी जंग गाने वाले की हर कदम एक नई जंग है,
0: जिंदगी
1: एमएच
0: हर
1: होटलाइन
0: कदम
1: का
0: एक
1: मतलब
0: नई
1: क्या होता
0: जंग
1: है?
0: है। क्या करते हैं आप?
1: मैं खेती बाड़ी करता हूँ,
0: खेती बाड़ी का काम। अभी कौन सी फसल लगी हुई है खेतों में?
1: धान की। धान की
0: धान की फसल लगी हुई। तो बारिश कैसी है इस वक्त वहां पर?
1: बारिश कल हुई थी खूब झूमझाम के।
0: अच्छा, झूम झाम के बारिश हुई है। अच्छा। तो आपने पहली बार फोन लगाया है या नियमित रूप से लगाते हैं?
1: पहली बार लगाया
0: अच्छा,
1: है,
0: पहली बार फोन लगाया है आपका। इससे पहले
1: पहले
0: कभी
1: तो
0: सुना
1: बार।
0: है आकाशवाणी इंदौर की? सुन भी पहली बार ही रहे हैं।
1: अरे सुना तो है लेकिन वो विविध भारती नहीं आता है?
0: हाँ, आता है बिल्कुल। विविध भारती भी आता है, आकाशवाणी भी आता है।
1: हाँ तो विविध भारती पहले लगाते रहते हैं,
0: अच्छा,
1: 11 बजे
0: विविध भारती
1: आता
0: में लगाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका गीत मिल
1: है।
0: चुका
1: मैडम
0: है।
1: जी, एक बात कहना चाहता हूँ, ये एमएच होटला मतलब जो का होता है?
0: हाँ, मैं आपको जरूर बताती हूँ एमएच हॉटलाइन क्या होता है। फिलहाल गीत सुनिए आप, है ना?
1: जी, एमएच तो बैटरी होती है चार्ज करने वाली,
0: बिल्कुल, मैं इस
1: ऐसा
0: प्रश्न
1: नहीं
0: का
1: बैटरी
0: उत्तर
1: वाली।
0: जरूर दूंगी आपको। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एग्जैक्ट आंसर दूं, इसलिए थोड़ा सा वक्त ले रही हूँ। आप गीत सुनिए,
1: वरना
0: गीत
1: मैं
0: खत्म
1: जानता
0: होते
1: नहीं
0: होते मैं
1: कि
0: आपको
1: एमएच
0: जरूर
1: होटलाइन
0: बताऊंगी
1: है
0: कि एमएच
1: या फिर
0: हॉटलाइन होता
1: एमएच
0: क्या
1: होटलाइन।
0: है ना? चलिए, सुनिए अपनी
1: हाँ
0: पसंद
1: जी,
0: का गीत।

0: ये गीत हमने हमारे एक श्रोताओं की फरमाइश पर सुनवाया था। ये श्रोता थे सतीश जी। सतीश जी, आपने मुझसे पूछा था कि MH हॉटलाइन क्यों कहते हैं और MH का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि MH मतलब मालवा हाउस। जो आकाशवाणी इंदौर है वो मालवा हाउस इंदौर के नाम से विख्यात है, इसलिए इस कार्यक्रम का नाम हमने रखा है MH हॉटलाइन। तो पूरा बोलने में तकलीफ़ होती है मालवा हाउस हॉटलाइन, इसलिए हमने उसे संक्षिप्त में MH हॉटलाइन किया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी क्वेरी ख़त्म हो गई होगी, और चलिए अगले कॉल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगले श्रोता कौन है। हेलो, MH हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: हेलो, MH हॉटलाइन।
0: हाँ जी, नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: विजय जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: जिलाधार से शेख फहीम मोहम्मद।
0: शेख फहीम मोहम्मद जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं एकदम बढ़िया हूँ। बताइए, कौन सा गीत सुनवा दें आज?
1: आज शराफत फिल्म का गीत सुनना है लता जी का। आज मैं पहले ना देखा जैसे किसी ने, ऐसे मुझे आज देखा किसी ने।
0: क्या बात है, किसके लिए सुन रहे हैं ये गीत आप, ये सबसे पहले तो ये बताएं।
1: ये गीत तो क्या कि काफी अच्छा गीत है, इसलिए सुनते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, घर पे पूरा परिवार सुनता है गीत आपके?
1: पूरा परिवार सुनता है बिल्कुल। मैं तो स्कूल से आ जाता लेकिन ऐप डाउनलोड कर रखा तो बोल देता हूँ कि आज प्रोग्राम में, वैसे भी सुनते रहते।
0: हाँ, नहीं बहुत अच्छी बात है, हमारी विरासत जुड़ी रहती है और हमारे बच्चे भी जुड़े रहते हैं। अगर घर में बड़े सुनते हैं तो बच्चों में अपने आप आदत पड़ती है।
1: जी जी,
0: चलिए आपकी पसंद मिल चुकी है तो पूरा करते हैं आपकी पसंद को, है ना?
1: जी जी मैम,
0: चलिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।
1: शुक्रिया विजय,
0: धन्यवाद।

0: हेलो, एमए छोट लाइन कार्यक्रम।
1: हेलो,
0: नमस्कार
1: मैं
0: नमस्कार नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: रामनाथ बोल
0: हाँ जी,
1: रहा हूँ, ग्राम कटारिया खेड़ी, जिला राजगढ़ से, मध्य प्रदेश।
0: अच्छा, राजगढ़ से। और आपका नाम, शुभ नाम बताएं अपना।
1: मैं राम नरेश।
0: अच्छा, राम नरेश जी। राम नरेश जी, कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: जैसे को तैसा, ये फिल्म का नाम है, और अभी के सावन जी ये डरे, प्रेमचंद
0: अब
1: तन पे पानी गिरे।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो क्या करते हैं आप राजगढ़ में?
1: ये मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ,
0: हाँ
1: कटारिया
0: हाँ
1: खेड़ी मेरा गांव है, यहाँ मैं कृषक हूँ।
0: अच्छा, कृषक हैं आप। तो अभी तो बारिश थोड़ी शुरू हो गई है।
1: हाँ, अभी सुबह हो रही थी बारिश।
0: हाँ, तो अभी क्या खेत में क्या उगाया हुआ है आपने?
1: अभी हमारे क्षेत्र में सोयाबीन की फसल लगाई है,
0: अच्छा,
1: क्योंकि
0: सोयाबीन की फसल लगी हुई है।
1: मध्य
0: ओके,
1: प्रदेश में मुख्यतः सोयाबीन का

0: प्रचलन ज्यादा है यहाँ
1: जी जी
0: और दूसरे नंबर पर मक्का ज्वार मूंग
1: उड़द
0: तिल इस तरह के फसलें लगाते हैं खरीफ
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है
0: जी जी। और आकाशवाणी इंदौर का श्रोता में 20 वर्षों से अधिक हो गया है
1: अच्छा
0: और मीडियम वेव के प्रसारण सुनते हुए और हमें आज भी याद है जब भी कोई उद्घोषक बोलता है ये आकाशवाणी इंदौर है मीडियम वेव पर 662.96 मीटर यानी कि 648
1: किलोहर्ट्ज पर जी जी जी
0: बड़ा अच्छा लगता है सुनने में
1: जी जी जी नहीं बिल्कुल देखिए आप जैसे श्रोता हैं तभी हम लोग अच्छे प्रोग्राम मतलब दे पाते हैं अच्छा लगता है हमें भी अगर आपकी प्रतिक्रिया होती है तो पता चलता है कि हाँ प्रोग्राम अच्छा जा रहा है या लेवल कैसा है तो
0: वो क्या है कि ये जो लाइव फोन इन प्रोग्राम होते हैं
1: जी जी जी
0: इसमें एक तो हमारी फरमाइश पूरी होती है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: दूसरा हमारी आवाज हम सुनते हैं हमारे परिजन या रिश्तेदार मित्र
1: बिल्कुल सही बात है
0: तीसरा प्रोग्रामों की समीक्षा भी होती है
1: जी जी जी जी
0: क्या सुन रहे हैं
1: सही बात है सही बात है।
0: और श्रोता इस चीज को थोड़े जो यंग जनरेशन के हैं वो इस चीज को ज्यादा पसंद कर रहे हैं
1: हाँ हाँ हाँ
0: प्रोग्राम को
1: अच्छी बात है। देखिए रेडियो से जुड़ने से ज्ञान शिक्षा मनोरंजन सब मिलता है तो सुनते रहना चाहिए और थोड़ा स्क्रीन टाइम भी कम होता है सबसे बड़ी बात मोबाइल से थोड़ी दूरी बढ़ती है
0: जो है ना मतलब अंधत्व की समस्या कम
1: सच्ची बात है
0: जो समस्या है
1: जी जी जी
0: छोटी बड़ी स्क्रीन पे लगातार देखने से
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आंखों पर प्रभाव पड़ता है
1: बिल्कुल।
0: परंतु रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो आपकी किसी काम में बाधक नहीं है
1: बिल्कुल
0: मनोरंजन करता है
1: बिल्कुल रेडियो ऐसी चीज है कि आप कहीं पे भी उसको रख के चालू करके सुन सकते हैं और अपना कामकाज निपटा सकते हैं है ना।
0: और एमएच हॉटलाइन जो प्रोग्राम शुरू हुआ है
1: जी
0: ये बहुत वर्ष पहले यहाँ विविध भारती के इंदौर प्रोग्राम में भी ये हुआ करता था
1: जी जी जी जी
0: तो हमें बड़ा मालूम है मतलब बहुत पसंद करते इस प्रोग्राम को।
1: चलिए अच्छी बात है आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब जल्दी से आपकी फरमाइश पूरी कर देती हूँ वरना बातों में ही वक्त गुजर जाएगा
0: बिल्कुल
1: है ना। चलिए तो सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।
0: नमस्कार
1: नमस्कार।

0: का MH हॉटलाइन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दे अपनी दोस्त विजया जैन को नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन,
0: अभी आप सुन रहे थे MH हॉटलाइन कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा विषय है रिश्ते। रिश्ते यानी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और जरूरी चीज है। हम अकेले पैदा होते हैं लेकिन रिश्तों के बिना हमारी जिंदगी अधूरी रह जाती है। परिवार, दोस्त, प्रेम, सहयोग, ये सब रिश्ते ही तो हमें सहारा देते हैं, खुशी देते हैं और मुश्किल वक्त में साथ खड़े होते हैं। रिश्ते हमें भावनात्मक सुरक्षा देते हैं। जब कोई हमारी बात सुनता है, हमारी खुशी में शामिल होता है या गम में कंधा देता है, तब हमें लगता है कि हम अकेले नहीं। वैज्ञानिक अध्ययन से भी ये पता चला है कि स्वस्थ रिश्ते रखने वाले लोग ज्यादा खुश, स्वस्थ और लंबा जीवन जीते हैं। अकेलापन आजकल एक बड़ी समस्या बन चुका है और अच्छे रिश्तों की या अच्छे रिश्ते ही इसका सबसे अच्छा इलाज हो सकते हैं। कुछ रिश्ते होते हैं जैसे कि माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, ये सब पहले से, जन्म से हमारे साथ में होते हैं। सबसे गहरे रिश्ते होते हैं, ये हमें मूल्य, सुरक्षा और पहचान देते हैं। वहीं मित्रता, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो बिना शर्त हमारे साथ रहते हैं। मित्रता यानी दोस्ती रिश्तों का वो रूप है जहां हम ज्यादा खुश और खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। इसी तरह से प्रेम के संबंध होते हैं। जीवन साथी का रिश्ता सबसे गहरा होता है जिसमें प्यार, विश्वास, सम्मान और समझ का मेल होना बहुत जरूरी होता है। और सामाजिक या पेशेवर रिश्ते जैसे सहकर्मी, पड़ोसी, गुरु, शिष्य, ये भी हमारी जिंदगी को बैलेंस्ड बनाते हैं। तो आज का हमारा ये विषय है कि रिश्तों को हम कैसे निभाएं। और हमारे जो नए श्रोता हम उनको अपना फोन नंबर बता देते हैं 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। शुरुआत करते हैं, हमारे पहले कॉलर कौन है, हम उनसे बात करते हैं। हेलो,
2: हेलो सर, नमस्ते। सर
1: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
2: दूल्हे सिंह यादव बोल रहा हूँ, सातपुड़ा जिला आगर मालवा मध्य प्रदेश से। सर
1: यादव जी, क्या हाल चाल है?
2: बढ़िया है, आप कैसे हो सर?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि रक्षाबंधन आने वाला है ना, तो संबंध जो भाई बहन के रिश्ते हैं और दूसरे रिश्ते हैं, हम उनको कैसे निभाएं?
2: सर ये प्रेम होना चाहिए सर आपस में, और प्रेम के साथ में एक दूसरे का विश्वास भी होना चाहिए सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, रिश्तेदारी में यानी प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए।
2: हाँ, विश्वास नहीं है तो सर किसी प्रकार का भी कोई मतलब नहीं है सर, बंधन हो या कोई दोस्ती हो, उसमें विश्वास बहुत जरूरी है सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये बताइए कि भाई बहन के रिश्ते का त्योहार आने वाला है, तो
2: हाँ
1: इसकी
2: बिल्कुल सर।
1: तैयारी आपकी किस तरह से चल रही है?
2: सर तैयारी यही, अभी तो जो बहने को ला रहे हैं सर लोग, और हमारी भी एक बहन है सर, वो भी आएंगी सर, राखी के दिन आएंगी, वो तो
1: जी।
2: पास में ही है सर, यहाँ आगर में ही। हाँ, तो वो उनको जो परिवार भी संभालना पड़ता है, इसलिए वो सिर्फ राखी के दिन आएंगी सर।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं एक बेहतरीन रक्षाबंधन का गीत, सुनिएगा रेडियो सेट पर आपके।

0: हेलो
1: हरदयाल जाटव, जिला मध्य प्रदेश, क्षेत्री।
0: जी, छिपरी से बोल रहे हैं।
1: हाँ जी सर,
0: अच्छा, ये बताइए कि क्या हाल चाल है।
1: सब बढ़िया है सर।
0: अच्छा, देखिए, आज का हमारा विषय है, बात आपकी की थी हमारे में रिश्ते। तो
1: हाँ
0: रिश्तों के
1: जी,
0: बारे में आप बताइए कि रिश्तों में क्या चीज़ सबसे खास है कि जिससे रिश्ते निभाए जा सकें।
1: अब सर रिश्ते तो ऐसा कि प्रेम भाव से रहने चाहिए और किसी से माने गलत नहीं बोलने चाहिए, जो रिश्ते में माने टूट नहीं आनी चाहिए, और अपने हिसाब किताब से चलो तो रिश्तेदारी में कभी दरार नहीं पड़ेगी सर।
0: क्या बात है, क्या बात है, आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो अब हम आपको गाना सुनवा देंगे, कुछ और भी कहना चाहेंगे।
1: और सर ये भी कहना चाहता हूँ, जो भी माने बहन हो, भाई हो, भाभी भैया हो, दादा दादी हो, उनसे अच्छे प्रेम भाव से बोलो बतराओ, और
0: बिल्कुल,
1: देश के लिए अच्छा रहेगा, श्रोता से यही कहना चाहता हूँ सर।
0: क्या बात कही है आपने। चलिए, आपने इतनी अच्छी बात कही तो अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये बहुत अच्छा गाना। सुनिएगा अपने रेडियो सेट पर।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: जी सर नमस्कार
0: नमस्कार।
1: जी। अम्बेडकर चौक तेगरवाड खोराई से आपका दोस्त राम सखी परमानंद।
0: परमानंद जी, और सुनाइए क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया है सर, बढ़िया जागीर सर।
0: और कुछ नई बात बताइए। देखिए, आज का हमने विषय चुना है रिश्ते। हाँ, रिश्तों में सामंजस्य कैसे बिठाएं, रिश्ते कैसे निभाए जाएं, रिश्ते को किस तरह से क्या करना चाहिए कि जिससे दूर तक निभाए जाएं। और हम
1: जी, रिश्तों से सामाजिक रिश्ते बनाने के लिए तो वक्त वक्त पर जो कार्यक्रम होते रिश्तेदारी में वहाँ शामिल हो, उनको राय सलाह भी दे, उनसे राय सलाह भी ले हर काम करने की प्रति। कोई भी
0: जी
1: काम हो तो उनसे थोड़ी राय सलाह लेने में रिश्तेदारों से कोई परेशानी नहीं है।
0: बिल्कुल। देखिए, हर रिश्ता हमें जन्म से मिलता है। मामा,
1: हाँ,
0: मामी,
1: उनको
0: चाचा,
1: बुलाए,
0: चाची, है ना?
1: जैसे
0: जी
1: भाई
0: जी
1: बहन का त्योहार आ रहा है अभी,
0: हाँ हाँ
1: तो उसमें उनको अच्छा बहन को आमंत्रित कर लें तो
0: बिल्कुल
1: रिश्ते में मधुरता बनी रहती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए, हर रिश्ता हमें जन्म से मिलता है, जैसे चाचा, चाची, मामा, मामी,
1: जी
0: माता, पिता। लेकिन एक रिश्ता होता है दोस्ती का। दोस्त
1: जी
0: हम खुद बनाते हैं। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई, है ना?
1: रक्तदान कर देते हैं कोई, और रिश्ते में जैसे आप किडनी वगैरह अंग दान कर दो तो वो भी रिश्ते बन जाते हैं अनजाने में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, है ना? आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, तो हम आपको सुनवा रहे हैं ये बहुत खूबसूरत गाना। सुनिएगा जरूर।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते, जरा तेज बोलिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है।
1: जी लक्ष्मण सिंह चंदेल।
0: लक्ष्मण जी, क्या हाल चाल हैं?
1: बिल्कुल बढ़िया है सर, आप बताइए आप कैसे। जी
0: बस बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ से बोल रहे हो?
1: ग्राम बोतराई, तहसील बसैया, जिला दमोह।
0: दमोह से बोल रहे हो, और सुनाइए क्या हाल चाल है?
1: बस बढ़िया है सर।
0: बढ़िया है, बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए, आज का हमारा विषय है रिश्ते, संबंध। रिश्ते संबंध, जिस तरह से रिश्ते हमारी जिंदगी में सबसे खूबसूरत चीज हैं, जैसे कि हम अकेले पैदा होते हैं लेकिन रिश्तों के बिना हमारी जिंदगी कुछ अधूरी रहती है। परिवार, दोस्त, प्रेम, सहयोग, ये सब रिश्ते ही तो हैं जो हमें सहारा देते हैं। इस पर
1: बिल्कुल
0: आप क्या
1: सत्य
0: कहना
1: है
0: चाहते
1: कि
0: हैं?
1: मान लो सर भाई बहन का रिश्ता है,
0: बिल्कुल
1: इसको भी आप मान लो, जैसे कम से कम जैसे आपकी बहन है तो सर साल में एक दो बार तो आप उनके पास जाइए।
0: बिल्कुल, रिश्ते निभाने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। जी,
1: और आने जाने से ही रिश्ते सर कायम रहते हैं।
0: सही बात है, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो देखिए, रिश्तों में हमें सुरक्षा भी मिलती है, सहयोग भी मिलता है, प्रेम भी मिलता है और परिवार भी बनता है ना? तो इन सबको संजोने के लिए हमें आपस में कोशिश करना चाहिए कि रिश्तों को निभाएं, है ना? और क्या किया जा सकता है?
1: सार की सब, और जितने भी रिश्तेदार से सब भाईचारा बनाए रहे, बोल चाल अच्छा रखें, कभी
0: बिल्कुल,
1: भी उनसे बुराई ना करें।
0: हाँ, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। चलिए, आपने इतनी अच्छी
1: हाँ
0: जा
1: सर, रिश्तेदारी में कुछ ऐसा भी होता है, कुछ लेन देन कर लेते, बोल नहीं करना चाहिए,
0: अच्छा
1: मन में करार आ
0: अच्छा
1: जाती।
0: नहीं, साफ सुथरा लेन देन करना चाहिए। चलिए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है, तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाना, सुनिएगा जरूर।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले कॉलर कौन है, हम उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सलोनी चौहान बोल रही हूँ रतलाम से।
0: रतलाम से सलोनी जी, क्या हाल चाल है?
1: बस बढ़िया साहब, मतलब एकदम खुशी के मारे बोला ही नहीं जा रहा।
0: देखिए, हम गाना तो सुनवाएंगे, लेकिन आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें है बात आपकी गीत हमारे, और आज हमने विषय लिया है रिश्ते। रिश्ते संबंध जो होते हैं, तो सलोनी जी देखिए कि कुछ रिश्ते जो होते हैं हमें बाई बर्थ मिलते हैं, जन्म से मिलते हैं, जैसे भाई बहन और माता पिता, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, जैसे कि दोस्त हो गए, है ना? हाँ, या हम अनजाने में कुछ रिश्ते बन जाते हैं कि किसी का ब्लड हमने लिया या किसी को ब्लड दिया, अंगदान लोग करते हैं उससे भी रिश्ते बन जाते हैं। तो अब जो बने बनाए रिश्ते हैं उनको हम किस तरह से निभाएं?
1: नहीं साहब, मेरा कहना है कि जब लड़की किसी बच्चे की माँ बनती है तो उसके ऑटोमेटिक ही रिश्ते बन जाते हैं। ये मम्मी है, ये पापा, ये बुआ, ये मौसी, ये रिश्ते ऑटोमेटिक बन जाते हैं। जब हम पृथ्वी पे किसी को दोस्त बनाते हैं ना, तो वो किसी सुदामा और श्री कृष्ण से कम नहीं होता है, और उसको निभाना अति आवश्यक है। मेरी राय में तो वही सच्चा दोस्त है जो सुख दुख में काम दे।
0: बिल्कुल सही बात है कि सुख दुख में जो साथ देते हैं वही सच्चे दोस्त होते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई, तो हम आपको सुनवा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत गाना, सुनिएगा।
1: जावेद भाई, बहुत बहुत थैंक यू,
0: शुक्रिया।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं ग्राम पनवाड़ी जिला महोबा उत्तर प्रदेश से देवी दीन अहरवार बात कर रहा हूँ।
0: देवी दीन जी, क्या हाल चाल है?
1: जी बढ़िया है, आप ठीक हो?
0: अब बिल्कुल ठीक ठाक है। देवी दीन जी, आज हमने जो विषय लिया है वो रिश्ते लिया है। ठीक
1: जी
0: है,
1: जी
0: बात आपकी गीत हमारे में आपने पार्टिसिपेट किया है, आप उसमें शामिल हुए हैं। तो हमारा मानना यह है कि कुछ रिश्ते जो होते हैं हमें बाय बर्थ मिलते हैं, यानी जन्म से मिलते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, ये कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो हम खुद बनाते हैं, जैसे दोस्त, या ब्लड डोनेट कर दिया तो कुछ ऐसे दोस्त भी बन जाते हैं अनजाने में। कुछ हम किसी को मौसी, किसी को चाचा, किसी को बोलते हैं, ऐसे भी रिश्ते बनते हैं। तो इस बारे में रिश्ते निभाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारे पुराने रिश्ते भी बने रहें और नए रिश्ते भी बने रहें?
1: जैसे हमारा रिश्ता है, मान लीजिए हमारा साढ़ू भाई है और हमारा दोस्त वगैरह हैं, तो ऐसे रिश्ते बनाने चाहिए कि ताकि वो बर हमेशा काम आ सके और सभी लोगों से मिल के चलना चाहिए और नॉर्मल बात करना चाहिए और एक दूसरे के दुख सुख में काम आना चाहिए, सबसे हिल मिल के चलना चाहिए, क्योंकि समय न जाने कब कहाँ इंसान को कहाँ ले जाए।
0: बिल्कुल सही बात है, और समय के
1: और
0: साथ में हमें चलना चाहिए।
1: हाँ जी, और दोस्त तो क्या दुश्मन से भी काम पड़ जाता है सर, है कि नहीं? तो बस समय कोई देख नहीं आया है, प्रेम से रहें और अपने परिवार में हिलमिल से रहें, किसी से झगड़ा ना करें। मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत, सुनिएगा अपने रेडियो सेट पर।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। हमारे अगले श्रोता कौन है, हम उनसे बात करते हैं। हेलो, कार्यक्रम बाद आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ भैया, योगेश जांगड़े पे मैं तरह छत्तीसगढ़ से।
0: योगेश जी, क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया भैया, अच्छे हैं।
0: योगेश जी, हमने आज का विषय लिया है रिश्ते कैसे निभाएं,
1: जी।
0: क्योंकि रिश्ते बहुत सारे होते हैं और रिश्तों को निभाना बहुत ज़रूरी है। कि रिश्ते इसलिए ज़रूरी है कि हमें सामाजिक पहचान देते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं, हमें हमारे सुख दुख के साथी होते हैं रिश्ते। तो हम किस तरह से रिश्तों को निभाएं?
1: अब देखिए भैया, मानव जीवन, हम सामाजिक जीवन में निवास करते हैं
0: जी
1: और बहुत सारे रिश्ते होते हैं। माँ बाप का हो गया, भाई बहन का हो गया, पति पत्नी का हो गया, बच्चों का हो गया, और अभी रक्षाबंधन भी आने को है। तो हर एक रिश्ते का एक अपना जो महत्व होता है और उसको उसी मर्यादा के साथ में निभाना चाहिए। माँ बाप
0: बिल्कुल
1: है तो हमेशा आदर से बात करे, बच्चे हैं तो हमेशा स्नेह से पेश आए, और हमारे समकक्ष हैं तो उस प्यार से मतलब पेश आए।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। तो अब इतनी अच्छी बात बताई है तो क्यों ना हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत गाना सुनवाएं,
1: बिल्कुल स्वागत है भैया।
0: है ना? गाना सुनिएगा।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है। कौन बोल रहे
1: मास्टर जी
0: हैं?
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: साहू जी बोल रहे हैं राजेंद्र नगर गंज वासोदा से।
0: जी, क्या हाल चाल हैं?
1: बहुत बढ़िया है सर, आप कैसे हैं?
0: बस बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। देखिए,
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
0: आज का हमारा जो विषय है वो है रिश्ते कैसे हम निभाएं।
1: रिश्तों को
0: हाँ, रिश्तों को हम किस तरह से निभाएं, क्योंकि कुछ रिश्ते हमें जन्म से मिलते हैं, कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं, तो उनको निभाने का क्या तरीका है, किस तरह से हमारे संबंध बने रहें।
1: अभी तो ऐसा है, देखो रिश्ते अगर निभाना है तो शांति पूर्वक काम करें, उन्हें समझाएं बुझाएं। कोई भी ऐसी चीज हो जैसे कोई मार्ग पे गलत चल रहा है उसको भी समझाएं कि
0: और जो
1: भाई
0: सही
1: ऐसा
0: चल
1: ना करें,
0: अच्छा और जो सही चल रहा है उसको उसको भी
1: उसको भी सही चल रहा
0: समझाएं।
1: है उसको भी थोड़ा बहुत समझाएं कि भाई इस मार्ग पे चले आप,
0: नहीं, जैसे कि कोई
1: इससे
0: अच्छे
1: आपकी
0: काम
1: हानि हो
0: कर
1: सकती है।
0: कोई अगर अच्छे काम कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं बहुत अच्छे काम करता हूं, तो उसको भी समझाएं कि तुम क्या
1: बिल्कुल
0: समझाएंगे।
1: सर, बिल्कुल। लेकिन वो आधार पर काम करने के दौरान भी उसको समझाया अगर गलत कर रहा है तो
0: हाँ, और सही कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो अब देखिए, आपने इतनी अच्छी बात बताई है तो क्यों ना हम आपको एक बहुत अच्छा गाना सुनवाएं।
1: बिल्कुल सर।
0: सुनिए अपने रेडियो सेट पर ये खूबसूरत गाना।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: जी सर, आपको नमस्कार। कार्यक्रम बात आपके गीत आपके कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे सर कार्यक्रम चल रहा है भोपाल से।
0: जी, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: जी, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सर कार्यक्रम।
0: जी, तो कौन बोल रहे हैं?
1: सर हम ग्रामा पोस्ट तालगांव तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से सर मेहरबान सिंह नांगल बोल रहे हैं। सर जी को नमस्कार। सर
0: नमस्कार। मेहरबान सिंह, इतना अच्छा नाम है आपका, तो आप तो सब पे मेहरबानी करते होंगे।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: आज हमारा विषय है रिश्ते कैसे निभाएं, संबंधों को हम किस तरह से निभाएं। कैसे
1: देखिए सर, ऐसा है कि रिश्ते तो निभाने चाहिए, तो
0: निभाना
1: रिश्ते निभाएं से जीवन में अच्छा लगता है।
0: तो किस तरह से निभाना चाहिए? प्रेम से निभाना चाहिए, लड़कर निभाना चाहिए?
1: नहीं, देखिए सर जी, एक जैसा माहौल है ऐसी बात है, क्योंकि
0: प्रेम भाव
1: प्रेम भाव बना के रखें रिश्तों से, मित्रों से, सभी से, तो
0: बिल्कुल
1: जीवन में थोड़ा अच्छा लगता है सर जी।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने। और रिश्ते वही होते हैं जो हमें, सच्चे दोस्त भी वही होते हैं जो बिना शर्त हमारे साथ में रहते हैं। मित्रता रिश्तों का वो रूप है जहां हमें सबसे ज्यादा खुद को खुलकर रख सकते हैं
1: बिल्कुल, ये बात हकीकत है सर।
0: हम, है ना। इसी तरह से माता पिता का, भाई बहन का, दादा दादी का, ये भी रिश्ते ऐसे हैं जो हमें जन्म से मिले हैं। ये ऐसे,
1: बिल्कुल, बहुत
0: है
1: सुंदर विचार, बहुत हकीकत बात है सर जी।
0: ना, ये गहरे रिश्ते हैं जिनको हम, हमें मूल सुरक्षा और पहचान देते हैं कि हमारी पहचान क्या है, हमारे हम किस कहाँ कौन किसके क्या हैं। ये सब हमें जन्म से मिलता है।
1: सही बात है, बिल्कुल हकीकत। या हमारे माता पिता हों तो माता पिता के भी रिश्ते बहुत गहरे होते हैं,
0: बिल्कुल
1: और बहनों और भाइयों के परिवार का पूरा सभी के बहुत रिश्ते गहरे होते हैं।
0: जी। इसी तरह से क्या होता है कि जीवन साथी या पति पत्नी का रिश्ता जो होता है वो भी बहुत गहरा होता है। इसमें प्यार, विश्वास, सम्मान और समझ का मेल होना चाहिए।
1: जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत हकीकत बात, और बहुत आज का विचार पे हम बहुत खुश हैं, बहुत महत्वपूर्ण विचार है। और हम तो सभी श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे, सभी रिश्तों को, जो अपने माता पिता हों, भाई बहनों, मित्रों को, सभी रिश्ते प्रेम भाव से निभाने चाहिए जीवन में।
0: बिल्कुल। और कुछ रिश्ते पेशेवर होते हैं जैसे कि हमारे सहकर्मी, पड़ोसी, गुरु, शिष्य, ये भी हमारे जीवन को संतुलित बनाने में बहुत मदद करते हैं।
1: बिल्कुल करते हैं।
0: तो चलिए, आपने इतनी अच्छी बात बताई तो हम आपको सुनवा
1: और
0: रहे
1: सर कौन
0: हैं।
1: सर बात कर रहे हैं सर?
0: मैं जावेद खान बात कर रहा हूं। तो
1: बिल्कुल
0: इन सबको निभाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि सबसे आदर पूर्वक, जिसका जो मकाम है, छोटे हैं तो छोटों का और बड़े हैं तो बड़ों का, उनको वो सम्मान रहना चाहिए कि जिसमें कि उनको कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील ना हो।
1: जी सर, बिल्कुल, धन्यवाद, नमस्कार, आपके विचार
0: नमस्कार,
1: पे बहुत अच्छा लगा सर।
0: धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए यूपीआई के लेनदेन की संख्या में अब तक लगभग 13,000 गुना की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय एवं निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ भारत की विकास यात्रा में जापानी भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की। गौरतलब है कि श्री गोयल भारत के विभिन्न क्षेत्रों के 200 से अधिक कारोबारी प्रतिनिधिमंडल के साथ 27 अगस्त तक जापान की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज

ग्वालियर जिले के डबरा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में किसानों से वर्चुअली संवाद करेंगे। कार्यक्रम में किसानों को उन्नत कृषि तकनीक, ड्रोन, स्मार्ट सिंचाई, डिजिटल कृषि सेवाओं और मौसम आधारित खेती की जानकारी दी जाएगी। देश में चीनी के पर्याप्त भंडार मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार ने एहतियात के तौर पर 10 लाख टन चीनी आयात करने का भी फैसला किया है। केंद्र सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं। इससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। और मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, बैतूल और राजगढ़ में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मंजिल फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने। योगेश की शब्द रचना है, संगीत आरडी बर्मन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार इस गीत को पसंद कर रहे हैं। इसी गीत को सुनना चाहते हैं मोहाली चंडीगढ़ के श्रोता। ये हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रीति, प्रतीक, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से इसी गीत को पसंद किया है शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने। इसी गीत के लिए हमें पत्र मिला है छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का। तो आइए सुनते हैं फिल्म मंजिल का ये नगमा।

अब आपको सुनवा रहे हैं दिल और मोहब्बत फिल्म की वो रचना जिसे तैयार किया है वर्मा मलिक ने। ओपी नैयर का संगीत है, आवाज आप सुनेंगे महेंद्र कपूर की। पसंद आप सब श्रोताओं की है। उमर खेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गवाड़कर, सरिता प्रिंस, एकांश सिद्धांत गवाड़कर, अर्जुन प्रणीत और वैशाली, शैलेश और सुमित के साथ कुमारी ध्वनि इस गीत को सुनना चाह रही हैं नागपुर से। इसी गीत को पसंद किया है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत के श्रोताओं ने। ये हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मुश्ताक शाकिर, अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। बक्सर से इसी गीत के लिए फरमाइश आई है जीवित गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष और आयुषी के साथ सानवी की। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर दिल और मोहब्बत फिल्म का ये नगमा।

जोगन फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाज है गीता रॉय की, संगीत बुलो सीरानी का है, गीत लिखा है हिम्मत रॉय शर्मा ने, पसंद आप सब श्रोताओं की है। डोंगर गांव छत्तीसगढ़।

ये राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये इस गीत को सुनना चाहते हैं। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचौलिया, प्रियंका पंचौलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचौलिया का पत्र भी हमें मिला है। इसी गीत के लिए फरमाइश लिख भेजी है छत्तीसगढ़ के श्रोताओं ने भी। ये हैं ततरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और पिपरिया से दुर्गा राम साहू। तो चलिए इन सब की पसंद पर सुनते हैं जोगन फिल्म का ये नगमा।

और अब लीजिए सुनिए अनमोल घड़ी फिल्म का वो नगमा जिसे आवाज़ दी है सुरैया ने। नौशाद का संगीत है और इस गीत को पसंद किया है नेपाल पैलेस सागर के श्रोताओं ने। ये हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। इसी गीत को जयराज प्लॉट राजकोट के श्रोताओं ने भी पसंद किया है। ये हैं मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमिन और प्रयागराज भट्ट। बड़वाह के श्रोताओं का भी पत्र हमें मिला है। ये हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। तो आइए सुनते हैं अनमोल घड़ी फिल्म का ये गीत।

अब आपको सुनवा रहे हैं मन्ना डे और आशा भोसले की आवाज में रेशमी रुमाल फिल्म का वो गीत जिसका संगीत तैयार किया है बाबुल ने, गीत लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने। पसंद आप सब श्रोताओं की है। 12 राजस्थान के श्रोता इस गीत को सुनना चाहते हैं। ये हैं सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव। गांधी चौक बाड़मेर के श्रोताओं का भी पत्र हमें मिला है। ये हैं बबलेश पवार, डैनी और मास्टर मनीष। गोला बाजार बक्सर से इसी गीत को सुनना चाहते हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित के साथ संगीता आर्य। तो आइए सुनते हैं रेशमी रुमाल फिल्म का ये गीत।

सरस्वती चंद्र इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। मुकेश की आवाज है, इंदीवर के बोल, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। पसंद आप सब श्रोताओं की। धामणी मानोरा से हमें पत्र मिला है, तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश, किरण, प्रज्वल और अनुत डेरे का इसी गीत को पसंद किया है। नारायण भाऊ, विठ्ठल राव, ललिता रानी खर्चे, परी, संजना, गणेश, कार्तिक खर्चे, ब्रोनो, उषा, सोरना खर्चे इस गीत को सुनना चाहती हैं। इसी गीत को पसंद किया है स्वाति, प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी ने। ये पत्र हमें मिला है बिस्वा से। तो आइए सुनते हैं फिल्म सरस्वती चंद्र का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना मुकेश की आवाज में सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत। अगर आप भी अपनी पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है, कार्यक्रम आपकी फरमाइश, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी भोपाल, श्यामला हिल्स भोपाल। ये है पता हमारा, और पिन कोड है भोपाल का 462002। तो आप भी हमें पत्र लिखकर बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: बुधवार की शाम आपकी पसंदीदा फिल्मों के नाम।
1: बंध के रक्षा बंधन से।
0: जी हाँ, युववाणी कार्यक्रम में इस बुधवार एक ही फिल्म से में हम लेकर आए हैं आपके लिए भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित फिल्म रक्षा बंधन।

0: तो इस बुधवार सुनना मत भूलिएगा ठीक शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह!
5: अनजान ऐप से बचें।
6: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
7: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
8: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
7: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
8: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
7: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: बुधवार की शाम आपकी पसंदीदा फिल्मों के नाम।
1: बंध के रक्षा बंधन से।
0: जी हाँ, युववाणी कार्यक्रम में इस बुधवार एक ही फिल्म से में हम लेकर आए हैं आपके लिए भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित फिल्म रक्षाबंधन।

0: तो इस बुधवार सुनना मत भूलिएगा ठीक शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक जमुनिया। आज सुनिए इसकी सातवीं कड़ी।

0: अभी तक आपने सुना है कि जमुनिया और रतन पट्टे की जमीन पाकर खुश थे और अपनी मेहनत से उसे खेती लायक बनाया। रतन के भाई करण ने रतन को दीवान से 10,000 रुपए का कर्ज दिलाया, जिसे छल पूर्वक दीवान और करण ने मिलकर 25,000 कर दिया। रतन को ये बात पता चली तो वो स्तब्ध हो गया। इसी बीच जमुनिया गर्भवती हुई, उसने पुत्री को जन्म दिया। उसके जन्म से पहले ही रतन ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद करण ने जमुनिया को उसकी बेटी के साथ घर से निकाल दिया और उसका बेटा हथिया लिया। पास के एक गांव के छुल्लन ने जमुनिया को आसरा दिया। गांव में अस्पताल, सड़क, स्कूल, पानी इत्यादि की कमी जमुनिया को खलने लगी और इसके लिए वो अशिक्षा को जिम्मेदार मानते हुए उसने पढ़ने का निश्चय किया। वहां के गुरुजी से मिली। इसके बाद आगे हमारी आज की गाथा इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा अतीत क्या था, और अगर मामला देश की सामाजिक और आर्थिक परिवेश का हो या राजनीतिक वातावरण का, तो ये बात यकीनन सच लगती है। इतिहास इस बात का गवाह है, चाहे वो अर्जुन और दुर्योधन का महाभारत हो, चाहे वो अलेक्जेंडर का यूनान, चाहे वो जूलियस सीजर का रोम, या फिर अंग्रेजी साम्राज्य के उत्थान या पतन का हो, या आज के भारत में स्थित हमारे मास्टर जी यानी कि जमुनिया के गुरुजी भी कुछ ऐसा ही मानते थे। गुरुजी को विश्वास था कि अगर जमुनिया के अंदर की चिंगारी को सही दिशा मिलती है तो ये जरूरी है कि पहले जमुनिया गांव की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति की जड़ को और उसके तमाम कारणों को अच्छी तरह समझ ले। फिर क्या था, मंझे हुए कुम्हार की तरह जमुनिया की शक्ल बदलने लगी।
1: गुरुजी, गुरुजी।
2: हाँ।
1: प्रणाम गुरुजी, मैं आ गई।
2: अच्छा, प्रणाम प्रणाम।
1: ये रहा कागज। हाँ। जे कलम और जे पेंसिल, आज शुरू करते हैं। आशीर्वाद दीजिए कि मैं पढ़ना लिखना जल्दी से सीख जाऊं।
2: अरे भाई, आशीर्वाद तो हमारा सदैव तुम्हारे लिए रहेगा जमुनिया। हाँ, तो तुम्हें पढ़ाई की शुरुआत स्लेट व चौक से ही करना होगी है। देखो, शुरू शुरू में कई बार अभ्यास करना पड़ता है। हाँ। इसके लिए

0: स्लेट ही अच्छी रहती है और चौक ही अच्छी रहती है। अरे भाई, क्योंकि कागज जरा खर्चीला है ना, इसलिए।
1: तो फिर आज से पढ़ाई शुरू नहीं होगी गुरुजी?
0: हाँ, अरे भाई क्यों नहीं होगी, आज ही से नहीं बल्कि अभी से शुरू होगी। हैं, देखो अपना कागज कलम तुम अपने पास रखो। हैं,
1: जी
0: ये देखो, ये मेरे पास चौक और ये स्लेट है।
1: जी
0: हाँ, तो इधर चार्ट पर देखो,
1: जी
0: ये रहा आ। अब तुम्हें इसकी नकल करके स्लेट पर लिखना होगा। है, ये लो।
1: जी ये रहा अ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो देखो साथ में बोलती भी रहो तुम। है, देखो आ।
1: जी अ।
0: थोड़ी गड़बड़ है, पहले इस तरह देखो, आड़ी लाइन,
1: जी
0: फिर खड़ी लाइन,
1: जी
0: है, तब बनेगा आ।
1: हाँ जी ये रहा अ।
0: हाँ, ये कुछ ठीक है। अब इसके आगे खड़ी लाइन, है, खड़ी लाइन और खींचोगी तो बनेगा आ।
1: जी ठीक है, ये रहा अ और ये आ।
0: अरे अरे भाई, तुम बहुत जल्दी कर रही हो। हैं, देखो देखो देखो, आराम से, हैं, अच्छे से, साफ साफ लिखने की कोशिश करो।
1: जी अच्छा गुरुजी, ये रहा अ और इसके आगे ये खड़ी लकीर, ये रहा आ।
0: अरे भाई, इतनी बड़ी लकीर नहीं बनाते, उसे भी आ के आकार की ही बनाना पड़ती है।
1: हाँ जी
0: हाँ,
1: इस बार कुछ बात बनी क्या गुरुजी?
0: कुछ बात बनी तो है।

0: आ गई?
1: जी।
0: अरे कैसी रही आज की पढ़ाई जमुनिया?
1: लिखना, फिर उसको आ बनाना सीखा है।
0: हाँ
1: अच्छे से बन नहीं रहा था बाबा, पर छोड़ूंगी नहीं, आज रात को घर पर ही अभ्यास करूंगी।
0: हाँ भाई, अरे कर भाई कर, इस उम्र में तूने पढ़ाई की ठानी है तो कर ही डाल।
1: बाबा,
0: हाँ
1: हम चिरैया को भी पढ़ाएंगे।
2: तब तो बड़ा अच्छा लगेगा ना माँ, हम दोनों पढ़ेंगे।
0: तुम्हारी इच्छा पूरी हो बिटिया, पूरी हो।
1: बस यही आशीष दो बाबा।
0: अरे हाँ, आशीष है आशीष है।
1: गुरुजी, गुरुजी।
3: हाँ, अरे आओ आओ जमनिया आओ।
1: प्रणाम गुरुजी।
3: प्रणाम प्रणाम।
1: मैं आज थोड़ा जल्दी आ गई गुरुजी।
3: अरे कोई बात नहीं, मेरे पास कोई और काम नहीं है बेटा, जैसे ही तुम्हें समय मिले आ जाया करो,
1: जी
3: बार बार लिखने से जल्दी सीख जाओगे।
1: जी अच्छा गुरुजी। गुरुजी,
3: हाँ
1: ये देखिए, मैं कुछ लिख कर लाई हूं।
3: अरे अरे अरे वाह वाह वाह, अरे भाई तुमने तो बड़ा अच्छा लिखा है, लगता है घर पर भी तुमने खूब लिखा है।
1: जी गुरुजी, मुझे पढ़ना लिखना सीखना ही है।
3: अरे शाबाश बेटा शाबाश। भाई देखो, आज तुम्हें हम अंक लिखना सिखाएंगे हैं।
1: जी
3: एक, ये देखो एक है,
1: जी
3: और ये दो, और ये तीन है।
1: ये तो लिखना थोड़ा आसान लग रहा है ना गुरुजी?
3: हाँ बेटा, लेकिन इन अंकों की दुनिया बड़ी चतुर होती है। खैर वो भी मैं तुम्हें समझाऊंगा, अभी तो तुम इसको जरा बार बार लिखो।
1: जी गुरुजी।

0: शाबाश।
1: अच्छा लिखा ना गुरुजी।
0: बहुत अच्छा, बहुत।
2: दलिया पंखे ले लो बाबू।
1: बाबू दलिया पंखे ले लो, बहुत अच्छे हैं।
3: हाँ ले लो ना बाबू।
4: बड़ी प्यारी बच्ची है, अच्छा ला भाई दे दे, एक डलिया दे दो बस।
1: बाबू एक पंखा भी ले लो ना, बहुत मजबूत है, गर्मी के दिन है, घर में काम आएगा बाबू, ले लो ना।
4: अच्छा ला भाई पंखा भी दे दे।
5: आज तो सब सामान बिक गया, तेरी आवाज पर लोग डलियों के साथ साथ पंखा भी खरीद लेते ही है।
3: अपनी माय की अच्छी चिड़ैया हूँ ना।
5: मेरी अच्छी चिड़ैया।
1: बाबा के लिए इमरती ले चले।
3: हाँ माँ ले लो, हम लोग भी खा लेंगे ना, कितना दिन तो हो गया मिठाई खाए।
1: और थोड़ी सी चाक भी ले लेती हूँ, स्लेट तो गुरुजी ने दे दी है ना।
3: माँ जो तू पढ़ती है वही मुझको भी पढ़ा दिया करना।
5: अरे वारी, तू तो बड़ी सयानी निकली। हाँ।

0: हाँ जमुनिया, अक्षर, अंक, मात्राएं, ये सब तो तुमने बड़ी जल्दी सीख ली। अब हम तुम्हें शब्द ज्ञान पढ़ाएंगे।
1: जी गुरुजी।
0: हाँ, और देखो साथ में तुम्हें कुछ कहानियां भी सुनाते चलेंगे। तुम्हें उन्हें सुनकर याद करना होगा और उसी में से हम तुमसे कुछ सवाल भी पूछेंगे।
1: जी।
0: और जिसका उत्तर तुम्हें अपनी समझ से देना होगा।
1: मास्टर जी, कोशिश करूंगी।
0: अरे वाह जमुनिया, तू तो मुझे मास्टर बोलने लगी।
1: भूलोगे गुरुजी, बच्चे आपको गुरुजी और मास्टर जी ये दोनों ही बोलते हैं ना।
0: अरे, अरे, अरे।
1: तो मैंने भी।
0: चलो चलो कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो बेटा अब कहानी सुनो।
1: जी।
0: हमारे देश में हर देश के लोग आते रहे, व्यापार करते फिर चले जाते। पहले देशों को जाने के लिए समंदर ही का रास्ता था। और हमारे देश के तीन तरफ समंदर है।
1: बाप रे।
0: समंदर समझती हो ना? अरे वो खारे पानी वाला, खारे पानी का होता है जो।
1: जी गुरुजी, जिससे नमक बनता है।
0: हाँ हाँ,
1: किसी ने कभी नमक खरीदते समय बताया था।
0: अच्छा
1: जी, वो बहुत बड़ी सी झील है ना, बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी, जितना हम सोच भी नहीं सकते।
0: भाई धीरे धीरे सब समझ जाओगी। तो बेटा व्यापारी आते, व्यापार करते फिर चले जाते। थोड़े से लोग यहां भी बस गए, पर अंग्रेज ऐसे आए कि जोंक की तरह चिपक गए। आए तो यहां व्यापार करने थे, पर हमारी आपसी फूट का फायदा उठाकर धीरे धीरे यहां के राजा बन बैठे। उन्होंने देश का सामाजिक और आर्थिक ढांचा खोखला कर दिया।
1: गुरुजी, सामाजिक तो समझ में थोड़ा आया।
0: हाँ।
1: जैसे कि हम जिनके बीच रहते हैं।
0: हाँ।
1: रीति रिवाज वगैरह।
0: हाँ।
1: पर ये आर्थिक क्या होता है गुरुजी?
0: अरे भाई आर्थिक यानी वो रुपये पैसे की गरीबी। तो वो अपना माल यहाँ बेहद महंगा बेचते और हमारा माल सस्ते में ले जाते। उन्होंने हमें गरीब बना दिया, हमारे गांव बर्बाद हो गए और हम अपने ही देश में गुलाम हो गए।
1: वो बहुत चतुर लोग रहे होंगे।
0: हाँ बेटा।
1: और बेईमान भी।
0: हाँ हाँ, बहुत चतुर, बहुत बेईमान। तो बेटा
1: जी,
0: तुम सब समझ रही हो।
1: जी।
0: तो अब बताओ कि अंग्रेज हम पर राज करने में क्यों सफल हुए?
1: गलत हो तो समझाइएगा, मैं ज्यादा समझदार नहीं हूं ना। गुरु जी, मैं समझती हूँ, हम आपस में मिलजुल कर नहीं रहते थे, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे होंगे, है ना?
0: बहुत अच्छा उत्तर दिया तुमने, बहुत अच्छा, शाबाश। अच्छा तो बेटा आप बताओ हमारी आर्थिक स्थिति क्यों खराब हुई?
1: वो अपने देश का माल यहाँ लाकर सस्ता, अरे माफ करना गुरुजी, महंगा बेचते थे और हमारा माल सस्ते में ले जाते थे, है ना?
0: वाह वाह वाह, अरे भाई बिल्कुल ठीक। तो देखो आज बस इतना ही है
1: जी।
0: हाँ, मैंने शहर से रेडियो टेप रिकॉर्डर बुलवाया है।
1: अरे वाह।
0: उसके आने के बाद तुम्हें कुछ खास रिकॉर्डिंग भी सुनवाऊंगा।
1: गुरुजी, गाना सुनवाएंगे?
0: हाँ भाई गाना भी सुनाएंगे, पर तुम्हें जरा ध्यान से सुनना होगा
1: जी,
0: क्योंकि उसमें हमारे देश के महापुरुषों के भाषण होंगे। उसे तुम्हें और भी अधिक समझना पड़ेगा।
1: बहुत अच्छा लगेगा, जमुनिया को भी समझ में कुछ आएगा। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है गुरुजी।
0: ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा तो अब तुम घर जाओ हैं?
1: ये तो आज का वाक्या आज हो गया।
0: हाँ बेटा, बहुत तेज दिमाग पाया है तूने, बस थोड़ी सी मेहनत से सब हासिल हो जाए।
1: बस आपका आशीर्वाद रहेगा तो सब हो जाएगा।
0: अच्छा।

0: जी बाबा।
1: आज बड़ी देर हो गई बिटिया।
0: बाबा आज गुरुजी ने कहानी बताई, कैसे अंग्रेज आए, हमें आपस में लड़वाया, गरीब बनाया।
1: अरे वाह, इंतजार करते करते चिड़ैया बेचारी तो सोई भी गई।
0: अरे इसने तो कुछ खाया वाया या भूखी ही सो गई।
2: हम सोए नहीं है माई। हाँ, खाना भले ही खा लिया पर बाबा ने नहीं खाया, तुम्हारी राह देख रहे हैं।
0: हे राम, चलो बाबा खाना खा लो।
1: हाँ, दोनों का निकाल ले, साथ ही खा लेंगे बेटा।
0: ठीक है बाबा।
1: ला
0: ये लो बाबा।
1: हाँ।
0: ज्ञान की बात।

0: बातें सीखी। गुरुजी ने शहर से टेप मंगाया है,
1: अच्छा
0: हमें गाना और बड़े बड़े लोगों का भाषण सुनवाएंगे। समय मिलेगा तो तुम भी चलना बाबा, अच्छा लगेगा। यहां बैठकर समय बर्बाद करने से अच्छा है वहां ज्ञान की बातें सुनने को मिलेंगी।
1: अच्छा भाई, अच्छा चलेंगे, अभी खाना तो खा ले।
0: खा तो रही हूं बाबा, आप ही ना।

0: ये तो बड़ी अच्छी जगह है, कभी यहाँ आए ही नहीं।
1: अरे बढ़िया, मैं एक आध बार ही यहाँ आया हूँ। सोचा कि आज गुरुजी के पास जाने से पहले थोड़ा मंदिर भी होते चले।
0: अच्छा किया बाबा।
1: क्या मांगा तूने भगवान से?
0: वो तो सब जानते हैं, भगवान है ना। हाँ, ये जरूर मन चाहता है कि सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहे,
1: वाह,
0: सब सुखी हो, खुश रहे।
1: अरे वाह, गुणवान हो गई है मेरी बिटिया।
0: हाँ बीना बाबा, चलिए गुरुजी के पास चलते हैं।
1: हाँ चलो।
2: अरे आओ आओ जबनिया आओ। अरे वाह,
0: राम राम। प्रणाम गुरुजी।
2: राम राम राम, झुल्लन को भी साथ लाई हो।
0: जी गुरुजी, हमें जो ज्ञान की बातें बताते हैं ना, वो बाबा भी सुन लेंगे, अच्छा लगेगा।
2: अच्छा अच्छा अच्छा भाई, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।
1: कोई असुविधा हो तो बता देना गुरुजी, बिल्कुल बेधड़क।
2: नहीं नहीं भाई, बुजुर्ग आदमी हो, दिन भर काम करते हो, मैंने सोचा आराम करते, पढ़ने की धुन तो इसे सवार है ना।
0: क्या बाबा, तुम्हें तकलीफ होगी यहाँ बैठने में?
1: अरे भाई, तकलीफ होगी तकलीफ होगी तो चला जाऊंगा।
2: चलो चलो, ठीक है ठीक है, तुम लोग बैठो हैं। देखो, मैंने एक नाटक मंगाया है जिसे मैं तुम्हें रेडियो से सुनवाऊंगा।
0: रेडियो से?
2: अरे भाई, इसमें रेडियो भी है और टेप भी।
0: अरे वाह।
2: हाँ, टेप चलाऊंगा तो नाटक सुनाई देगा।
1: हाँ, जी जी, सुनाइए जी, सुनाइए गुरुजी।
0: जी गुरुजी।
2: पहले भाई तुम्हें उसके बारे में थोड़ा सा समझा दूं।
0: अच्छा।
2: कि इस नाटक में एक अंग्रेज एक किसान के साथ किस तरह बात करता है, उसके क्या इरादे, क्या तौर तरीके हैं, ध्यान से सुनना।
0: हाँ, जी।
2: सब समझ में आ जाएगा है?
0: जी।
2: और ना समझ में आए तो तुम मुझसे बाद में पूछ लेना।
1: जी गुरुजी।
0: जी गुरुजी। हाँ।
3: हमारा कंपनी नहीं, मुगल बादशाह से लगान और माल भाड़े पर चुंगी जो तुम किसान और व्यापारी लोग देते हो, लेने का अधिकार खरीद लिया है।
1: ये किसे खरीदे हुजूर?
3: अरे तुमसे लगान और चुंगी लेने का हक हमने ले लिया है, समझा? हम तुमको 1 से 5 साल तक जमींदारी का काम दिया, पर तुमने कुछ नहीं किया।
4: हुजूर, मैं दूसरे किसानों से लगान वसूल करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मगर क्या बताऊँ, इस बार सारी फसल बर्बाद हो गई, किसानों की हालत बहुत खराब है हुजूर।
3: नो नो नो नो नो, वो हम कुछ नहीं जानते, जबरदस्ती लगान ले लो, नहीं देता तो जमीन छीन लो।
4: आप क्या कह रहे हैं हुजूर, जमीन पर तो हमेशा किसानों का अधिकार रहा है, और तो और नवाब साहब भी किसानों का खेत जब्त नहीं कर सकते।
3: जैसा हमने बोला वैसा करने का, जमीन छीन लो।
4: जी,
3: तुम नहीं कर सकते तो हम किसी और को जमींदार बना देगा।
4: क्या?
3: यस, अब तुम जा सकता है, यू कैन गो।
0: गुरुजी, बड़े जालिम है ये अंग्रेज।
2: हाँ जमनिया, बड़े जालिम थे ये अंग्रेज, उनका चरित्र बताने के लिए ही ये नाटक बनाया गया।
0: जमींदारों से अंग्रेज ऐसे बात करते थे?
2: अच्छा, अब तुम ये बताओ।
0: जी।
2: कि जब किसान से अंग्रेज ने लगान न देने पर जमीन जब्त करने को कहा था तो किसान ने क्या उत्तर दिया था?
0: ठीक ही जवाब दिया, ऐसे में तो नवाब की जमीन जब्त नहीं कर सकते।
2: शाबाश शाबाश बेटा शाबाश, तुमने बिल्कुल ठीक समझा।
1: सही में मुझे भी बहुत अच्छा लगा गुरुजी।
2: अरे चुल्लन, हाँ। तुम्हारा भी जब मन हुआ करे तुम भी आ जाया करो।
1: जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी।
2: प्रणाम
0: प्रणाम गुरुजी।

0: कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: पेश इस घंटे की खास खबरें। यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए यूपीआई के लेन देन की संख्या में अब तक लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय तथा निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ भारत की विकास यात्रा में जापानी भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की। गौरतलब है कि श्री गोयल भारत के विभिन्न क्षेत्रों के 200 से अधिक कारोबारी प्रतिनिधिमंडल के साथ 27 अगस्त तक जापान की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भिंड जिले के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की विस्तारित 4वीं विनिर्माण इकाई का शुभारंभ करेंगे। इससे 2,250 से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव पीडब्ल्यूडी नियुक्तियों के प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। देश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता के लिए सरकार ने एहतियात के तौर पर 10 लाख टन चीनी आयात करने का फैसला किया है। भोपाल में 15 जनवरी 2027 को भव्य आर्मी डे परेड का आयोजन किया जाएगा। मुख्य परेड भील के कालीबाड़ी मार्ग पर होगी। जमुई मैदान में सेना के अत्याधुनिक हथियारों और सैन्य उपकरणों का

0: प्रदर्शन होगा। वहीं बड़ा तालाब के बोट क्लब क्षेत्र में सेना की सामरिक क्षमता और शौर्य दिखाया जाएगा। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, बैतूल और राजगढ़ में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी के इंदौर केंद्र के योगदान से लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम महिला कार्यक्रम।

महिला सभा कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ आपकी सखी सोनल चौरे। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, हर साल राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा लोगों को नेत्रदान के महत्व के प्रति जागरूक करने और मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने के लिए प्रेरित करने का अवसर है। नेत्रदान एक ऐसा महान संकल्प है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की दुनिया में दोबारा रोशनी लाई जा सकती है। हम में से कई लोग जीवन भर स्वस्थ आंखों से दुनिया की खूबसूरती देखते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद हमारी आंखें किसी जरूरतमंद के जीवन में उजाला ला सकती हैं। कॉर्निया से जुड़ी गंभीर समस्या के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति को नेत्र प्रत्यारोपण के माध्यम से फिर से देखने की क्षमता मिल सकती है। सखियों, नेत्रदान के लिए उम्र या चश्मा पहनना हमेशा बाधा नहीं होता। हालांकि नेत्रदान की उपयुक्तता का अंतिम निर्णय चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, इसलिए जरूरी है कि परिवार के सदस्यों को अपनी इच्छा के बारे में पहले से जानकारी दें और अधिकृत नेत्र बैंक के माध्यम से पंजीकरण कराएं। इस राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े पर आइए सखियों, मृत्यु के बाद भी किसी की जिंदगी में रोशनी रहे का संकल्प लें। एक छोटा सा निर्णय किसी के लिए दुनिया देखने का अवसर बन सकता है। तो नेत्रदान करें, जागरूकता फैलाएं और किसी की जिंदगी में रोशनी बनें।

सखियो, हम बात कर लेते हैं आयुष्मान भारत योजना के बारे में। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। इसे 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। इसे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना माना जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना है। इसके तहत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। लाभार्थी देश के किसी भी सूचीबद्ध सरकारी या निजी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। इस योजना में लगभग 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को शामिल किया गया है। इसमें कैंसर, हृदय रोग, किडनी और घुटना प्रत्यारोपण जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज भी मुफ्त होता है। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी जन सेवा केंद्र या सरकारी अस्पताल में जाकर पात्रता की जांच की जा सकती है। यह योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। सखियो, अब चलते हैं हमारे अगले क्रम मेरी उड़ान की ओर। तो इसमें मेरे साथ जुड़ी हैं वंदना मालाकार जी, जो कि एक सिलाई क्लास संचालिका है। तो आइए सुनते हैं क्रम मेरी उड़ान।

0: उड़ान खुशियों की,
1: उड़ान सपनों की,
0: उड़ान हौसलों की,
1: मेरी उड़ान।
2: सखियों, किसी मुकाम को हासिल करने के लिए जुनून की जरूरत होती है। जुनून के साथ ही हमारे अंदर उस कार्य के प्रति रुचि भी होना जरूरी है, क्योंकि रुचि के बिना किया गया कार्य उतने अच्छे से नहीं किया जा सकता। रुचि कर कार्य हमेशा ही अच्छा परिणाम देता है। ऐसी ही एक सखी मेरे साथ है जिन्हें सिलाई के कार्य में रुचि भी रही है और वे बड़ी लगन से सिलाई करके अपना घर चला रही है। इनका नाम है वंदना मालाकर। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि सिलाई के क्षेत्र में वे कैसे आगे बढ़ी। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्रम मेरी उड़ान में।
3: धन्यवाद।
2: तो वंदना जी, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि सिलाई में रुचि आपको कब आई, कैसे आपने अपना सिलाई का कार्य शुरू किया?
3: मुझे बचपन से ही शौक था सिलाई करने का। मम्मी मेरी सिलाई करती थी तो उनको मैं देखा करती थी, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि कुछ करना चाहिए थोड़ी सी सिलाई। अब तो मैं भी पहले छोटे मोटे कपड़े घर में सिलना सीखे मैंने। उसके बाद फिर मेरी मम्मी ने मुझे नया कपड़ा ला के दिया। उसके बाद मैंने नई ड्रेसेस बनाना शुरू की तो मेरे हाथ से अच्छे कपड़े बनने लग गए। पहले चद्दर तकिया की खोले ये चीजें मैं बनाती थी। फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया। शादी के बाद फिर मेरी ससुराल में सिलाई मशीन नहीं थी, फिर मैंने जाके सिलाई मशीन खरीदी क्योंकि मुझे शौक था सिलाई करने का। और धीरे धीरे फिर मैंने सिलाई करना शुरू की और मेरा सब्जेक्ट भी होम साइंस था तो उससे भी मुझे कुछ फायदा था कि मैंने उसमें भी बच्चों के कपड़े वगैरह बनाए थे, तो मुझे इंटरेस्ट भी था और बच्चों के कपड़े बनाने का शौक भी था। अच्छा रिस्पांस मिलने लग गया मुझे, अड़ोस पड़ोस के लोग भी आते थे मेरे पास सिलाई करवाने के लिए।
2: ये तो बहुत ही अच्छी बात है वंदना जी कि आपने अपने कार्य को आगे बढ़ाया, सिलाई के कार्य में आपकी रुचि रही और आपने इस कार्य में आगे बढ़ी। आप ये बताइए कि आप सिलाई के काम और घर के कामों के बीच कैसे मैनेज कर पाती हैं?
3: मैं पहले अपने घर का काम निपटाने के बाद, सुबह उठ के अपने घर के काम निपटाने के बाद फिर सिलाई का काम करती। कुछ लेडीज है मेरे पास सीखने के लिए भी आती है, मैं उनको सिखाती भी हूँ, मैं अपनी खुद सिलाई भी करती हूँ। और मैं चाह रही हूँ थोड़ी ज्यादा लेडीज से आए तो मुझे सिखाने का भी कुछ पैसा मिले, सिलाई का भी कुछ पैसा मिले तो मेरी आय बढ़े। इस तरह से मैं सोच रही हूँ मेरा काम और आगे बढ़ाने का।
2: तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप सिखाने का भी कार्य करती है। इसी से क्या होगा कि महिलाएं भी सीखेंगी तो वो भी कार्य में अपना घर भी चला पाएंगी।
3: बिल्कुल सही बात है ये तो, कि अगर कोई भी इंसान थोड़ी सी मेहनत करेगा तो उसकी आय भी बढ़ेगी और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी अपने घर में।
2: वंदना जी, ये बताइए कि आय की बात करें तो क्या आप इतनी कमाई कर पाती हैं कि आपका घर मैनेज हो जाए?
3: हाँ, इतनी कमाई तो नहीं हो पाती है, थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ये चीजें सीजन सीजन पे ज्यादा चलती है। त्योहारों के समय पे थोड़ा सा काम मिलता है तो त्योहारों पे थोड़ी अच्छी इनकम हो जाती है, बाकी समय तो चलता रहता है, पर रुचि है तो अपन करते हैं।
2: तो वंदना जी, आखिर में आप हमारी सखियों को क्या संदेश देना चाहती हैं?
3: मैं अपनी सखियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर किसी को सिलाई में रुचि है तो वो अपनी सिलाई में और ज्यादा मेहनत करें और अपनी आय को बढ़ाएं, उससे उनका घर भी अच्छा चलेगा और घर में किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होगी।
2: बिल्कुल सही बात है कि छोटी छोटी चीजों से भी हम अपना घर चला सकती हैं सखियों। तो देख सकती हैं कि वंदना जी ने कैसे अपना सिलाई का कार्य शुरू किया और अपनी लगन और मेहनत से अपने स्वयं के पैरों पर खड़ी हुई। यदि आप भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं तो जरूर शुरुआत करें और सफलता हासिल करें। तो वंदना जी, आप हमसे जुड़ी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी।

0: उड़ान खुशियों की,
1: उड़ान सपनों की,
0: उड़ान हौसलों की,
1: मेरी उड़ान।
2: सखियो, अभी हम सुन रहे थे सिलाई क्लास संचालिका वंदना मालाकार जी को, और अब सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

सो क्यों अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रूपलावण्य की। तो सक्यों मानसून में हवा में नमी बढ़ने के कारण त्वचा ज़्यादा तेलीय, चिपचिपी और बेजान नज़र आ सकती है। ऐसे में त्वचा की सही देखभाल ज़रूरी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इस बारे में हम आज बात करेंगे कि मानसून में चिपचिपी त्वचा से कैसे राहत पाएं और कैसे चेहरे का ग्लो है वो बरकरार रखें। तो सबसे पहले तो सखियो चेहरा साफ रखें, दिन में 2 बार माइल्ड फेस वॉश से चेहरा धोएं। इससे अतिरिक्त ऑयल, पसीना और धूल साफ होती है। हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं, तेली त्वचा होने पर भी मॉइस्चराइजर जरूरी है। ऑयल फ्री या जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर बेहतर विकल्प हो सकता है। बादल होने के बावजूद भी सखियो सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि यूवी किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए बाहर निकलने से पहले SPF 30+ सनस्क्रीन जरूर लगाएं। चेहरा बार बार ना छुएं, हाथों की गंदगी और बैक्टीरिया पिंपल्स और त्वचा संबंधित समस्याएं बढ़ा सकते हैं। इस दौरान भारी मेकअप से बचें, हल्के नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, अच्छी डाइट और हाइड्रेशन पर ध्यान दें। इसके लिए आप पर्याप्त तो पानी पिएं, फल सब्जियों का आहार अपने डाइट में शामिल करें। तो बस सखियो इन छोटे से टिप्स को आजमाइए और मानसून के मौसम में भी अपनी चमक बरकरार रखिए। और अब

सब्जियां और मसाले मिलाएं, तवे पर हल्का तेल लगाकर चीले की तरह फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंकें और हरी चटनी के साथ इसे परोसें। तो देखिए कितना स्वादिष्ट और हेल्दी नाश्ता तैयार है। और अब सुन लेते हैं ये मधुर गीत।

0: और अब काम की कुछ बातों में हम बात कर लेते हैं कि बारिश में हमें क्या क्या सावधानियां, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सखियो, ये मौसम जितना सुहावना है उतनी कई परेशानियां भी साथ में होती है। तो सबसे पहले बात तो हमें क्या करना है कि बारिश में दूषित पानी से बीमारियां तेजी से फैलती हैं, इसलिए पानी को हमेशा उबाल कर पिएं। दूसरी बात, खान पान का ध्यान रखें, ताजा और घर का भोजन ही करें, बाहर के भोजन को अवॉइड करें इस दौरान। तीसरी बात, इस मौसम में मच्छर जनित बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, इन सब का खतरा बढ़ जाता है, तो घर के आसपास पानी।
1: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र के योगदान से अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: अंतराल का समय पूरा हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र के योगदान से लोक संगीत कार्यक्रम में आज सुनते हैं बद्रीलाल मालवी।

बद्रीलाल मालवीय के गाए मालवी लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। लोक संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुति आकाशवाणी के इंदौर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 1:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। आकाशवाणी के इंदौर केंद्र के योगदान से आज इस कार्यक्रम

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप नंदिनी शरण के गाए भजन सुन रहे थे। प्रस्तुति आकाशवाणी के इंदौर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से एक महत्वपूर्ण सूचना। पुलिस आयुक्त नगरी
1: आरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

बुधवार की शाम आपकी पसंदीदा फिल्मों के नाम। जी हाँ, युववाणी कार्यक्रम में इस बुधवार एक ही फिल्म से में हम लेकर आए हैं आपके लिए भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित फिल्म रक्षाबंधन।

0: तो इस बुधवार सुनना मत भूलिएगा ठीक शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: बुधवार की शाम आपकी पसंदीदा फिल्मों के नाम।
1: बंध के रक्षा बंधन से।
0: जी हाँ, युववाणी कार्यक्रम में इस बुधवार एक ही फिल्म से में हम लेकर आए हैं आपके लिए भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित फिल्म रक्षाबंधन।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये है 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का गीत, जिसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत आर डी बर्मन का है।

फिल्म संगीत कार्यक्रम की अगली पेशकश हमने ली है सोल्जर फिल्म से। अलका याग्निक की आवाज़ है, गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और इसे संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

0: अनु मलिक के संगीत निर्देशन में अभी आप समीर का लिखा गीत सुन रहे थे, अलका याग्निक की आवाज में सोल्जर फिल्म से। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। यह भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के सबसे सफल स्तंभों में से एक बनकर उभरा है। यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2016-17 में यूपीआई के माध्यम से केवल 1,78,00,000 लेन देन हुए थे, जो 2025-26 में बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गए। इसी अवधि में लेन देन का मूल्य भी 7,000 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 314,00,000 करोड़ रुपए हो गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित कृषि नवाचार संवाद में युवाओं, किसानों और कृषि स्टार्टअप से जुड़े लोगों से संवाद किया। उन्होंने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने युवाओं द्वारा किए जा रहे नए कृषि प्रयोगों की जानकारी ली और उन्हें प्रोत्साहित किया।
1: 8 से 9 महीने लगते हैं और
2: 8 से 9 महीने मोती बन जाता है।
1: आजकल डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड आ रहे हैं, वैसे ही इसको भी पर्टिकुलर टाइम
2: में कितनी जगह लगती है
1: सर? लोग अपनी 200 लीटर और 1000 की जो टंकी होती है वो 3 टंकियों में भी मोती की खेती कर ले रहे हैं सर। लोग छत पे कर ले रहे हैं।
2: छत पे हो जाती तो मोती सस्ता मिलता होगा
1: सर? वो दो तरीके के होते हैं, जो समुद्र से आ रहे हैं वो ऑब्वियसली महंगे होते हैं, बट ये कैरेट पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 6 कैरेट का है तो ये 200 रुपए के हिसाब से।
0: वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में फार्मर आईडी बनाने का अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। किसानों को अब व्हाट्सएप के माध्यम से उर्वरक की बुकिंग की सुविधा भी मिल सकेगी। बैठक में कुल 10,630 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा सिवनी बालाघाट स्टेट हाईवे को 4 लेन करने का फैसला लिया गया है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने भोपाल में प्रेस वार्ता में कहा कि खेलो इंडिया योजना से खेल प्रतिभाओं को नई दिशा मिलेगी। योजना के लिए 36,441 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मध्य प्रदेश के 52 खेलो इंडिया सेंटर मजबूत किए जाएंगे और स्कूल स्तर से प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा।
3: खेल का बजट लगभग 8 गुना बढ़ा है। खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाने के लिए कोचिंग की उपलब्धता हो, खेलों के में खिलाड़ियों को जोड़ने के लिए नीचे स्तर से टैलेंट सर्च करने की बात, स्कूल स्तर पर टैलेंट सर्च किया जाए जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित हो कि खेल मैदान का और उन्नयन हो सके, खेलों का और खिलाड़ियों का उन्नयन हो सके।
0: सीहोर में आज 11 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा निकाली गई। जीवन नदी के तट से शुरू हुई इस यात्रा में प्रदेश सहित कई राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बारिश के बावजूद कांवड़ी हर हर महादेव के जयकारों के साथ कुबेरेश्वर धाम पहुंचे। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी कांवड़ में जल भरकर यात्रा में हिस्सा लिया। प्रदेश में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, बैतूल और राजगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 2.5 इंच से ज्यादा बारिश हो सकती है। वहीं 20 अन्य जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में वित्तीय वर्ष 2026-27 में आत्मा पद योजना के तहत सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार के लिए किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नीमच जिला पंचायत अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तत्वावधान में 4 दिवसीय जिला स्तरीय राखी मेले का शुभारंभ हुआ। नर्मदापुरम में समय सीमा पत्रों की बैठक के दौरान कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों पर नाराजगी जताई। जबलपुर में कल सड़क हादसे में 12 साल के बालक की गोहलपुर थाना क्षेत्र में मृत्यु हो गई। झाबुआ में दुर्घटना मृत्यु के 17 प्रकरणों में 68,00,000 रुपए, सामान्य मृत्यु में 3,76,00,000 रुपए तथा आंशिक स्थायी अपंगता में 1,00,000 रुपए की सहायता दी गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। दोपहर समाचार के लिए कृपया कुछ वक्त का इंतजार।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ यूपीआई को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमरीका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। और कोलंबो में भारत के साथ अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 7 विकेट पर 173 रन बनाए। श्रीलंका 330 रन से पीछे है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई की शुरुआत आज ही के दिन 2016 में हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
1: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल संवाददाताओं को बताया कि करीब 2,30,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र मानते हुए नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाकी आवेदनों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी और संबंधित जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए लोगों से CAA के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने गुजरात में साइबर आतंकवाद से जुड़े मामले में कल 5 राज्यों में छापेमारी की। ये तलाशी महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, बिहार और दिल्ली में की गई। ये मामला पिछले वर्ष गुजरात में दर्ज किया गया था। आरोपियों ने कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केंद्र सरकार की 54 वेबसाइटों पर बड़ी संख्या में फर्जी अनुरोध भेजकर उसे बाधित करने वाले साइबर हमले किए। इन हमलों में महत्वपूर्ण कंप्यूटर संसाधनों और सूचना बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉ.

0: पक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भारत में दीर्घकालिक निवेश बढ़ाने और भारत जापान आर्थिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना है।
1: तकनीक का हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे देश की कंपनियों को ज्यादा भागीदारी का मौका मिलेगा। इससे वे जरूरी योग्यता प्रमाण पत्र और सरकारी नियमों का पालन करते हुए देश में ही इस तकनीक से रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरणों का उत्पादन कर सकेंगे। इससे मिसाइल प्रणाली के विकास के बाद उसे बड़े स्तर पर औद्योगिक उत्पादन में लाना आसान होगा। यह भारतीय उद्योग की क्षमता का उपयोग करके उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण को बढ़ावा देने के DRDO के प्रयासों का दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा उपकरण तैयार करने की क्षमता को बढ़ाना, रक्षा उद्योग को मजबूत करना और भारतीय MSME कंपनियों तथा अन्य तकनीकी भागीदारों को इस उत्पादन श्रृंखला में शामिल करना है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब केवल लोगों को जोड़ना नहीं बल्कि भरोसेमंद, सुरक्षित और मजबूत नेटवर्क तैयार करना भी है। नई दिल्ली में आज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C.DOT के 43वें स्थापना दिवस पर श्री सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र में C.DOT की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
2: It will be defined by ensuring that connectivity and the networks that we evolve.
3: यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे द्वारा विकसित की जाने वाली कनेक्टिविटी और नेटवर्क विश्वसनीय, मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षित हों। आज भारत अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही C.DOT प्रयोगशाला से बाजार तक, अनुसंधान से विकास तक और फिर अपने विकसित उत्पादों के वैश्विक विपणन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।
0: नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में कार्गो परिचालन में लगातार वृद्धि हुई है और इसकी मात्रा करीब 40% बढ़ी है।
4: Like to congratulate FedEx and Delhi GMR Airport.
5: मैं FedEx और दिल्ली GMR Airport को दिल्ली हवाई अड्डे पर एक समर्पित एयर कार्गो सुविधा विकसित करने के लिए साझेदारी करने पर बधाई देना चाहता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में कार्गो परिचालन में लगभग 40% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसलिए इसमें काफी संभावनाएं हैं और हमने सभी नेटवर्क में भी अच्छा बदलाव देखा है। इसी तरह विमानन क्षेत्र में भी हम देश भर में वैश्विक मानकों के अनुरूप एयर कार्गो सुविधाएं विकसित करना चाहते हैं।
4: We want to create global एयर कार्गो फैसिलिटीज अक्रॉस द कंट्री।
0: एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी घटना पर श्री नायडू ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मामले की छानबीन कर रहा है और इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव संजीव कुमार ने कहा है कि भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया, जो 2013-14 में 43,000 करोड़ रुपए था। नई दिल्ली में राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि देश में रक्षा विनिर्माण का तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है।

0: अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को घोषित सप्तधारा को विकसित भारत बनाने का रोडमैप बताया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने कहा कि सप्तधारा में विनिर्माण शक्ति, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था तथा सॉफ्ट पावर शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने H-1B वीजा की तय सीमा के अंतर्गत सभी आवेदनों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त $1,03,000 का नया शुल्क प्रस्तावित किया है। इसमें उच्च डिग्री धारकों के आवेदन भी शामिल हैं। विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रस्तावित शुल्क आवेदन दाखिल करते समय लिया जाएगा। विभाग के अनुसार H-1B वीजा की निर्धारित सीमा के तहत आने वाले अनुमानित 85,000 आवेदनों के आधार पर इस शुल्क से प्रतिवर्ष लगभग 8,80,00,000,000 अमरीकी डॉलर का राजस्व प्राप्त होगा। मौसम विभाग ने झारखंड में 27 अगस्त तक 10 जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
1: IMD रांची के अनुसार पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से झारखंड में मध्यम से भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी करते हुए रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लातेहार, चतरा और गिरिडीह समेत 10 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों को मौसम की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटे में राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई, जबकि पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी में सबसे अधिक 97 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी, जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। क्रिकेट में कोलंबो में भारत के साथ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 177 रन बना लिए थे। श्रीलंका भारत से 326 रन पीछे है। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ UPI को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमेरिका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं बसेरा फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है गुलजार ने और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने। इस गीत को सुनना चाहा है सिक्सटर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक।

मल्होत्रा, प्रतीक, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शिवचंद्र बजाज, मिट्टा बजाज और साहिल ने। साथ ही इस गीत को पसंद करने वाले हमारे ये श्रोता है गोला बाजार बक्सर से, श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, और कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। इसे हमने लिया है पूर्णिमा फिल्म से। गीत लिखा है गुलजार ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और इस गीत को पसंद किया है पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजूरिया, गीता रानी जाजूरिया, गगनदीप बेबी आरजू जाजूरिया। साथ ही साथ ये पत्र है बेरड़ी से हुकुम करम कर, सुनीता हार्दिक प्राची और तनु करम कर का, और छत्तीसगढ़ दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरणोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। और इसी गीत को पसंद करने वाले हमारे ये श्रोता है बीड शहर महाराष्ट्र से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल और संतोष पगारिया।

अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, राही श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश बदलापुर मुंबई से सिद्धांत प्रणीता अर्जुन गवाड़कर टुक टुक, और बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाड़कर, सुमित और कुमारी ध्वनि गवाड़कर परी। इसी गीत को पसंद किया है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश,

घंटा घर चौक खंडवा से ये पत्र हमें मिला है संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया का। और इसी गीत की फरमाइश हमें मिली है सरोज चौक अमरावती से। कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा, हृदिया, सालिया, शोएब खान, असमा, सायमा खान, मुस्तावा खान, अफिया खान, राउफ भाई, शहीद भाई और गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं विश्वास फिल्म का गीत मुकेश की आवाज़ में। गुलशन बावरा ने इस गीत को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी ने इसकी धुन बनाई है।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। और आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं मिलन फिल्म का गीत। हमारे इन सभी श्रोताओं के आग्रह पर दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरुचरण गरोवर और रमेश मिगलानी की और बक्सर बिहार से ये खत हमें मिला है शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी का। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। साथ ही साथ सारिमपुर बक्सर के ये हमारे श्रोता है राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। और जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। और ये एक और खत इसी फिल्म के गीत की फरमाइश है बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सव्वासेरी का। तो सुनते हैं मिलन फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। इसे अपने संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: पवन करे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ,

आई मिलन की रात। अब सुनवाते हैं इस फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने, और इस गीत को सुनना चाहा है पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी, मोहम्मद रफ़ी और बबलू मंसूरी, छाबड़ा राजस्थान से। इस गीत की हमें फरमाइश मिली है और ये हमारे श्रोता है आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो, चालीसगांव जिला जलगांव महाराष्ट्र से। पांडुरंग सूर्यवंशी, रेखा सूर्यवंशी, आरती नीरज ठाकुर, नव्या ठाकुर, तुषार गोविंद ठाकुर, दियान नीरज ठाकुर, मनकड़ताई ठाकुर, मनीषा सूर्यवंशी और आरोही सूर्यवंशी। और ये पत्र हमें मिला है सिंहपुर बड़ा से, राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा का। हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर ये गीत आपके रेडियो सेट पर।

0: अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में अभी आपने आई मिलन की रात फिल्म का ये गीत सुना। इसी के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। यह भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के सबसे सफल स्तंभों में से एक बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित कृषि नवाचार संवाद में युवाओं, किसानों और कृषि स्टार्टअप से जुड़े लोगों से संवाद किया। उन्होंने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि निजी कंपनियों की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और आयकर रिटर्न जैसे संवेदनशील आंकड़ों तक पहुंच चिंताजनक है। न्यायालय ने कहा है कि केंद्र को ऐसे सुरक्षा उपाय बनाने पर विचार करना चाहिए जिससे ऐसी जानकारी का दुरुपयोग ना हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में फार्मर आईडी बनाने का अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। किसानों को व्हाट्सएप के माध्यम से उर्वरक की बुकिंग की सुविधा भी मिल सकेगी। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने भोपाल में प्रेस वार्ता में कहा कि खेलो इंडिया योजना से खेल प्रतिभाओं को नई दिशा मिलेगी। योजना के लिए 36,441 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और प्रदेश में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, बैतूल और राजगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। मीडियम वे पर सभा समाप्त करने से पूर्व लीजिए सुनिए हमारे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। मीडियम वे पर सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी 5 बजे से। 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की होगी। सांध्यकालीन सभा के अंतर्गत फिल्म संगीत कार्यक्रम होगा 5:33 पर और रात 8:15 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम 6:30 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। शाम 6 बजे आपको सुनवाया जाएगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। सात बजकर 30 मिनट से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। रात 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में।

उर्दू कार्यक्रम कहकशा आप सुनिएगा रात 9:30 पर, रात 10 बजे फिल्म संगीत और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी होगा रात 10:30 पर, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे पंडित आसकरण शर्मा का राग यमन में ख्याल गायन।

ये थी जानकारी हमारे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की, जिसे आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन और वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। दोपहर के 3:25 हुए हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यही समाप्त करते हैं। शाम 5 बजे इन्हीं मीटर्स पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। इस दरमियान DTH के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। हम सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। सभा के आरंभ में लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युव वाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, शाम हो चुकी है और दिन भर की भाग दौड़ अब धीरे धीरे थम रही है और इसी सुकून भरे वक्त में आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी के युवा कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूँ श्रद्धा।
1: और मैं हूँ तनिष्का। उम्मीद है दोस्तों कि आपका दिन शानदार रहा होगा, और अगर नहीं भी रहा तो कोई बात नहीं, अगले कुछ मिनट हमारे साथ बिताइए क्योंकि बातें होंगी, मुस्कुराहट होगी और नई जानकारियां भी होंगी और साथ ही ढेर सारा उत्साह भी होने वाला है।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ सवालों से। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, ऐसा कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर बाकी ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमता है?
1: और आज का दूसरा सवाल है कि ऐसा कौन सा देश है जहां सूरज कई महीनों तक अस्त नहीं होता?
0: तो दोस्तों, इन दोनों ही सवालों के जवाब अभी हम आपको नहीं बताएंगे। आप अपने जवाब सोचकर रखिए और कार्यक्रम के अंत में देखिए कि आपके कितने जवाब सही निकले।
1: और सवालों से याद आया, जिंदगी भी तो कुछ ऐसे ही सवाल हमारे सामने रखती रहती है जिनके जवाब हमें चलते चलते मिलते हैं, सीखते सीखते मिलते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने तनिष्का। जिंदगी में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर चलने के लिए ना हर बार मंजिल दिखाई देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बस इतना भरोसा काफी होता है कि रास्ता चाहे जितना भी मुश्किल हो, हम चलते रहेंगे।
1: बिल्कुल। और इसी भरोसे से बनती है वो कहानियाँ जो सिर्फ एक इंसान की नहीं रहती बल्कि लाखों लोगों को अपने सपनों के लिए थोड़ा और हिम्मत से खड़े होने की वजह देती है।
0: और दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी है विनेश फोगाट की। अखाड़े की मिट्टी से निकलकर मेहनत और हौसले के दम पर दुनिया के बड़े स्पोर्टिंग स्टेजेस तक पहुंचने वाली एक चैंपियन की।
1: और आज उसी जज्बे को सेलिब्रेट करने का दिन है क्योंकि आज बर्थडे है विनेश फोगाट का।
0: 25 अगस्त 1994 को जन्मी विनेश ने कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार 3 गोल्ड मेडल्स जीते हैं दोस्तों, 2014, 2018 और 2022 में। और 2018 एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी।
1: लेकिन दोस्तों, विनेश की कहानी सिर्फ उनकी अपनी मेहनत की नहीं है, इनके पीछे है एक पूरा रेसलिंग परिवार, यानी कि फोगाट फैमिली।
0: एक ऐसा परिवार जहां 6 बेटियां रेसलिंग से जुड़ी है, गीता, बबीता, ऋतु, संगीता और विनेश और उनकी बहन प्रियंका। इसी परिवार से गीता फोगाट ने 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए विमेंस रेसलिंग का पहला कॉमनवेल्थ गोल्ड जीता था।
1: और वहीं बबीता ने भी कॉमनवेल्थ गोल्ड अपने नाम किया और विनेश ने तो लगातार 3 कॉमनवेल्थ गोल्ड के साथ इस रेसलिंग लेगेसी को 4 चांद तक पहुंचा दिया।
0: तो सोचिए, एक परिवार, एक अखाड़ा और इतनी सारी कहानियां। शायद इस परिवार की सबसे बड़ी अचीवमेंट सिर्फ मेडल्स नहीं है बल्कि वो सोच है जिसने अखाड़े को बेटियों के लिए भी उतना ही अपना बनाया।
1: दोस्तों, फोगाट फैमिली वही परिवार है जिसे हम मशहूर फिल्म दंगल के जरिए जानते हैं। महावीर सिंह फोगाट और उनकी बेटियां गीता और बबीता की कहानी तो आपने पर्दे पर देखी ही है, लेकिन इसी परिवार की रेसलिंग लेगेसी को आगे बढ़ाने वाली एक और बड़ी चैंपियन है विनेश फोगाट, जिनका आज हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: और आज विनेश फोगाट के बर्थडे पर हम सैल्यूट करते हैं सिर्फ एक चैंपियन को नहीं बल्कि उस जज्बे को जो मुश्किलों से डरता नहीं, गिरने के बाद रुकता नहीं और हर मुश्किल को अपनी कहानी का हिस्सा बनाकर आगे बढ़ता रहता है।
1: तो चलिए दोस्तों, इसी जज्बे और उसी जोश के साथ सुनते हैं फिल्म दंगल का वो गीत जिसमें मुकाबले की एनर्जी भी है और जीतने का जुनून भी।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: कहते हैं आंखें सिर्फ हमें दुनिया दिखाती नहीं है, आंखों में किसी की पूरी दुनिया बसी होती है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर किसी इंसान की ज़िंदगी का सफ़र पूरा होने के बाद भी उनकी आंखों की रोशनी किसी और की ज़िंदगी में उजाला भर सके, तो इससे खूबसूरत विदाई और क्या होगी।
3: बिल्कुल, और इसी सोच को समाज तक पहुंचाने के लिए हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है।
2: दोस्तों, आइए जानते हैं नेत्रदान का असली मतलब क्या होता है। दरअसल नेत्रदान में पूरी आंख नहीं, बल्कि मुख्य रूप से कॉर्निया का इस्तेमाल किया जाता है। कॉर्निया आंख के सामने की पारदर्शी परत होती है, जो रोशनी को आंख के अंदर पहुंचाने में मदद करती है। बीमारी या चोट से अगर ये धुंधला हो जाए तो इससे दृष्टि प्रभावित हो सकती है। ऐसे मामलों में उपयुक्त डोनर कॉर्निया से कॉर्निया ट्रांसप्लांट करके दृष्टि को बेहतर या अच्छा करने में मदद करता है।
3: और यहाँ एक जरूरी बात, नेत्रदान मृत्यु के बाद किया जाता है, इसीलिए अगर परिवार ने नेत्रदान का निर्णय लिया है तो समय पर आई बैंक को सूचना देना बहुत ज्यादा जरूरी है,
2: क्योंकि समय की भी इसमें एक बड़ी भूमिका है। नोटों की जानकारी के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु के लगभग 6 से 8 घंटे के भीतर कॉर्निया रिट्रीव करना बेहद जरूरी होता है।
3: यानी अगर परिवार में किसी व्यक्ति ने
2: नेत्रदान की इच्छा जताई है, तो परिवार के बाकी सदस्यों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर वे तुरंत आई बैंक से संपर्क कर सकें। और अब कुछ ऐसे सवालों पर नज़र डाल लेते हैं जो अक्सर लोगों के मन में होती है। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर उनकी उम्र ज़्यादा है तो क्या वो नेत्रदान कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि उम्र ज़्यादा होने की वजह से नेत्रदान असंभव नहीं होता है। नेत्रदान के लिए कोई निश्चित ऊपरी आयु सीमा है ही नहीं। हर डोनर टिश्यू की सूटेबिलिटी मेडिकल असेसमेंट के आधार पर ही तय की जाती है।
3: और दोस्तों, दूसरा अगर कोई

0: चश्मा पहनता है तो भी नेत्रदान संभव हो सकता है। चश्मा लगाना अपने आप में नेत्रदान की मनाही नहीं है।
1: यानी हमें खुद से तय नहीं करना चाहिए कि मेरी आंखें किसी के काम आ सकती है या नहीं। हमें सही जानकारी लेना चाहिए और स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। और इस पखवाड़े का उद्देश्य भी यही है कि नेत्रदान को लेकर हमें जागरूकता बढ़ानी है और सही जानकारी देनी है, लोगों को इस विषय पर सोचने के लिए प्रेरित करना है। और इसीलिए 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चल रहे इस राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े में हमें एक छोटा सा संकल्प लेना चाहिए कि अगर हम नेत्रदान कर सकते हैं या इसके बारे में अपने परिवारजनों को प्रेरित कर सकते हैं तो हम ये ज़रूर करें। तो इसी संदेश के साथ नेत्रदान के बारे में जानिए, समझिए और सही जानकारी आगे पहुँचाइए। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम में एक प्यारा सा गीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: दोस्तों, आज है मंगलवार और आज हम फिर निकल पड़े हैं हमारे मध्य प्रदेश के एक ऐसे शहर की ओर,
3: जहां अगर आप इतिहास ढूंढने निकले तो आपको सिर्फ पुराने किले और मंदिर नहीं मिलेंगे,
2: बल्कि मिलेंगे जंगलों के बीच बसे गांव, पहाड़ियों के बीच बहती नदियां, जनजातीय संस्कृति की सादगी
3: और एक ऐसा इतिहास जिसकी कहानी महाभारत की परंपराओं तक जाती है।
2: दोस्तों, आज का हमारा शहर है शहडोल। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से में बसा ये शहर आज एक जिला मुख्यालय है, लेकिन इसकी पहचान सिर्फ एक प्रशासनिक नक्शे पर दर्ज नाम की नहीं है,
3: बल्कि ये जगह इतिहास, प्रकृति, संस्कृति और खनिज संपदा चारों का एक अनोखा संगम है। और शहडोल का इतिहास सुनते ही सबसे पहले याद आती है महाभारत की।
2: दोस्तों, स्थानीय ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार शहडोल के सुहागपुर क्षेत्र को महाभारत के राजा विराट से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इस क्षेत्र में सही समय बताया था।
3: और शहडोल नाम को लेकर भी एक बेहद रोचक लोक कथा सुनने को मिलती है। कहा जाता है शाह यानी सौ और डोल यानी तालाब, अर्थात 100 तालाबों का शहर।
2: मतलब सोचिए, एक ऐसा शहर जिसकी कल्पना ही पानी से जुड़ी हो, जहां हर तालाब किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो सकता है और जहां आज भी चलते हुए आपको महसूस हो कि इस मिट्टी में कितनी सदियां देखी है।
3: बिल्कुल। हालांकि शहडोल नाम की एक दूसरी ऐतिहासिक व्याख्या भी मिलती है। स्थानीय इतिहास के अनुसार इसका नाम शहडोलवा अहीर नामक व्यक्ति से जुड़ा माना जाता है, जिन्होंने इस क्षेत्र में बसावट की थी। यानी शहडोल की पहचान में इतिहास भी है और लोक स्मृति भी,
2: और यही तो किसी जगह को खास बनाता है। जब इतिहास की एक ही कहानी नहीं होती, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही कई कहानियां मिलकर उस जगह की पहचान बनाती है।
3: इतिहास की यात्रा आगे बढ़ती है तो शहडोल पर अलग अलग राजवंशों का प्रभाव दिखाई देता है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में जिले का बड़ा हिस्सा कलचुरी साम्राज्य का हिस्सा था। इसके बाद बघेलों का प्रभाव बढ़ा और आगे चलकर मराठों तथा ब्रिटिश शासन का दौर भी आया।
2: 1857 के विद्रोह के बाद सुहागपुर और अमरकंटक क्षेत्र रीवा के शासक को सौंपे गए और 1947 तक ये क्षेत्र बघेल शासन के अधीन

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज के क्रम हमारे शहर में शहडोल की। तो इसका इतिहास अगर आपको अतीत में ले जाता है तो यहाँ की प्रकृति आपको बिल्कुल एक अलग ही दुनिया में ले जाती है।
3: बिल्कुल सही कहा तुमने। शहडोल मुख्यतः एक पहाड़ी जिला है। यहाँ सतपुड़ा की मैकल पर्वतमाला, कैमोर की पहाड़ियाँ और पूर्वी पठारी क्षेत्र मिलकर एक बेहद ही खूबसूरत भौगोलिक दृश्य बनाते हैं।
2: और इन पहाड़ियों के बीच, जंगलों के बीच बहती हैं नदियाँ और उनकी सहायक धाराएं। इनमें सोन नदी और उनकी घाटी इस क्षेत्र की भौगोलिक पहचान का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है।
3: और यही वजह है कि शहडोल का लैंडस्केप किसी पोस्टकार्ड जैसा लगता है। कहीं घने साल के जंगल, कहीं पहाड़, कहीं खुली घाटियाँ और कहीं दूर तक फैली हरियाली।
2: लेकिन शहडोल की प्रकृति सिर्फ खूबसूरती नहीं देती, उसकी धरती अपने भीतर अपार खनिज संपदा भी छिपाए हुए है।
3: शहडोल में कोयला और अन्य खनिज संसाधनों की महत्वपूर्ण उपलब्धता है और यहाँ के विशाल कोयला भंडार जिले की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2: यानी जिस धरती के ऊपर हमें जंगल दिखाई देता है, उसी धरती के नीचे

0: एक करोड़ों साल पुरानी जियोलॉजिकल हिस्ट्री भी छिपी हुई है।
1: और दोस्तों, शहडोल की पहचान सिर्फ कोयले तक सीमित नहीं है। ये क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और ऊर्जा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है।
0: कितनी अद्भुत बात है ना, एक तरफ जंगलों की हरियाली, दूसरी तरफ धरती के भीतर ऊर्जा के स्रोत, और इनके बीच सदियों से अपना जीवन जीते लोग।
1: और अब बात उस शहडोल की, जिसे सिर्फ उसके पहाड़ों और खनिजों से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि शहडोल की असली खूबसूरती उसके लोगों में भी है।
0: यहाँ जनजातियाँ समुदायों की भी एक बहुत ज़रूरी उपस्थिति है दोस्तों। परंपरागत रूप से इनका जीवन जंगल, खेती और स्थानीय संसाधनों से गहराई से जुड़ा हुआ है।
1: और उनके जीवन शैली में ना एक खास सादगी दिखाई देती है, प्रकृति और स्थानीय संसाधनों से जुड़ी जीवन पद्धति और अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों और संस्कृति को साथ लेकर चलने वाली एक अलग पहचान।
0: यानी जो चीजें हमारे लिए जंगल में सामान्य है, वही किसी के लिए परंपरा, पहचान और जीवन का हिस्सा है।
1: महुआ जैसे वन उत्पाद भी यहाँ के ग्रामीण और जनजातीय जीवन में लंबे समय से महत्वपूर्ण रहे हैं।
0: हालांकि दोस्तों, आर्थिक चुनौतियां भी कम नहीं है। पारंपरिक कृषि पद्धतियां होने के कारण और सीमित कृषि आय के कारण कई परिवारों को इसी पर निर्भर रहना पड़ता है और वन आधारित आय पर अपना आय निकालनी पड़ती है।
1: बिल्कुल, और इसीलिए शहडोल को देखना सिर्फ उसकी सुंदरता को देखना नहीं है, बल्कि उस सुंदरता के पीछे रहने वाले लोगों को जीवन उनके जीवन को समझना भी है।
0: क्योंकि किसी शहर की असली पहचान उसकी इमारतों से नहीं,

0: बुधवार की शाम आपकी पसंदीदा फिल्मों के नाम।
1: बंध के रक्षा बंधन से।
0: जी हाँ, युववाणी कार्यक्रम में इस बुधवार एक ही फिल्म से में हम लेकर आए हैं आपके लिए भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित फिल्म रक्षा बंधन।

0: तो इस बुधवार सुनना मत भूलिएगा ठीक शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी।
1: तो दोस्तों हम बात कर रहे थे शहडोल की, तो अब देखते हैं कि अगर आप शहडोल जाएं तो आपको कहाँ कहाँ तो जाना ही चाहिए।
2: तो शुरुआत हो सकती है विराटेश्वर मंदिर से। सुहागपुर बाणगंगा में स्थित ये मंदिर कलचुरी काल की स्थापत्य कला का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। लगभग 10वीं-11वीं शताब्दी से जुड़ा ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। जिला प्रशासन के अनुसार इसे कलचुरी राजा महाराजा युवराज देव ने 1950 से 1050 ईस्वी के बीच बनवाया था
1: और इसकी ऊंचाई लगभग 70 फीट। सोचिए, आज से लगभग 1000 वर्ष पहले बनाई गई इतनी विशाल और कलात्मक संरचना आज भी वैसे ही खड़ी है। पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं रह जाता जब उस पर किसी सभ्यता का समय अंकित हो जाए,

0: और यही विराटेश्वर मंदिर की खूबसूरती है। और आपको यहाँ सिर्फ पूजा की जगह नहीं देगी, यह आपको इतिहास को सामने खड़ा देखने का अवसर देगी।
1: दोस्तों, साथ ही शहडोल में एक और महत्वपूर्ण आकर्षण केंद्र है, वो है मानसागर बांध। सोन नदी पर बना ये बहुउद्देशीय परियोजना सिंचाई के साथ जल विद्युत उत्पादन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी जल विद्युत क्षमता 435 मेगावाट बताई जाती है।
0: यानी शहडोल में पानी सिर्फ इतिहास की कहानियों में नहीं, आज के विकास का भी हिस्सा है।
1: बिल्कुल सही कहा। और अगर आपको आध्यात्मिक और शांत जगह पसंद है तो कंकाली मंदिर भी आपके सफर का हिस्सा हो सकता है। ये शहडोल के अंतरा गांव में स्थित है।
0: और फिर आती है लखबरिया की गुफाएं।
1: हाँ, मैंने सुना है इसका नाम तनिष्का।
0: अच्छा, पता है यहाँ की स्थानीय मान्यता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ आश्रय लिया था। आज ये गुफाएं शहडोल की इन जगहों में गिनी जाती है जिनके साथ इतिहास को लोक विश्वास दोनों जुड़े हुए होते हैं। जिला प्रशासन भी इसके बारे में बिलीव्ड यानी कि मान्यता होने की बात कहता है।
1: सच कहे तो शहडोल की खासियत शायद यही है, यहाँ आपको हर मोड़ पर कोई न कोई कहानी मिल ही जाती है। कहीं पांडवों की लोक कथा, कहीं कल्चरी, कहीं बघेल,
0: कहीं जनजातीय परंपरा, कहीं जंगल और कहीं धरती के भीतर छिपा खनिज संसार।
1: कभी कभी ना हम शहरों को सिर्फ इस बात से मापने लगते हैं कि वहाँ कितनी बड़ी इमारतें हैं, कितने बड़े मॉल्स हैं, कितनी तेज जिंदगी है, लेकिन शहर की अपनी एक धड़कन होती है।
0: और शहडोल की धड़कन शायद जंगलों की सरसराहट में सुनाई देती है, पहाड़ियों की खामोशी में, सोन नदी की धार में, मंदिरों की घंटियों में और उन लोगों की मुस्कान में जो अपनी मिट्टी और अपनी परंपराओं से आज भी जुड़े हुए हैं।
1: शहडोल हमें याद भी दिलाता है कि विकास सिर्फ ऊंची इमारतों का नाम नहीं होता। विकास तब पूरा होता है जब इतिहास सुरक्षित रहे, प्रकृति सुरक्षित रहे और उस प्रकृति के बीच रहने वाले लोगों की संस्कृति और सम्मान भी सुरक्षित रहे।
0: महाभारत की कथाओं से लेकर आधुनिक ऊर्जा परियोजनाओं तक, कल्चरी स्थापत्य से लेकर जनजातीय संस्कृति तक, शहडोल एक ऐसा शहर है जो अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ता, बल्कि अपने अतीत को साथ लेकर आगे बढ़ता है।
1: तो अगली बार जब मध्य प्रदेश के नक्शे पर आपकी नजर पड़े तो आपको उत्तर पूर्व की ओर एक नाम जरूर दिखाई देगा और वो है शहडोल।
0: तो सिर्फ आप उसका नाम मत पढ़िएगा, उस नाम के पीछे छिपी सदियों की कहानी को भी याद कीजिएगा।

0: बुधवार की शाम आपकी पसंदीदा फिल्मों के नाम।
1: बंध के रक्षा बंधन से।
0: जी हाँ, युववाणी कार्यक्रम में इस बुधवार एक ही फिल्म से में हम लेकर आए हैं आपके लिए भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित फिल्म रक्षा बंधन।

0: तो इस बुधवार सुनना मत भूलिएगा ठीक शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी।
1: तो चलिए दोस्तों, समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपके साथ साझा कर देते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर बाकी ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमता है, और उसका उत्तर है शुक्र।
2: और दूसरा प्रश्न था कि ऐसा कौन सा देश है जहां सूरज कई महीनों तक अस्त नहीं होता। तो दोस्तों, इसका उत्तर है नॉर्वे। तो इसी के साथ अनुमति दीजिए तनिष्का
1: और श्रद्धा को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। डीजे प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत, और अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना था फिल्म 1942 लव स्टोरी का गीत, और आइए अब आपको सुनवाते हैं गुरु फिल्म का गीत। स्वर हैं श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार के, बोल हैं गुलजार के, और संगीत है AR रहमान का।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अब अनारी फिल्म का गीत। स्वर हैं उदित नारायण और साधना सरगम के, बोल हैं समीर के और संगीत है आनंद मिलिंद का।

0: है छम छम
1: क्या मौसम।
2: इस गीत के साथ ही तुम्हारे कार्यक्रम अभी संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूँ विमलेश। उमंग कार्यक्रम में स्वागत है आप सबका।
3: जी नमस्कार, मैं हूँ अजीत। धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने।
2: लिखते हैं, कठिनाइयाँ रास्ता रोकने नहीं हौसलों को परखने आती हैं। जो हर चुनौती में अवसर खोज ले वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है।
3: तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अन्नपूर्णा वर्मा।
3: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर और लखनलाल देवांगन जी ने बहुत ही सुंदर भाव व्यक्त किया है और वो कहते हैं,
2: माता पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु हैं। उनका सम्मान, सेवा और आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने माता पिता, गुरुजनों और सभी शिक्षकों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करें।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, माता पिता और गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना हमारे जीवन का एक जरूरी कर्तव्य होना चाहिए। सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, पिछले सप्ताह उमंग कार्यक्रम में प्रेरक प्रसंगों का दौर चला
2: जी,
3: तो इस सप्ताह हमारी क्या योजना है?
2: अजीत जी, इस सप्ताह क्यों न चलें भारत के सुदूर कुछ अनूठे गांवों की ओर। मुझे लगता है कि ऐसे गांवों की जानकारी हमारे श्रोताओं को

0: भी होनी चाहिए।
1: जी विमलेश जी, बिल्कुल। दरअसल हमारा भारत है ही विविधताओं का देश। यहाँ हर राज्य, हर गांव और हर संस्कृति अपने भीतर कोई ना कोई अनोखी कहानी समेटे हुए है।
0: बिल्कुल
1: सचमुच आश्चर्य होता है जब हम अपने देश की अजब गजब बातों को जानते हैं।
0: जी।
1: तो श्रोताओ, क्या आप किसी ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जो दो देशों में है?
0: जी हाँ, एक ऐसा गांव है जो दो देशों में है। तो श्रोताओं, आज हम आपको भारत के एक ऐसे अद्भुत गांव की यात्रा पर ले चलेंगे जहां एक ही घर का बैठक कक्ष भारत में है और शयन कक्ष म्यांमार में। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है। इस अनोखे गांव का नाम है लोंगवा।
1: जी हाँ श्रोताओ, लंगवा गांव भारत के नागालैंड राज्य के मोन जिले में स्थित है। आपको बता दें कि ये गांव भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ
0: जी
1: है। यहाँ दोनों देशों की सीमा रेखा गांव के ठीक बीच से होकर गुजरती है। तो यही कारण है कि इस गांव के कई घरों के एक हिस्से भारत में है तो दूसरे हिस्से म्यांमार में।
0: जी
1: क्यों विमलेश जी, है ना अनूठी और बड़ी मजेदार बात?
0: जी बिल्कुल अजीत जी, सचमुच बात तो बड़ी मजेदार है। श्रोताओं को एक और रोचक बात बता दें कि लोंगवा की सबसे प्रसिद्ध पहचान है आंग।
1: विमलेश जी, लेकिन जरा ये भी तो बताइए कि आंग किसे कहते हैं?
0: अजीत जी, आंग का अर्थ होता है राजा, मुखिया या वंशानुगत प्रमुख। ये नागालैंड की कोयांक जनजाति की सर्वोच्च उपाधि है। पहले उसके पास सामाजिक, न्यायिक और राजनैतिक अधिकार भी होते थे, लेकिन आज भी उन्हें सांस्कृतिक और पारंपरिक सम्मान प्राप्त है।
1: जी हाँ, तो श्रोताओं आपको बता दें कि लोंगवा गांव के आंग यानी मुखिया का विशाल लकड़ी का घर दोनों देशों में फैला हुआ है। कहा जाता है कि यदि आंग अपने बैठक कक्ष में बैठे हों तो वे
0: जी
1: भारत में होते हैं,
0: बिल्कुल
1: और जब अपने शयन कक्ष में विश्राम करने जाते हैं तो म्यांमार में। श्रोताओ, दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं।
0: साथ ही साथ इस गांव के कई घर ऐसे हैं जो दोनों देशों में पड़ते हैं। भोजन भारत में करते हैं तो शयन म्यांमार में। और अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। लोंगवा में प्रमुख रूप से कोयांक नागा जनजाति निवास करती है। कोयांक समुदाय नागालैंड की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है। इनके रीति रिवाज, पहनावा, भाषा और जीवन शैली अत्यंत आकर्षक है।
1: तो श्रोताओ, यदि कभी आपने कोयांक पुरुषों की तस्वीरें देखी हो तो आपने उनके चेहरे और शरीर पर बने पारंपरिक टैटू अवश्य देखे होंगे। ये टैटू केवल सजावट के लिए नहीं थे, बल्कि ये टैटू साहस, सम्मान और सामाजिक पहचान के प्रतीक माने जाते थे।
0: जी
1: आज नई पीढ़ी आधुनिक जीवन शैली अपना रही है, फिर भी बुजुर्गों के चेहरे पर अंकित ये टैटू इतिहास की जीवित धरोहर है।
0: कोयांक जनजाति के लोग लकड़ी की उत्कृष्ट नक्काशी, रंग बिरंगे मनकों के आभूषण, पारंपरिक हथियारों और बांस से बनी वस्तुओं के निर्माण में भी निपुण हैं। उनके हस्तशिल्प में प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत मेल दिखाई देता है।
1: श्रोताओ, यदि इतिहास के पन्नों को आप पलटें तो पता चलेगा कि एक समय था जब कोयांक योद्धा हेड हंटिंग अर्थात युद्ध में शत्रु का सिर लाने की परंपरा के लिए प्रसिद्ध थे। उस समय इसे वीरता और विजय का प्रतीक माना जाता था।
0: लेकिन समय के साथ साथ समाज बदला, शिक्षा का प्रसार हुआ और अनेक सामाजिक परिवर्तनों के कारण ये प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो गई। आज कोयांक समाज शांति, शिक्षा और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।
1: तो बता दें प्रिय श्रोताओं को कि लोंगवा गांव का प्राकृतिक सौंदर्य भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है।
0: जी
1: चारों ओर हरी भरी पहाड़ियाँ, घने वन, स्वच्छ वातावरण और बादलों से घिरी घाटियाँ पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य विशेष रूप से बहुत ही मनमोहक होता है।
0: यहाँ के लोग आज भी प्रकृति के साथ गहरा संबंध बनाए रखते हैं। कृषि, पशुपालन और वनों से प्राप्त संसाधन उनकी आजीविका का महत्वपूर्ण आधार हैं। वे प्रकृति का सम्मान करते हैं और उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। तो श्रोताओं, यदि आप नागालैंड की यात्रा करें तो लोंगवा गांव अवश्य जाएं, क्योंकि ये केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक समरसता और सीमा पर बसे लोगों के जीवन को समझने का एक अनूठा अवसर है।
1: जी, तो श्रोताओं, लोंगवा गांव हमें ये संदेश देता है कि सीमाएं नक्शों पर तो खींची जा सकती हैं,
0: जी
1: लेकिन संस्कृति, मानवता और रिश्तों की कोई सीमा नहीं होती। विविधताओं में एकता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है।
0: यही कारण है कि हमारा देश अपनी अनगिनत भाषाओं, परंपराओं और संस्कृतियों के बावजूद एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विश्व में अपनी पहचान बनाए हुए है।
1: तो श्रोताओं, इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ हमारी आज की ये ज्ञान यात्रा यहीं समाप्त होती है। कल
0: जी
1: फिर से मिलेंगे भारत के किसी और अद्भुत स्थान की नई कहानी और जानकारी के साथ। तो अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है? प्रश्न

0: एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम
1: सरितपुर की कहानी।
2: हमारे खेतों से पानी भर गया, सारे फसल बर्बाद,
3: सारी फसल बह गई।
4: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी माँ की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता, वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई, और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
5: लो भाई पहुंच गए सरितपुर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
6: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
5: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। कितना साफ पानी है।
4: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए, और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे, और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
7: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
4: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए, और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को यह ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
3: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
4: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
2: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, दस्ते क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
8: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं
6: और पैसे कमाने हैं।
4: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते उफ, इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
5: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
9: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
4: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे, और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
10: हमारे पशु पक्षी हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा,
11: लगता है नदी प्रदूषित हो गई है।
2: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद,
11: सारी फसल बह गई।
10: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा, सारा सामान
11: जल्दी
10: से ऊपर ले जाना होगा।
11: चलो जल्दी ऊपर,
10: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो जल्दी चलो
11: चलो चलो,
10: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप वाप ना आ जाए।
11: ध्यान से संभल कर।
4: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
12: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी, बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
0: अभी आप सुन रहे थे।

0: कार्यक्रम सरितपुर की कहानी और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा।
1: इस कार्यक्रम में भारत की महान एथलीट और धाविका पीटी उषा के जीवन और खेलों की दुनिया में उनके अमूल्य योगदानों की चर्चा की गई है, जिनके कारण देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त हुआ है।

0: नमस्कार साथियों, आप सबका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: आज हम चर्चा करेंगे एक विलक्षण स्त्री की, जिसने सारी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। खेल जगत की वो एक सितारा हैं, जिसकी चमक से कोई भी अभिभूत हो जाता। वो हैं पीटी उषा। उनका पूरा नाम है पिलावुल्ला कंडी तेक्के परमबिल उषा।
0: कहते हैं कि जब वो दौड़ती थी तो लोग देखते ही रह जाते थे। उनके दौड़ने में बिजली की सी गति और चपलता थी।
1: जहां पुरुष धावकों में दुनिया मिल्खा सिंह को उड़न सिख के नाम से जानती है, तो वहीं महिला धावकों में पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। वो भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला धावकों में से एक हैं। इनके पिता का नाम ईपीएम पैतल एवं माता का नाम टीवी लक्ष्मी है। बचपन में पीटी उषा का स्वास्थ्य अक्सर बहुत खराब रहा करता था। माता पिता और परिवार के लिए ये एक निरंतर चिंता का विषय था।
0: धीरे धीरे उषा का स्वास्थ्य ठीक होता चला गया। वो नियमित रूप से स्कूल जाने लगीं और उनका खेलों की ओर, विशेषकर फर्राटा दौड़ की ओर रुझान बढ़ता चला गया।
1: स्कूल में जब दौड़ प्रतियोगिता होती तो वो पूरे जोशो खरोश के साथ उसमें भाग लेती और सफलता भी प्राप्त करती। चौथी कक्षा तक आते आते उनकी पहचान एक अच्छी धाविका के रूप में होने लगी।
0: उनके स्कूली दिनों में ही एक बार बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। उनकी शारीरिक शिक्षा की अध्यापिका ने उन्हें जिले की चैंपियन धाविका से मुकाबला करने को कहा। वो चैंपियन भी पीटी उषा के स्कूल में ही पढ़ती थी।
2: आपने मुझे बुलाया मैम?
3: आओ उषा, मैंने एक खास बात के लिए तुम्हें याद किया है।
2: जी कहिए मैम।
3: अगले महीने स्कूल का वार्षिक खेल उत्सव होना है। तो तुम्हारा अभ्यास कैसा चल रहा है भाई?
2: मैम अच्छा चल रहा है।
3: गुड।
2: स्कूल के बाद शाम को भी दौड़ने का अभ्यास करती हूँ मैं।
3: वेरी गुड। देखो अगले सप्ताह हम दौड़ का सामूहिक अभ्यास करने जा रहे हैं।
2: जी मैम।
3: तो तुम्हें एक काम करना है।
2: जी।
3: तुम्हें शोभना के साथ दौड़ना है।
2: शोभना के साथ? लेकिन मैम वो तो जिले की चैंपियन है।
3: बिल्कुल ठीक, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ दौड़ो। तुम्हें भी तो अपनी क्षमता का पूरा पूरा पता चलना चाहिए।
2: जी मैम, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी, मैं मेहनत करूंगी।
3: मुझे तुमसे यही उम्मीद थी उषा। ऑल द बेस्ट।
2: थैंक यू मैम।
0: जब मुकाबला हुआ तो सबके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उषा ने अपने जिले की चैंपियन धाविका को भी बड़ी आसानी से हरा दिया। उस समय वो सातवीं कक्षा में पढ़ती थी। इस घटना के बाद उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया।
1: बात सन 1976 की है। केरल सरकार ने कन्नूर में एक महिला खेल सेंटर की शुरुआत की। इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्देश्य था बालिकाओं को खेल प्रशिक्षण देना और जिला तथा राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए उन्हें तैयार करना।
0: महिला खेल प्रशिक्षण केंद्र के पहले सत्र में कुल 40 लड़

0: श्री ओ एम नंबियार जाने माने खेल प्रशिक्षक थे और पीटी उषा के जबरदस्त प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुए थे। उनकी अनुभवी आंखों ने बालिका पीटी उषा में भविष्य की महान एथलीट को देख लिया था। उन्होंने उषा को पुरस्कार वितरण समारोह के बाद मिलने के लिए बुलाया।
1: वेल डन उषा, आज तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा।
2: थैंक यू सर।
1: मुझे विश्वास है कि यदि तुम्हें अच्छा प्रशिक्षण मिल जाए तो तुम बहुत आगे जा सकती हो।
2: लेकिन सर, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, मैं ट्रेनिंग का खर्चा नहीं उठा पाऊंगी।
1: तुम उसकी चिंता ना करो, बस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, तुम्हें ट्रेनिंग मैं दूंगा।
2: आप? धन्यवाद सर, लेकिन
1: अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अगले महीने से हम ट्रेनिंग शुरू कर देंगे।
2: सर।
1: और हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें सरकार से छात्रवृत्ति भी मिल जाए।
2: ओह, थैंक यू सो मच सर।
3: इसके बाद से उन्होंने पीटी उषा को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। परिणाम बहुत सुखद रहा। पीटी उषा ने राज्य स्तर पर ढेर सारी जूनियर दौड़ प्रतियोगिताओं में मेडल जीते।
0: और अब समय था इतिहास रचने का। और फिर आया वो दिन जब उन्हें ओलंपिक में दौड़ना था। संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस का स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। लोग बेताबी से दौड़ शुरू होने का इंतजार कर रहे थे।
4: बिल्कुल बिल्कुल, तुम ठीक कहते हो। आज दौड़ में हमारे देश की पीटी उषा जो भाग ले रही है। हमारी पीटी उषा सबसे आगे निकल गई।
3: पीटी उषा बहुत तेज गति से दौड़ी, शुरुआत में पिछड़ गईं, लेकिन जबरदस्त तरीके से वापसी की और प्रतिद्वंद्वी धाविका क्रिस्टियाना कोजोकारू को पीछे भी छोड़ दिया। पीटी उषा का प्रदर्शन इतना शानदार था कि सारी भीड़ ने तालियों और शोर से पूरा स्टेडियम गूंजा दिया। लेकिन बाद में पता चला कि पीटी उषा को द्वितीय स्थान मिला है।
0: दोनों धाविकाएं लगभग एक साथ विजय रेखा पर पहुंची। पीटी उषा का पैर भी आगे था, लेकिन उनके कंधे पीछे थे, इसलिए वो मात्र एक सेकंड के 100वें हिस्से से स्वर्ण पदक से वंचित रह गई। यही वो समय था जब उन्हें पयोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया।
3: आप सोच रहे होंगे कि उन्हें दिए गए उड़न परी, गोल्डन गर्ल और क्वीन ऑफ द इंडियन ट्रैक्स जैसे सम्मान सूचक विशेषण तो समझ में आते हैं, लेकिन भला ये पयोली एक्सप्रेस क्या नाम हुआ? उन्हें पयोली एक्सप्रेस क्यों कहा गया?
0: इसके पीछे बड़ा दिलचस्प कारण है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीटी उषा का जन्म केरल के कोझिकोड जिले के पयोली गांव में हुआ था। पयोली गांव में जन्म लेने और दौड़ में एक्सप्रेस गाड़ी जैसी उनकी जबरदस्त क्षमता को देखते हुए उन्हें पयोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया।
3: उन दिनों कहा जाता था कि पीटी उषा का किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना ही पदक प्राप्त करने की गारंटी है। उन्होंने कुल मिलाकर 101 अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं।

0: में सबसे अधिक स्वर्ण पदक हैं।
1: सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने के कारण उन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से भी पुकारा जाता है।
0: महान धाविका पीटी उषा को अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से 1984 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान उल्लेखनीय हैं।
1: वो अपने गृह नगर में महिलाओं के लिए खेल प्रशिक्षण केंद्र भी चलाती हैं। राष्ट्र को उनके द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान को देखते हुए 2022 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने उन्हें भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है।
0: देश कृतज्ञ भाव से महान धाविका और प्रेरणा स्तंभ पीटी उषा को नमन करता है।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा। तो हमें अब आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता,
3: चेतना,
2: जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हमारे कलाकार हैं मोहम्मद रिजवान खान। आइए सुनते हैं इनके स्वर में ये गजल।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है सुगम संगीत और हम सुन रहे हैं मोहम्मद रिजवान खान की गजलें। तो आइए सुनते हैं अब ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रिजवान खान की गज़लें। अब सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत में आज आपको सुनवाते हैं मालवी लोकगीत। आज हमारी कलाकार हैं तृप्ति नागर और उनके साथी। तो आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है लोक संगीत और हम सुन रहे हैं तृप्ति नागर और उनके साथियों को। तो आइए सुनते हैं उन्हीं के सुर में ये मालवी लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे तृप्ति नागर और साथियों के स्वर में मालवीय लोकगीत। इसी के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। हिंदी में समाचार होंगे जिन्हें दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। ये प्रणाली अब 11 देशों में कार्यरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
2: महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने आज नई दिल्ली में 3 स्वदेशी माइक्रो और छोटे गैस टर्बाइन इंजन प्रस्तुत किए। इनमें NG5, NG50 और NG100 शामिल है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इन इंजनों को स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव हैं। श्री कुमार उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाना था। पश्चिम बंगाल में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधान नगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज ला रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड NCCF और केंद्रीय भंडार के स्टोरों में 35 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 268 रन पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है आज और कल की सभा के मुख्य कार्यक्रम। आज की सभा के शेष मुख्य कार्यक्रम है। प्रादेशिक समाचार भोपाल से रिले होंगे 7:10 पर। 7:20 पर सुनिएगा कार्यक्रम खेती गृहस्थी। 7:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। 8:00 भोपाल से ही रिले होगा सुर्खियों में दिल ने फरियाद किया, ये कार्यक्रम सुनिएगा 8:15 पर। चित्रगीत का कार्यक्रम होगा 9:15 पर। उर्दू कार्यक्रम कहकशा भोपाल से रिले होगा 9:30 पर। पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन सुनिएगा 10:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा बांसुरी वादन। प्रवीण शर्मा का राग होगा चंद्रकोस। ये थे आज की सभा के शेष मुख्य कार्यक्रम। कल की सभा के मुख्य कार्यक्रम है भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन। वंदना सुनिएगा 6:05 पर। चिंतन सुन सकेंगे 6:30 पर। खेती की बातें में अंतर्वर्तीय शस्य क्रिया इस पर जानकारी देंगे डॉक्टर नरेंद्र कुमावत 6:35 पर। आपका पत्र ये कार्यक्रम होगा 7:20 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा 8:30 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में कल कलाकार होंगे शंकरलाल धोलपुरिया और साथी। कार्यक्रम होगा 9:00। सुगम संगीत में सुनिएगा अनुजा झोकरकर को 9:15 पर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा 9:30 पर। कार्यक्रम में सुनिएगा सारंगी वादन। फारूक खान का राग होगा बसंत मुखारी। जिले की चिट्ठी भोपाल से रिले होगा 10:00। MH हॉटलाइन ये फोन इन कार्यक्रम होगा 10:05 पर। फोन करें गीत सुने ये फोन इन कार्यक्रम भोपाल से रिले होगा 11:00। दोपहर 12:00 और 2:00 कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत, ये भी भोपाल से ही रिले किया जाएगा। भोपाल से अनुप्रसारित होगा कार्यक्रम संग्रहालय से 12:30 पर। भोपाल से ही रिले होगा महिला कार्यक्रम 1:00। लोक संगीत का कार्यक्रम भोपाल से रिले होगा 1:30 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम भी भोपाल से ही रिले होगा 1:45 पर। चित्रपट संगीत कार्यक्रम सुन सकेंगे 2:30 पर, ये कार्यक्रम भी भोपाल से रिले किया जाएगा। शाम 5:00 युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युवाणी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा 5:45 पर। शाम 6:00 प्रायोजित कार्यक्रम होगा NCERT। 6:30 पर सुगम संगीत में सुनिएगा अनुजा झोकरकर को और उनके साथियों को। 6:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा शंकरलाल धोलपुरिया और साथियों को। 7:20 पर

कार्यक्रम होगा ग्राम लक्ष्मी। कार्यक्रम में सुनिएगा भेंट वार्ता प्रगतिशील कृषक जगन्नाथ पटेल से सुनीता पंडित की समसामयिक कृषि चर्चा। सुर्खियों में 8 बजे भोपाल से रिले होगा। दिल ने फिर याद किया, ये कार्यक्रम सुनिएगा 8:15 पर। चित्रगीत का कार्यक्रम होगा 9:16 पर। चर्चा का विषय है दिल्ली से रिले होगा रात 9:30 पर।

10 बजे सुनिएगा रूपक महाकवि कालिदास पर और 10:30 पर कार्यक्रम होगा शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में सुनिएगा गायन उस्ताद अमीर खां का, राग होगा रागेश्री। ये थे कल की सभा के मुख्य कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब कार्यक्रम भोपाल से डिले करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश कैबिनेट ने आज करीब 10,630 करोड़ रुपए के विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल भिंड के मालनपुर में गोदरेज की नई विनिर्माण इकाई का करेंगे शुभारंभ। सीहोर में 12 किलोमीटर लंबी कावड़ यात्रा में करीब 5 लाख श्रद्धालु हुए शामिल। और प्रदेश के टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, बैतूल और राजगढ़ में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा और सामाजिक कल्याण के लिए 10,630 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने फैसलों की जानकारी दी। सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए एमपीआरडीसी को 12 मार्गों के निर्माण हेतु 4,600 करोड़ रुपए के ऋण की सरकारी गारंटी को मंजूरी मिली। सिवनी बालाघाट 91.64 किलोमीटर मार्ग को 3,458 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन बनाने का निर्णय लिया गया है।
1: इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार बेहतर कार्य कर रहा है और उसी दृष्टि से आज सिवनी बालाघाट जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है इसको 4 लेन करने का निर्णय किया है विद पेव शोल्डर। अब सिवनी से बालाघाट की दूरी लगभग 2 घंटे से घटकर 1 घंटे होने वाली है और इसका निर्माण हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर होगा। इसकी लागत होगी 3,458 करोड़ रुपए। इसका निर्माण, संधारण और कंसेशन की अवधि होगी लगभग 17 वर्ष।
0: भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में आज ही के दिन यूपीआई की शुरुआत हुई थी। भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। यह प्रणाली अब 11 देशों में कार्यरत। यूपीआई भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के सबसे सफल स्तंभों में से एक है। यूपीआई से लेन देन की मात्रा में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार वार्षिक लेन देन की मात्रा 2016-17 में मात्र

0: 1,78,00,000 थी, जो 2025-26 में बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भिंड जिले के मालनपुर में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की चौथी विनिर्माण इकाई का शुभारंभ करेंगे। इकाई के विस्तार पर 450 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। इससे 2,250 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी में नियुक्त युवाओं को नियुक्ति प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में डाक सेवा और डाक मित्र ऐप लॉन्च किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डाक विभाग ने 2 साल की मेहनत के बाद नई ऊर्जा के साथ इन डिजिटल सेवाओं को शुरू किया है। उन्होंने कहा कि डाक मित्र ऐप ग्रामीण डाक सेवकों के लिए है, ताकि वे उपभोक्ताओं को डाक विभाग की सेवाएं सुगमता और सुरक्षित तरीके से उपलब्ध करा सकें।
1: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाए। पहले अनेक प्रोडक्ट्स के लिए और सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अलग अलग फॉर्म्स को भरना पड़ता था, अलग अलग जगह पे जाना पड़ता था। अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित करके हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है।
0: समाचारों में वक्त एक छोटे से विराम का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। सीहोर में सीवन नदी के कुबेरेश्वर धाम तक करीब 12 किलोमीटर लंबी कावड़ यात्रा आज सम्पन्न हुई। मंदिर प्रशासन के अनुसार एक दिन में करीब 5,00,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बारिश के बावजूद महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से श्रद्धालु कांवड़ लेकर यात्रा में शामिल हुए। पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी कांवड़ यात्रा में हिस्सा लिया। भारी भीड़ के चलते सीवन नदी घाट पर प्रवेश प्रतिबंधित रहा और पुल पर जल भरने की व्यवस्था की गई। यात्रा में 1,200 से अधिक पुलिसकर्मी और 5 मेडिकल पॉइंट तैनात रहे। यातायात व्यवस्था के लिए इंदौर भोपाल मार्ग पर डायवर्जन भी लागू किया गया। धार में भोजशाला विवाद को लेकर आज दोपहर 1 बजे तक आधा दिन का बंद रखा गया। बंद का शहर में व्यापक असर रहा और बाजार बंद रहे। इसके बाद बड़ी संख्या में नागरिकों ने लाल बाग से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के पालन की मांग को लेकर कलेक्टर राजीव रंजन मीणा को ज्ञापन सौंपा। बंद के दौरान स्थिति शांतिपूर्ण रही। कलेक्टर ने कहा कि मामला न्यायालयीन प्रक्रिया से जुड़ा है, इसलिए तथ्यों का परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्राओं को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में अन्य किसानों की भी दी जानी चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालयों से आग्रह किया कि वे समय की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप AI आधारित उपकरणों को शामिल करके अपनी शिक्षण पद्धति में बदलाव लाएं। उन्होंने कुलपतियों से छात्रों के साथ अनौपचारिक संबंध बनाने की अपील की, ताकि उनसे सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किए जा सकें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO भारत के लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ हैं। उन्होंने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के 500 से अधिक BLO और 30 BLO पर्यवेक्षकों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि BLO चुनावी प्रक्रिया में विश्वास और पारदर्शिता के महत्वपूर्ण वाहक हैं तथा मतदाताओं के साथ निर्वाचन आयोग का पहला संपर्क है। उन्होंने मतदाता सूची तैयार करने में BLO की भूमिका की सराहना की।
3: बूथ लेवल ऑफिसर्स भारत के लोकतंत्र की आधारशिला। हर बूथ लेवल ऑफिसर अपनी पारदर्शिता और कर्मठता के लिए न केवल अपने बूथ के मतदाताओं के बीच में जाना जाता है, बल्कि पूरे भारत में और पूरे विश्व में जाना और माना भी जाता है।
0: प्रदेश में आज बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, बैतूल और राजगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 2.5 इंच से ज्यादा बारिश हो सकती है। वहीं 20 अन्य जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन बारिश जारी रहने का अनुमान है। सोमवार को भोपाल, नर्मदापुरम, शिवपुरी और सागर समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज मंत्रालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान रबी सीजन में किसानों को पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ट्रांसफार्मर और बिजली लाइनों का मेंटेनेंस कराने, फीडर ट्रिपिंग कम करने और पावर ट्रांसफार्मरों की ओवरलोडिंग घटाने के लिए कार्यशाला बनाने के निर्देश भी दिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रक्षाबंधन के अवसर पर शिवपुरी सर्किल जेल में 28 अगस्त को बंदियों से खुली मुलाकात होगी। नीमच जिले में नालसा के 60 दिवसीय मेगा ड्राइव का शुभारंभ मनासा तहसील के ग्राम बर्डिया से हुआ। राजगढ़ में आयोजित जनसुनवाई में आम लोगों की समस्याएं सुनी गईं। टीकमगढ़ जिले में संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में सामाजिक समरसता संकल्प अभियान के तहत यात्रा बड़ागांव धसान पहुंची। मुरैना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण और संत रविदास स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। खंडवा में सशक्त युवा सशक्त भारत अभियान के तहत हॉली स्प्रिट स्कूल के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने जिला एवं सत्र न्यायालय का शैक्षणिक भ्रमण किया। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत श्योपुर जिले के 182 श्रमिक परिवारों के बैंक खातों में 3,92,00,000 रूपये की अनुग्रह सहायता राशि अंतरित की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,767 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है और समय है किसान भाइयों से चर्चा करने का। तो सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। किसान भाइयों, बारिश की बूंदें खेतों में नई उम्मीद लेकर आती है। सूखी धरती को पानी मिलता है, फसलें लहलहाने लगती हैं और किसान के चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है। लेकिन यही बारिश अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो फसल के लिए परेशानी भी खड़ी कर सकती है। बारिश के मौसम में फसलों की देखभाल कैसे करें, खेत में नमी कैसे पहचानें, कौन सी खाद कब और कितनी दें तथा फसल को स्वस्थ और अच्छी पैदावार बनाने के लिए कैसे कार्य करें। किसान भाइयों, बारिश के मौसम में सबसे पहले अपने खेत का निरीक्षण कर लीजिए। देखिए कि कहीं खेत में पानी लंबे समय तक जमा तो नहीं हो रहा है। बारिश का पानी फसल के लिए जीवनदायी है, लेकिन लंबे समय तक खेत में पानी भरा रहना जड़ों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे पौधों की जड़ों को पर्याप्त हवा नहीं मिलती और फसल पीली पड़ने या सड़ने लग सकती है। इसलिए खेत में ज़रूरत के अनुसार नालियां बनाकर अतिरिक्त पानी बाहर निकालने की व्यवस्था रखें। विशेषकर सोयाबीन, मक्का, दालों और सब्जियों जैसी फसलों में जलभराव पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसान भाई, हम बात तो और करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
1: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
2: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: को उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। फसल को अच्छा बनाने के लिए केवल अधिक खाद डालना जरूरी नहीं, जरूरी है संतुलित मात्रा में सही खाद का इस्तेमाल। खेत में अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद, कंपोस्ट और वर्मिंग कंपोस्ट का उपयोग मिट्टी संरचना और उर्वरकता को सुधारने में मदद करता है। रासायनिक उर्वरकों में यूरिया, DAP, पोटाश आदि का इस्तेमाल मिट्टी की जाँच और फसल की आवश्यकता के अनुसार ही हल करना चाहिए। बारिश के बीच किसान कैसे पता लगाएं कि खेत में मिट्टी में पर्याप्त नमी है या नहीं? इसके लिए खेत की जड़ों वाले हिस्से में थोड़ी मिट्टी निकाल कर हाथ में लें और उसे दबा कर देखें। अगर मिट्टी बिल्कुल सूखी है और दबाने पर बिखर जाती है तो नमी कम है। अगर मिट्टी दबाने पर हल्की गांठ बना ले और उसमें से पानी न निकले तो सामान्यतः नमी अच्छी मानी जा सकती है। लेकिन अगर मिट्टी बहुत चिपचिपी हो और दबाने पर भी पानी निकलने लगे तो समझिए कि खेत में ज़रूरत से ज़्यादा नमी है। इसलिए ऐसी स्थिति में सिंचाई नहीं बल्कि जल निकासी ही ज़रूरत है।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
0: चर्चा भी कर ली, संदेश भी सुन लिए, अब सुनते हैं एक लोकगीत। तो आइए सुनते हैं मालवी लोकगीत रामावतार का गाया।

अभी आप सुन रहे थे राम अवतार का गया मालवी लोकगीत। कुछ ही पलों में प्रायोजित कार्यक्रम भोपाल से रिले करेंगे किसान वाणी। प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। किसान साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम
1: किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुनवे वारे सभी जनन को रीता बहन की दो हाथ जोड़ के राम राम। भैया बिन्ना हरो, आज के समय में स्वस्थ रह वो सबसे जरूरी होते। हमारे शरीर को एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते आंख, जी के बिना पूरी दुनिया अंधेरी है। आँखों के संबंध में हर साल भारत में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा चलाओ जात है, जो पखवाड़ा 25 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक मनाओ जात है। और ये मनाए को उद्देश्य का होते, इको मनाए को उद्देश्य होते कि नेत्रदान के बारे में सभी लोगन को जागरूक करवो, कार्निया अंधत्व के बारे में बतावो और ज्यादा से ज्यादा लोगन को नेत्रदान करवे को संकल्प लेवे के लाने प्रेरित करवो होते। इस विषय पे लोगन के मन में कछु गलत धारणा भी और भ्रांतियां भी होते, जी के बारे में उन्हें बताओ जाते कि सच बात का है। जैसे कि मृत्यु के बाद पूरी आंख नहीं बल्कि केवल कॉर्निया जिए के हम आंख की पुतली कहते हैं ऊ को दान करो जाते। जरूरी बात है कि मृत्यु के बाद 4 से 8 घंटे के भीतर कॉर्निया निकाल लेने चाहिए। को भी उम्र, लिंग और रक्त समूह के लोग नेत्रदान को संकल्प ले सकते हैं। चश्मा पहरवे वारे मोतिया बिंदु को ऑपरेशन करे भय व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। एक व्यक्ति के द्वारा करोगा नेत्रदान दो दृष्टिहीन व्यक्तियों को रोशनी दे सकते हैं। जीवित रहत भय संकल्प पत्र भर के को भी व्यक्ति ई महान काम को हिस्सा बन सकते हैं। कहो जाते के नेत्रदान है महादान, इसे बड़ो ना को दान। और अब सुन लेते हैं भेंट वार्ता, जी को विषय है महिला उपयोगी उन्नत कृषि यंत्र एवं उपकरण। और इस विषय पे जानकारी दे रहे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर सुखवीर सिंह और उनसे बात कर रहे हैं हमारे मनु सक्सेना भैया।
3: नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। आज हम आपके लिए जो बातचीत लेकर आए हैं वह है महिला उपयोगी उन्नत कृषि यंत्र एवं उपकरण, कि महिलाएं किस तरह से उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग करके खेती में अपनी भागीदारी को और मजबूत कर सकती हैं। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुखबीर सिंह जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं और परियोजना समन्वयक हैं केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान यानी CIAE नवी बाग भोपाल में। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और जैसा कि हमारा आज का विषय है महिला उपयोगी उन्नत कृषि यंत्र एवं उपकरण, तो इसमें सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे?
4: आप सभी को पता है जैसे कृषि में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी भागीदारी हम नकार नहीं सकते।
3: बिल्कुल सच बात है।
4: एक और मैं बात बताऊं, इसी भागीदारी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया हुआ है।
3: बात हम सर कृषि यंत्रों की करते हैं, कृषि में ऐसे उन्नत कौन कौन से कृषि यंत्र है?
4: मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा आपको, जैसे हम पारंपरिक कृषि यंत्र कहीं भी निर्मित होते हैं
3: जी,
4: वो केवल पुरुषों को ध्यान में रखते हुए उनका डिजाइन या उनको बनाया जाता है। जबकि आपको पता है पुरुषों की शारीरिक बनावट और ताकत, उनकी जो पावर
3: जी जी जी,
4: वो महिलाओं के मुकाबले कहीं अलग है
3: जी जी
4: आती हैं। इसलिए महिलाओं हेतु उपयोगी यंत्र हम इसलिए बोले हैं, वो ये है कि ये सुधरे हुए यंत्र है, इनको हमने महिला किसानों के हिसाब से यंत्रों का निर्माण होता है।
3: ऐसे यंत्रों की सूची की अगर मैं बात करूं तो सर कौन कौन से यंत्र हैं और उनको कितने भागों में आप बांट के चलते हैं?
4: जैसे हम सबसे पहले बुआई के लिए नवीन डिबलर, वो हाथ से चलने वाला है और एक आदमी उसको चलाता है, उसमें एक बॉक्स है, उसमें हम जो है ना बीज डालते हैं और उसमें विभिन्न फसलों जैसे आप मक्का, सोयाबीन, मटर, चना, इस तरह की फसल उसमें आराम से लाइनों में लगा सकते हैं, कतार में लगा सकते हैं। दूसरा एक हस्तचालित सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल आती है, हाथ से एक महिला किसान हमारी उसको चलाती है, उसमें एक बक्सा जो है सीड के लिए होता है, एक फर्टिलाइजर के लिए होता है। एक लाइन वाली मशीन है, इसको हम लाइनों में कतारों में फसल को लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं
3: जी।
4: ये हाथ से चलने वाले यंत्र हैं और आजकल थोड़ा सा अगर हम और आधुनिक तरीके से करें तो बैटरी ऑपरेटेड, उसमें हमें ताकत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। आजकल बैटरी ऑपरेटेड कई यंत्र आ गए, तो थोड़ा सा उसमें जो हमारी और जो मेहनत लगती है उसको हम कम कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में एक अगर हम धान की बात करें तो 4 रो का एक पैडी ड्रम सीडर आता है
3: जी।
4: तो ये महिला उपयोगी है, बड़ा लाइट वेट मशीन है ये।
3: ओके, ओके।
4: और अगर हमें धान की रोपाई के बाद मींस की धान की वो करते हैं ना, एक तो डायरेक्ट बुआई होती है सीड के साथ,
3: एक रोपाई होती है
4: जिसके लिए हमें पहले नर्सरी तैयार करनी पड़ती है, उसके लिए भी हमारे पास यंत्र है, हस्तचालित धान रोपाई यंत्र उसको बोलते हैं। वो 4 लाइनों वाला भी है, 6 लाइनों में भी आता है और 3 लाइनों का भी है वो। और इसके अलावा अगर हम बात करें फिर निंदाई गुड़ाई की बात आए तो एक ट्विन व्हील हो, या तो झुक के हम करते हैं या बैठ के करते हैं,
3: बिल्कुल,
4: तो दोनों अवस्थाओं में हमारी एफिशिएंसी जिसको कहेंगे, हमारा करना है एरिया, हमें बहुत कम एरिया, मतलब मेरा कहने का ये है कि उससे कवर कर पाते हैं, आउटपुट बहुत कम निकलता है,
3: जी जी,
4: है ना, और मेहनत ज्यादा लग जाती है,
3: बिल्कुल,
4: समय ज्यादा लगता है।
3: अच्छा,
4: अगर आप लेबर हायर किए हुए हैं तो आपका पैसा भी ज्यादा लगेगा, काम कम पैसा ज्यादा लग जाता है, मेहनत ज्यादा लग जाता है,
3: जी जी।
4: तो एक ट्विन व्हील हो करके है, उसमें क्या है, खड़े होके स्टैंडिंग पोजीशन में उसको आदमी चलाता है, वो नीचे ब्लेड लगा होता है उसमें, दो पहिए हैं और वो जो हैंडल है वो महिला किसानों के हाइट के हिसाब से ना
3: एडजस्ट हो जाता है।
4: ओके। और उसी हिसाब से एक, जैसे आप समझिए, अगर हमारा हाथ हमारी कोनी से ऐसे इस डायरेक्शन में जाता है ना, तो हमें वो चलाने में बड़ी कठिनाई होगी। अगर हमारा हाथ ये सीधी पोजीशन से नीचे रहेगा तो वो हमें कठिनाई ज्यादा नहीं आएगी, उसमें
3: ताकत भी सही लगेगी
4: आपकी, और आपका जो ताकत सही जगह लगेगी, और आप आसानी से उस काम को सुगमता से कर सकते। हैंड क्रैंकिंग टाइप पैडी ट्रांसप्लांटर बनाया हुआ है, 2 रो का मशीन है, एक हाथ से आदमी चलाता है, दूसरे को क्रैंकिंग करके वो 2 लाइनों में पौधे आपके लगते रहेंगे।
3: वाह।
4: इसके अलावा उसी को और रिफाइंड किया गया है, उसमें जो ये क्रैंकिंग वाला सिस्टम था उसको हटा के वो क्रैंकिंग किससे कर दिया हमने, उसको दे दिया बैटरी से, तो केवल आदमी को जस्ट उसको चलाना है। इसके अलावा कुछ यंत्र अगर हम आगे और बढ़े, जैसे कटाई की बात आ गई
3: जी,
4: कटाई के लिए पहले क्या होता है, एक पारंपरिक सिकल हमारी चलती थी
3: जी,
4: दराती जिसको बोलते हैं,
3: हसिया।
4: वो हसिया में क्या होता है कि आपने देखा होगा दांते होते हैं ना
3: कटिंग के लिए, उसका
4: जो कटिंग के लिए पहले दराती इस तरह की हसिया आता था जिसमें बगैर दांते नहीं होते थे, उसको अगर हम फसल काटते हैं तो 2-3 बार तो फिसलती है वो, तो उसमें हमारा टाइम ज्यादा लग गया और ताकत भी ज्यादा उसमें लगेगी। तो इसी तरह सेम वो सेरेटेड जो दांते वाली दराती है, आप फसल काटते हैं तो आराम से एक बार में ही तुरंत वो कट जाता है,
3: फिनिशिंग भी आती है।
4: तो आजकल वो दांते वाली दराती आ गई है, तो आजकल उसका इस्तेमाल कईयों में ब्लेड, वो सेल्फ शार्पनिंग, आपको तेज भी नहीं करवाना पड़ता ब्लेड, उसको वो जितना चलाएंगे वो शार्प होता रहता है, तेज होता रहता है। अच्छा, वो महिला किसानों के लिए इस्तेमाल, जैसे उसका हैंडल ग्रिप, जो पकड़ने वाला हैंडल है, कितना उसका मोटाई, कितना डायमीटर होना चाहिए उसका हैंडल,
3: बिल्कुल महिला के
4: हाथ में पूरा आना चाहिए,
3: सच
4: है ना, फिसलना नहीं चाहिए, वो फिसलेंगे तो हमारी एफिशिएंसी भी कम होगी। तो वो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आजकल ये चीजें बनाई हुई है, है ना, तो उनके लिए ये उन्नत यंत्र है। एक इसी कड़ी में जैसे मैं आपको बताऊं, पैडल चालित धान गाई यंत्र आता है
3: जी जी,
4: है ना, ये छोटे छोटे यंत्र, इन सब की जो कीमत आपको मैं बताऊं ना, एक रेंज है, अब अलग अलग बताने में टाइम लगेगा, अदरवाइज ये सब 2,500-3,000 इस टाइप के ये यंत्र हैं। तो इन सब चीजों को अगर हम उपयोग करें तो हमारा जो अभी एनर्जी की बात कर रहे थे, एक मेहनत जो इस साइंस में इर्गोनॉमिक्स में ना, एक इर्गोनॉमिक्स श्रम विज्ञान है जिसपे हम भी काम करते हैं, हमारे बहुत से सेंटर जैसे मैं अभी बात कर रहा था वो भी काम करते हैं, कि हमारा जो खेती में मेहनत लगती है, चाहे वो पुरुष काम करे या महिला काम करे, जो मेहनत है उसको हम कैसे कम करें, है ना, वो कम करने का तरीका यही है कि वो यंत्र महिलाओं का जो बॉडी डायमेंशन है, जो शरीर की आकृति है या शरीर के डायमेंशन है महिलाओं के, अलग अलग रीजन के हिसाब से हम उनको यंत्रों को निर्माण करना पड़ता है कि भाई वहाँ का किसान ये चलाएगा, ये हिमाचल या नॉर्थ ईस्ट के हमारे किसान भाई है बहन है तो उनके लिए, तो उनका आप देखें ना, आप खुद सोचिए ना, वो पहले हम ऐसे ही यंत्रों का निर्माण लोकल आर्टिजन होते थे वो कर लेते थे, लेकिन वो पुरुषों को ध्यान में रखते हुए करते थे, जबकि भागीदारी आजकल धीरे धीरे हमारी महिलाओं की भागीदारी कृषि में ज्यादा हो रही है।
5: बिल्कुल सच।
4: तो हमें कृषि महिला किसानों का जो योगदान है उनको देखते हुए उनके अनुसार यंत्रों का निर्माण हम तो उसी में लगे हुए हैं।
5: नहीं नहीं है, मैं सर जब भी यंत्रों की बात आती है CIAE का सबसे पहले नाम आता है।
4: बिल्कुल, हमारा एक इकलौता संस्थान है पूरे भारत में जो कृषि अभियांत्रिकी का एक इकलौता संस्थान है जो इस पे काम करता है।
5: सर जैसा मेरा सवाल था कि अब सबके मन में जिज्ञासा यह होगी कि ये उपलब्ध कहाँ होंगे।
4: देखिए, जो मैंने अभी यंत्र ज्यादातर जो है ना, यंत्र हमारे CIAE भोपाल से भी आपको मिल सकते हैं, है ना।
5: अच्छा।
4: और बहुत से क्या होता है कि जैसे कोई यंत्र है किसी मैन्युफैक्चर निर्माता को, हम उसका लाइसेंस दे देते हैं बनाने के लिए, तो ऐसे भी कई लोग हैं कि जिसको लाइसेंस दिया हुआ है आप वहां से भी खरीद सकते हैं। दूसरा, कुछ यंत्रों के खरीद पे किसान भाइयों को या जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको कुछ सरकार की तरफ से भी अनुदान दिया जाता, तो उन अनुदान के लिए वो डायरेक्ट हम अनुदान से नहीं दे सकते किसान को, वो कंसर्न जो हमारा ब्लॉक लेवल में किसान डेवलपमेंट ब्लॉक, वहाँ कृषि विभाग या अपने यहाँ तो कृषि अभियांत्रिकी विभाग अलग है, हम स्टेट गवर्नमेंट में भी मध्य प्रदेश में हमारा कृषि अभियांत्रिकी जैसे कृषि विभाग है, कृषि अभियांत्रिकी विभाग
5: बिल्कुल
4: वहाँ से संपर्क करें तो अनुदान केवल उनके जरिए ही मिलता है। अगर हमारे संस्थान से लेता है कोई यंत्र, कोई किसान भाई किसान महिला हमारी, तो जो हमारा संस्थान में एक रेट अप्रूव होता है ना, उसी रेट के हिसाब से उसको वहीं से हम देते हैं।
5: श्रोताओं, वाकई इतनी उपयोगी, इतनी महत्वपूर्ण बातचीत जिसमें हमने जाना कि इन यंत्रों के द्वारा महिलाएं किस तरह से खेती में सुगमता से, सरलता से, अपनी कम से कम एनर्जी लगाकर, ताकत लगाकर काम कर सकती हैं। और निश्चित ही मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि यह बातचीत सुन के आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अमूल्य जानकारी देने के लिए।
4: धन्यवाद, सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भैया बिन्ना हरो, जे सुनी आपने भेंट वार्ता, जी को विषय है तो महिला उपयोगी उन्नत कृषि यंत्र एवं उपकरण, और जानकारी देवे बारे विशेषज्ञ हते डॉक्टर सुखवीर सिंह, और उनसे भेंट कर रहे हते हमारे मनोज सक्सेना भैया। और अब सुन लेते हैं लोकगीत, जे एक सावन गीत है, जे गाओ है अनरत लाल बैरसिया ने।

0: अब सावन गीत के बाद बैया बिन्ना हरो। जैसे कि अपन सबको मालूम है कि पुराने समय में हमारे घर में जो नानी दादी हरे हती वे अचार पापड़ बड़ी मुरब्बा सब बना के रखत हती। ऐसो करके वे खावे वाली सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित रखत हती। और खाने के लंबे समय तक सुरक्षित रखवो और उकी गुणवत्ता को बढ़ा के जो सामान हम रखत है वही विधि को तो खाद्य प्रसंस्करण कहो जात है। खाद्य प्रसंस्करण को क्षेत्र भारत में तेजी से उभरतो भाव रोजगार को एक बड़ो जरिया बन रहो है, जिसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रन में लाखों नौकरी और स्वरोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। और आज हमारी चर्चा को भी तो विषय यही है, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में स्वरोजगार। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र द्वारा कई रोजगार और करियर के अवसर पैदा हो रहे हैं। नए खाद्य उत्पाद तैयार करके और उनकी गुणवत्ता में सुधार करके खाद्य प्रौद्योगिकी विद यानी कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। उत्पादन और पैकेजिंग मैनेजर कारखाने में निर्माण से लेके पैकेजिंग तक की देखभाल करते हैं। इनके द्वारा स्वरोजगार स्थापित होते जैसे अचार पापड़ जैम जूस आटा पिसाई मसाला निर्माण करके छोटो सो व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और अपने लाने और दूसरन के लाने भी रोजगार के कई अवसर हम खोल सकते हैं। सरकार भी सरकारी योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र में सहायता कर रही है, सब्सिडी और वित्तीय सहायता देके खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। किसान संपदा योजना के माध्यम से कोल्ड चेन और फूड पार्क के जरिए रोजगार बढ़ा रही है। सो भैया बिन्ना हरो, आप भी इस क्षेत्र में भागीदारी करके आत्मनिर्भर बनो। और अब सुन लेते हैं एक लघु वार्ता। वार्ता को विषय है खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य और वार्ताकार हैं डॉक्टर MD व्यास।
1: किसान भाइयों, इस वर्ष खरीफ के मौसम के पहले जो मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की थी उसके आधार पर जो अलनीनो का जो प्रभाव हुआ है उसके कारण से सूखे की परिस्थितियां निर्मित होने की आशंका जाहिर की गई थी और अतिवृष्टा भी कहीं कहीं जाहिर की गई थी। तो बीच में जो है अभी कुछ समय सूखे की परिस्थिति तो निर्मित हुई थी, चिंताजनक बात हो गई थी, धान की रोपाई भी नहीं हो पा रही थी और सोयाबीन में भी फूल आने के पहले कुछ समय तक काफ़ी ऐसी स्थिति निर्मित हो रही थी। लेकिन बाद में जो बरसात काफ़ी अच्छी हुई है, सोयाबीन जो हमारे प्रदेश की जो प्रमुख फसल है और उसमें खासतौर से फूल आने की अवस्था और फली में दाने भरने की अवस्था में अच्छी बरसात हो गई है, तो वो जो सूखे की परिस्थितियां जो निर्मित हुई थी वो उससे हमारी जो शंका है वो थोड़ी खत्म हुई है। लेकिन इस समय जो है खासतौर से पौध संरक्षण की बात पर जरूर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सोयाबीन की फसल ये पौध संरक्षण के लिए काफ़ी क्रांतिक अवस्था होती है और इस समय फूल निकलने की अवस्था और फली में दाना भरने की अवस्था, इस समय कई प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है। अभी जिस तरीके से कई किसान भाइयों के यहाँ से हमें जिस तरीके की सूचनाएं मिल रही हैं उस समय पीले पत्ते पड़ने वाली शिकायत और साथ ही साथ कई इल्लियों की शिकायत भी देखने को मिल रही है। सोयाबीन के साथ ही साथ अन्य दलहनी फसलें भी जो हैं, मूंग है, उड़द है या अन्य जो फसलें वहाँ पर भी देखा जा सकता है। इन परिस्थितियों में हमें खासतौर से इस समय जो नियंत्रण है वो जैविक उपाय तो अपनाना ही चाहिए सबसे पहले, और जैविक उपाय अपनाने के पश्चात यदि नियंत्रण नहीं हो पाता है तो हम रासायनिक उपचारों की तरफ भी जा सकते हैं। जैविक उपाय में हमें पीले चिपचिपे कार्ड लगा देना चाहिए, हमें जो टी आकार की खूंटियां लगा देना चाहिए और तंबाकू की इल्ली और चने की इल्ली का यदि प्रकोप है तो फेरोमोन ट्रैप भी लगाना आवश्यक होता है। पीले पत्ते वाली शिकायत जो है सफ़ेद मच्छर जो होता है, सफ़ेद मक्खी होती है, उसके कारण ज़्यादा होता है। ये रोग होता है लेकिन ये कीड़े के द्वारा फैलता है, तो इसके नियंत्रण के लिए हमें जरूर है कि उसका उपाय अपनाना चाहिए। जैविक उपाय में यदि पीले चिपचिपे कार्ड लगाते हैं तो ये कीट उस पर आकर चिपक जाते हैं और हमारी फसल जो संक्रमित होने से बच जाती है। इसके पश्चात भी हमें नीम का जो तेल है और या निमोली का सत है इसको लगाकर भी हम वो है उससे बचा जा सकता है। और साथ ही एक नीमास्त्र बनाने की जैविक विधि भी है जिसमें गोमूत्र है, नीम के पत्ते हैं, इसके माध्यम से बनाकर हम इसको बचा सकते हैं। फिर भी यदि नियंत्रित नहीं हो पा रहा है तो फिर हमें रासायनिक उपायों को अपनाना आवश्यक चाहिए। ये येलो वेन मोजेक जो वायरस है ये काफ़ी संक्रमित करता है मतलब फसल की आखिरी अवस्था तक, तो इसमें हमें जो फिर रासायनिक उपचार में एमीडा क्लोप्रिड है, थायमेथोक्सोम है, इन दवाओं का उपचार करना चाहिए तो ये पीले पत्ते वाली शिकायत कम हो सकती है। पीले पत्ते वाली शिकायत पोषक तत्वों की कमी के कारण भी कभी कभी हो सकती है, तो अगर यदि सफ़ेद मच्छर आपके खेत में उड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं तो हो सकता है किसी पोषक तत्व की कमी हो, तो खड़ी फसल में भी हम इस समय समय कुछ पोषक तत्वों की उपलब्धता करा सकते हैं, जिसमें यदि देसी तरीके से जैविक तरीके से आए तो जीवामृत एक बहुत ही उत्तम साधन है। जीवामृत जो आप किसान भाई जानते भी हैं, गोमूत्र, गोबर और कुछ बेसन, गुड़ इत्यादि के माध्यम से बनाया जाता है, 24 घंटे में बनकर तैयार हो जाता है। जो रासायनिक दवाओं के माध्यम से जो टॉनिक का उपयोग करते हैं उसकी जगह आप जीवामृत का उपयोग करते हैं तो फसल हष्टपुष्ट होती है, फसल में दाना चमकदार बनता है और दाने उत्पादन भी अच्छा होता है, तो इसका उपयोग करें। अन्यथा 19-19-19 एनपीके के कई स्रोत बाजार में उपलब्ध हैं, या 0-0-52 जो है, जो एनपीके का जो जिसमें पोटेशियम होता है इसके स्रोत, इनको भी आप खड़ी फसल में उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई एक बात और कहना चाहेंगे कि इस समय जो सबसे उपयुक्त बात ध्यान देने योग्य है कि अपना बीज स्वयं बनाए। कई बार हम अपने इस बीज के लिए हर साल ज्यादा पैसा व्यर्थ खर्च करते हैं, क्योंकि फूल आने की अवस्था होती है, फलियों में दाना बनने की अवस्था होती है, पौधों पर रोए होते हैं सोयाबीन में, तो इस समय आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं और जो दूसरी जाति के पौधे हैं उनको निकाल दीजिए और जब दाना बनने लगे तब एक फफूंदनाशक का छिड़काव कर दीजिए। तो इस प्रकार से ये सोयाबीन की फसल तथा अन्य दलहनी फसलें हम उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से धान में भी रोपाई हो चुकी है, उसका भी ध्यान रखें। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो अपनी फसल इस बार खरीफ में भी मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के उपरांत भी हमें अच्छी उपज मिल सकती है। धन्यवाद बहुत
0: भैया बिन्नाहरो, जे आपने सुनी लघु वार्ता। इमे वार्ताकार हते डॉक्टर MB व्यास और विषय हतो खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य। और अब बढ़त हैं कार्यक्रम के समापन की ओर। खेती की बात किसानन के साथ, ज्ञान की बात गांव के साथ। सो सुनत रहियो किसान वाणी कार्यक्रम। और अब दीजिए रीता बहन को आज्ञा। राम राम।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: उतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सब ही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: किसान साथियों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण अभी किया जा रहा था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत रूस द्विपक्षीय संबंध, रणनीतिक साझेदारी और बहुक्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल और पत्रकार मानस प्रतिम भूयान।
2: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस की 2 दिन की यात्रा की। रूस दशकों से भारत का एक अहम साझेदार रहा है। इस यात्रा के नतीजे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एम्बेसडर स्कंद रंजन तायल। एम्बेसडर तायल, विदेश मंत्री जयशंकर की राष्ट्रपति पुतिन और अन्य रूसी नेताओं के साथ हुई बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है?
3: हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की ये 2 दिवसीय यात्रा रशिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें न केवल बायलैटरल पर मल्टीलैटरल और इंटरनेशनल तब जो मुद्दे हैं उन पर विचार विमर्श हुआ। इस समय शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगली समिट है बिश्केक में 31 अगस्त और 1 सितंबर को। उसमें राष्ट्रपति पुतिन भी आएंगे और हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी जाएंगे। उसके बाद ब्रिक्स की समिट मीटिंग भारत की मेजबानी में हो रही है और ये भारत की अपेक्षा है और बहुत विश्वास है कि राष्ट्रपति पुतिन उस समिट में भारत आएंगे। तो उनमें क्या क्या मुद्दे होंगे, क्या क्या बातचीत होगी, क्या क्या एजेंडा होगा, मैं समझता हूँ हमारे विदेश मंत्री की 2 दिवसीय यात्रा में उस पर काफी बातचीत हुई होगी। और दूसरा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग वहां हुई कि 27वीं मीटिंग, एक अंतर सरकारी आयोग है भारत और रशिया के बीच में जो वाणिज्य, आर्थिक मुद्दे, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग हर साल या 2 साल में एक बार उसके बारे में बातचीत करते हैं। और रशिया की तरफ से प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतोरोव ने उसका अध्यक्षता की और भारत की तरफ से हमारे विदेश मंत्री ने उसकी अध्यक्षता की। और इस मीटिंग में न केवल रशिया के बहुत ही अनुभवी विदेश मंत्री श्री सर्जेई लावरोव शामिल हुए पर राष्ट्रपति पुतिन के एक बहुत खास सलाहकार श्री यूरी उशाकोव भी शामिल हुए। ये दिखाता है कि कितना महत्व रशिया की टॉप लीडरशिप ने इस मीटिंग को दिया, क्योंकि इस जॉइंट कमीशन मीटिंग में पिछले 1 वर्ष में पूरे भारत और रशिया के सहयोग में क्या क्या हम लोगों ने अचीव किया, कहाँ कहाँ कुछ कमी रही और अगले 1 वर्ष 2 वर्ष आगे क्या करना है, इन सब चीजों पर बातचीत होती है। और बाकी जितने भी मंत्रालय हैं, चाहे वो रशिया के हों या भारत के हों, वो यहाँ से जो गाइडलाइंस आती हैं उनके अनुसार भारत और रशिया के सहयोग को आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये विजिट हमारे विदेश मंत्री की रशिया के लिए है। और जैसा कि राष्ट्रपति पुतिन ने अपने रिमार्क्स में कहा कि बहुत अच्छी बातें होंगी, ऊर्जा के ऊपर होगी, उर्वरक भारत में कुछ कमी हो रही है उनके सप्लाईज पर होगी, आणविक ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, तो हमेशा ही भारत और रशिया के बीच के सहयोग की एक बहुत ही अच्छी कड़ी है। और हाई टेक्नोलॉजी की आजकल बहुत ही बात हो रही है कि जिस तरह दुनिया बदल रही है उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब चीजें, उसमें भी भारत और रशिया आगे बहुत

0: सहयोग करेंगे।
1: एम्बेसडर टायल, विदेश मंत्री जयशंकर ने रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुटिन, उनसे भी मुलाकात की। आप भारत को राष्ट्रपति पुटिन के उस आश्वासन को कैसे देखते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि रूस भारत को ऊर्जा और फर्टिलाइजर्स की निर्यात में हमेशा प्राधान्य देगा और इसका आपूर्ति सुनिश्चित करेगा?
0: बहुत ये एक अच्छा राष्ट्रपति पुतिन ने आश्वासन भारत के विदेश मंत्री को दिया कि वहां से रशिया से ऊर्जा और उर्वरक का सप्लाई भारत को हमेशा जारी रहेगी। पर उसमें दिक्कत जो आ रही है, जो चुनौती है, कि उसका पेमेंट कैसे किया जाए। इस समय जो भारत और रशिया के बीच में जो व्यापार है, वो 2 साल पहले करीब 67 बिलियन डॉलर था और इस साल भी शायद उसी उतना ही करीब होगा, पर इसमें करीब 50 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है भारत के खिलाफ। मतलब भारत करीब करीब 7 बिलियन डॉलर का आयात करता है पर केवल 8-9 बिलियन डॉलर का निर्यात रशिया को करता है। अब कैसे उसका पेमेंट किया जाए, क्योंकि जो अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाई हुई है रशिया के ऊपर, वो बैंकिंग सिस्टम पर भी है, डॉलर को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बहुत ही नए नए तरीकों से उसका पेमेंट करने का प्रयत्न होता है किसी तीसरे देशों के द्वारा। पर इस समय जो एक नई चुनौती शायद अमेरिका की तरफ से आ सकती है कि उनकी जो सेनेट है, उसने एक लिंडसे ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 पास किया है और उसमें कहा है कि अमेरिका 100% टैरिफ तक लगा सकता है उन देशों पर जो रशिया का क्रूड ऑयल खरीदते हैं। और जो दुनिया के 5 सबसे अधिक रशियन ऑयल खरीदने वाले देश हैं, उसमें प्रथम स्थान चीन का है, फिर भारत, स्लोवेकिया, हंगरी और अजरबैजान। अब ये एक्ट अमेरिका की सेनेट ने तो पास कर दिया है, पर अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास होना है और उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप को देखना है कि वो इस पर हस्ताक्षर करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर ये लॉ बन जाता है अमेरिका में, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती होगी। अब उसमें रशिया का कुछ लेना देना नहीं है, पर वो चुनौती भारत की होगी। पर इसमें एक चीज और समझने की आवश्यकता है हमारे सुनने वालों को, कि अगर ईरान का कच्चा तेल और रूस का कच्चा तेल दुनिया के बाजार से हट जाता है, तो दुनिया में कच्चे तेल की कीमत बहुत अधिक बढ़ने की संभावना है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा, और चीन तो है ही, भारत और चीन मिलके बहुत बड़े आयात करते हैं। और अगर दुनिया में तेल का प्राइस बढ़ा, तो अमेरिका में भी जो पेट्रोल गाड़ी में डाला जाता है, उसका भी दाम बढ़ेगा। अमेरिका के ईरान पे हमले से पहले वो करीब 3 डॉलर प्रति गैलन था, जो आज 4 डॉलर प्रति गैलन है। अगर वो 4.5 गैलन उससे अधिक हो गया, तो अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन होने हैं नवंबर में, उसमें बहुत दुष्प्रभाव प्रेसिडेंट ट्रम्प के खिलाफ उसमें पड़ सकता है, क्योंकि वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रिपब्लिकन पार्टी हार सकती है। तो अब क्या वहां निर्णय लेते हैं राष्ट्रपति ट्रम्प के बारे में, ये कहना बड़ा मुश्किल है क्या वो निर्णय लेंगे। पर भारत के लिए और रशिया के लिए ये एक चुनौती है और वो भविष्य बताएगा कि इसका क्या रूप निकलता है।
1: एम्बेसडर टायल, रूस के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मंतूरोव के साथ बातचीत में जयशंकर ने दोनों देशों के बीच व्यापार में रूस के पक्ष में बढ़ते व्यापार घाटे पर चिंता जताई। क्या ये वाकई चिंता की बात है? इस मुद्दे को कैसे हल किया जा सकता है?
0: ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि कई वर्षों से भारत का जो निर्यात है रशिया को, वो 8-10 बिलियन डॉलर के आसपास ही रहा है, उसमें कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं हो रही है। और क्योंकि हम बहुत ऊर्जा अब आयात कर रहे हैं रशिया से, तो करीब 50 बिलियन 60 बिलियन डॉलर का हम कच्चा तेल वहां से और फर्टिलाइजर ये सब आयात कर रहे हैं। अब उसको कैसे भारत का निर्यात बढ़ाया जाए, ये एक बहुत बड़ा एक चुनौती है। उसमें भारत कुछ प्रयत्न कर रहा है, कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भारत के वहां से भेजे जाएं, भारत की फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट दवाइयां पूरे रशिया में बहुत ही अधिक बिकती हैं, उनकी बिक्री और बढ़ाई जाए। कुछ एक ये प्रयत्न है कि रशिया का जो फार ईस्ट है, साइबेरिया है, वहाँ बहुत ही कम आबादी है और वहाँ बहुत संसाधन है कि खनिज पदार्थ बहुत है, एग्रीकल्चर लैंड बहुत हो सकती है वहां पर, कि एक मोबिलिटी एग्रीमेंट इस तरह का रशिया के साथ हो कि भारत से अधिक संख्या में स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स, लेबर, प्रोफेशनल्स वो रशिया जाएं और वहां जाके काम करें, क्योंकि रशिया में जो उनकी

0: जनसंख्या है वो भी कुछ कम हो रही है, वो एजिंग सोसाइटी है। तो एक इस तरह से जो भारत के वर्कर्स वहां जाएंगे वो वहां कमाएंगे, भारत पैसा भेजेंगे, जैसा कि हम देखते हैं कि गल्फ कंट्रीज से भेजते हैं, अमेरिका से भेजते हैं, तो उससे भी कुछ ये जो गैप है वो कुछ कम हो सकता है। और उसके बाद एक प्रयत्न है कि भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, जिससे कि भारत का जो निर्यात है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को वो दूसरे देशों की अपेक्षा में थोड़ा कम हो जाए। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के 5 देश सदस्य हैं, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक और रशिया, पर उसका ज्यादातर रशिया ही उसका बहुत कोर है। पिछले वर्ष जब भारत भारतीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में एनुअल समिट हुई थी, तब ये बातचीत हुई थी कि इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा कि भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। पर ये बहुत इसमें समय लगता है कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने में, क्योंकि सब देश अपने अपने हित को बचाने का प्रयत्न करते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि हमारा यूरोपियन यूनियन, और बहुत साल लगते हैं, कोई एक आसियान के साथ भी रिव्यू चल रहा है, उसमें समय लग रहा है, पर ये दिशा बहुत अच्छी है और इसमें कुछ वर्ष में कुछ नतीजे जरूर सामने आएंगे।
1: एमएसए टायल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच आगामी एससीओ समिट और ब्रिक्स समिट के दौरान द्विपक्षीय बातचीत होने की उम्मीद है। इन बातचीत का मुख्य विषय क्या हो सकता है?
0: मैं समझता हूँ कि ये द्विपक्षीय बातचीत में जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, उन पर बातचीत अधिक होगी, क्योंकि जहाँ तक आर्थिक, व्यापारिक, साइंटिफिक ये सब चीजें हैं वो इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की मीटिंग में उन पर विचार हो जाएगा। और किस तरह दुनिया बदल रही है, किस तरह यूक्रेन और रशिया का युद्ध खत्म हो, वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है, क्या और देश कुछ कर सकते हैं जिससे कि अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध समाप्त हो, इंडो पैसिफिक में क्या स्थिति है, किस तरह चीन की क्या नीति है वहाँ पे, किस तरह उसको देखा जाए, समझा जाए, और रशिया जो भारत का सोच है चीन के प्रति, इंडो पैसिफिक के प्रति, उसको समझे कि भारत चाइना से दोस्त करने के लिए तैयार है, पर चीन का रुख हमारे बॉर्डर पर ठीक नहीं है। बार बार हमारी तरफ से कहा गया है कि सबसे पहले बॉर्डर पे, भारत चाइना के बॉर्डर पर शांति हो और कोई वहां पे टेंशन ना हो, तभी हमारे द्विपक्षीय संबंध चीन के साथ अच्छे होंगे। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री दोबल जी इस समय चाइना में हैं और ये सब बातचीत चल रही है वहाँ, बॉर्डर टॉक्स। तो भारत का प्रयत्न है कि इंडो पैसिफिक एक शांत एरिया रहे, वहाँ कोई तनाव ना हो, और उसमें हमारे प्रधानमंत्री अवश्य राष्ट्रपति पुतिन का सहयोग भी चाहेंगे और उनका समर्थन भी चाहेंगे।
1: मिस्टर टायल, ये मेरा अंतिम क्वेश्चन होगा। रूस भारत का एक पुराना और भरोसेमंद दोस्त और सहयोगी रहा है। ऐसे समय जब दुनिया भू राजनीति का उथल पुथल का सामना कर रही है, आप भविष्य में भारत रशिया का जो रिश्ता है इसे कैसे देखते हैं और किस तरह देखते हैं?
0: देखिए, भारत और रूस के संबंध तो एक लेगेसी है, एक विरासत है, जो भारत और सोवियत यूनियन के जो बहुत ही घने मित्रता थी उसकी एक कड़ी है। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि दुनिया में जितने भी संबंध हैं, सामरिक हैं, स्ट्रेटेजिक हैं, वो कुछ तनाव में है। अमेरिका और नेटो के बीच में तनाव है, अमेरिका कनाडा के बीच में तनाव है, बताइए, जो कि बिल्कुल बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, अमेरिका और कोरिया के बीच में तनाव है। इन सब संदर्भ में अगर देखें तो भारत और रूस के बीच में जो रिश्ते हैं वो बहुत ही मजबूत हैं, बहुत डिपेंडेबल हैं, और उन पर बिल्कुल भरोसा किया जा सकता है कि भारत कभी कोई ऐसा निर्णय नहीं लेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो रशिया के हित में ना हो, और इसी तरह रूस कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा, कभी कोई ऐसा निर्णय नहीं लेगा जो भारत के हित में ना हो। तो इसमें विश्व में भारत और रूस की ये मजबूत समझ और मित्रता पूरे विश्व में शांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर है, कड़ी है, और इसको दुनिया में बहुत अच्छी तरह समझा जाता है, देखा जाता है।
1: एमएसएस टायल, भारत रूस संबंधों पर विस्तृत दृष्टिकोण के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत रूस द्विपक्षीय संबंध, रणनीतिक साझेदारी और बहुक्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल और पत्रकार मानस प्रतिम भूयान। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुर्खियों में।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो सखी पूजा ठाकुर का प्यार भरा नमस्कार। तक तो ताज ठुकरा दिए जाते हैं मोहब्बत के लिए। मोहब्बत का ये कमाल है कि सारे रास्ते आसान हो जाते हैं। अगर चलना जिंदगी की नियति है तो मोहब्बत आधार है। सोचो, अगर दुनिया में मोहब्बत ना हो तो क्या होगा? क्या चांद अच्छा लगेगा? क्या नज़ारे खूबसूरत लगेंगे? ना रंग रहेंगे, ना रिश्ते रहेंगे, ना वादे रहेंगे, ना शिकायतें रहेंगी। इन सब का आधार सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: पैगाम लिया है कभी, पैगाम दिया है, आंखों ने मोहब्बत में बड़ा काम किया है। न जाने क्या कशिश है उनकी मदहोश आंखों में, नज़र उनसे हटती नहीं। आंखों की लबों से जंग भी क्या खूब होती है, लब जो कहते हैं चले जाओ तो आंखें रोक लेती है। आंखें पया करती है दिल का हाल, न जाने क्या होता है जब सामने हो तुम। भूल जाते हैं सब, बस दिखता है तो आँखों में प्यार।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: बुधवार की शाम आपकी पसंदीदा फिल्मों के नाम।
1: बंध के रक्षा बंधन से।
0: जी हाँ, युववाणी कार्यक्रम में इस बुधवार एक ही फिल्म से में हम लेकर आए हैं आपके लिए भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित फिल्म रक्षा बंधन।

0: तो इस बुधवार सुनना मत भूलिएगा ठीक शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी।
1: प्रेम दिखता नहीं, कहा भी नहीं जाता, सिर्फ महसूस होता है दिल की गहराइयों से, एकदम गहरे जिसमें डूबना होता है। फिर कुछ होश नहीं रहता, एक ऐसा आनंद जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, जो शब्दों में नहीं समाता, सिर्फ महसूस किया जाता है। पर शर्त है कि प्रेम बेशर्त हो, जिसमें शब्द ना हो, उपेक्षा ना हो, जो कहा नहीं सिर्फ किया जाए।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: प्रेम की अपनी भाषा होती है, ये बस प्रेमी ही समझ सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में प्रेम की ही बोली एक जैसी होती है। लैला, मजनू, हीर, रांझा, रोमियो, जूलियट, इन सब ने एक ही भाषा समझी, वो है प्यार की। जो रूह से रूह को समझ जाता है, वो बिना बंधन भी एक दूसरे से बन जाता है। इस जग में सब झूठा, केवल प्रेम ही निस्वार्थ है। तपती धूप में ठंडी हवा है प्रेम, नदिया का सागर है प्रेम, काली घटा छाए तो बूंदों की मनुहार है प्रेम।

0: நீ ரொம்ப அழகா இருக்க.
1: ரொம்ப
2: काश दिल की आवाज़ में इतना असर हो जाए, हम जिन्हें याद करें उन्हें खबर हो जाए। दिल बहुत याद कर रहा है तुम्हें, आ जाओ ना सब छोड़ के।

0: शर्मा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापक बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर हब बताया। वैश्विक हाइपर स्केलर से 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। यूपीआई से लेनदेन की मात्रा में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डिजिटल विभाजन के अंतर को समाप्त करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करके यूपीआई ने देश भर में व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाया है, साथ ही व्यापक आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है।
1: दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेनदेन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेनदेन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेनदेन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली के दुकानदार योगेश ने कहा कि यूपीआई ने भुगतान को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त बना दिया है।
2: मुझे 10 साल हो गए यूज करते हुए यूपीआई को, और सबसे बड़ी बात है बंदे की बात अगर वॉलेट में पैसे हो ना हो, यूपीआई तो होता ही है। अपने यूपीआई मोबाइल से ये बेनिफिट मिला है।
1: बिहार निवासी सानू भारती ने कहा कि वर्ष 2016 में शुरू किए गए यूपीआई ने लोगों के लिए एक दूसरे को और व्यापारियों को भुगतान करना आसान बना दिया है।
3: सीआई के द्वारा जो यूपीआई लाया गया 2016 में 11 अप्रैल को, जो 21 बैंकों में लागू किया गया, जिससे हमारे देश में एक डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग आसानी से बैंकों में या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं।
1: महज एक दशक में ही यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के स्वरूप और पैमाने को पूरी तरह बदल दिया है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: देश में यूपीआई सेवा के 10 वर्ष पूरे होने के साथ ही अब पूरे झारखंड में डिजिटल भुगतान बेहद आसान, तेज और सुरक्षित हो गया है। हजारीबाग में झारखंड वाणिज्य परिसंघ के सचिव राकेश कुमार ने बताया कि इस डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने व्यापार को और अधिक पारदर्शी बनाया है।
4: चैम्बर ऑफ कॉमर्स भारत सरकार के इस नियम का बहुत स्वागत करती है। इससे बहुत ज्यादा फायदा व्यापारियों को हुआ है और सुगमता से ग्राहक भी इससे काम करते हैं।
0: यूपीआई का एक दशक पूरा होने पर हजारीबाग के स्थानीय लोगों ने इस सेवा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
5: फोन पे हो, गूगल पे हो, इसे हम लोग को बहुत आसानी हो गया। अब पैसा किसी को ले जाने का भी जरूरत नहीं है, अपना फोन पे में ट्रांजेक्शन हो रहा है और ये एक तरह का ये सब पक्का हो गया। जैसे छोटे दुकानदार, जैसे सब्जी वाले या पान दुकान या किसी तरह का भी छोटा व्यवसायी लोग है, उन लोग भी अपना अकाउंट है सो खुलवा रहे हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल

0: प्रणालियों की प्रौद्योगिकी को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है।
1: तकनीक का हस्तांतरण घरेलू उद्योगों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे घरेलू उद्योगों को योग्यताओं, प्रमाणों और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वदेशी उत्पादन करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। ये प्रावधान मिसाइल प्रणाली के विकास से औद्योगिक उत्पादन को संभव बनाएगा। ये उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण के लिए भारतीय उद्योग की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए DRDO के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना तथा भारतीय MSMEs और अन्य प्रौद्योगिकी साझेदारों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी के अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार जापान सहित उच्च तकनीक क्षेत्र की अन्य कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन से छूट देने के लिए नियमों की एक विशेष रूपरेखा पर काम कर रही है। टोक्यो में सेमीकंडक्टर और AI क्षेत्रों की जापानी कंपनियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये छूट आवश्यकता के आधार पर कंपनी, उद्योग, उत्पाद या परियोजना स्तर पर दी जा सकती है। श्री गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर का हब बताते हुए कहा कि वर्ष 2030 तक देश में सेमीकंडक्टर की मांग 150 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने वैश्विक हाई स्केलर्स के 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले यह वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दो दिन की यात्रा पर कल पेचिंग पहुंचे श्री डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की।
2: भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने और रोडमैप 2030 के लक्ष्यों को तेजी से लागू करने पर सहमति जताई है। वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में दोनों पक्षों ने थल, वायु और नौसेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास और स्टाफ कॉलेज साझेदारी बढ़ाने की व्यापक समीक्षा की। इस वार्ता की सह अध्यक्षता भारत के संयुक्त रक्षा सचिव अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड के उपरक्षा सचिव रिचर्ड श्मिट ने की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने न्यूजीलैंड के रक्षा बल के उप प्रमुख और संयुक्त बलों के कमांडर सहित कई शीर्ष नेताओं से उच्च स्तरीय मुलाकात की। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य संयुक्त सैन्य खरीद, परिचालन ढांचों का मिलान और आगामी रक्षा परियोजनाओं के लिए सुचारू समन्वय को सुनिश्चित करना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुनीश शर्मा।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए।
3: आज की परिस्थितियों के हिसाब से एग्री एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, आज की चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज की हो, ग्लोबल वार्मिंग की हो, बदलती हुई टेक्नोलॉजी हो, नए नए रोगों का प्रकोप हो, मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हो, उन सब का समाधान भी ढूंढना है। कृषि शिक्षा प्राप्त करके जो विद्यार्थी निकलते हैं उनका कैसे भविष्य बेहतर हो और वो कृषि को कैसे बेहतर करें, किसानों को उससे कैसे फायदा हो, इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है।
0: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव है। श्री कुमार उत्तर प्रदेश के दो दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500

0: बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में दो बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधाननगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड और केंद्रीय भंडार के स्टोरों में 35 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर विचार करने की सहमति दे दी। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 958 उम्मीदवारों के सेवा आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को 3 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने और 22 सितंबर से पहले आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि इसके बाद उनकी अपील पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई की जाएगी। न्यायालय की पीठ ने तेजपाल की आत्मसमर्पण से छूट देने की याचिका खारिज कर दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को याद करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर की शिक्षाएं नागरिकों को धार्मिक आचरण और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद के महान आदर्श नागरिकों को एक समावेशी और विकसित देश के निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। सरकार देश में मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों की स्थिति पर पूरे देश में मजबूत निगरानी तंत्र के जरिए लगातार नजर रख रही है। सरकार ने कहा है कि घबराने या चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने कहा कि देश में इस समय फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस हाल के वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे का संकेत नहीं है और ये मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस के सामान्य व्यवहार के अनुरूप है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र तथा सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में आज दिनभर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 287 अंक ऊपर चढ़कर 77,656 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 116 अंक की तेजी के साथ 24,335 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 33 पैसे मजबूत होकर 95.41 रूपये पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से पहली पारी में 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूपीआई का 1 दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। इसके साथ ही

0: अभी आपने सुना शक्ति फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में, बोल थे आनंद बख्शी के और संगीत था आर डी रहमान का।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
3: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे,
4: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं 4 दिन तो जियो जी भर के।
5: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से HIV/AIDS और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे HIV/AIDS के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
4: हाँ भाई समझा।
5: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
6: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोताओ माफ कीजिएगा, शक्ति फिल्म के संगीतकार थे RD बर्मन। और कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। इस गुरुवार दिनांक 27 अगस्त 2026 को सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है सर्दी, खांसी, वायरल बुखार और जोड़ों का दर्द तथा बारिश के दिनों में होने वाली बीमारियां और उनका उपचार। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर AK द्विवेदी होम्योपैथिक विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। गुरुवार दिनांक 27 अगस्त 2026, समय सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। फोन करना ना भूलें गुरुवार दिनांक 27 अगस्त 2026 को, समय सुबह 10:32 से 11:02 तक, विविध भारती इंदौर से FM 101.6 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं अब बॉबी फिल्म का गीत। स्वर हैं लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह के, बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: चिलक हूँ चुप रहूँ मैं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं पर अब मुश्किल चुप रहना है।
1: इस गीत के साथ ही चित्रगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। उर्दू कार्यक्रम कहकशा भोपाल से रिले करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

उर्दू प्रोग्राम कहकशा में मैं शीरीन खान आप तमाम सामईन का तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। आज का हमारा प्रोग्राम आबशार गजल पर मबनी है। दोस्तों तसव्वुर कीजिए, शाम का वक्त है, झील के पानी पर ढलते सूरज की आखिरी किरणें ठहरी हुई हैं। पुराने शहर की गलियों से आती हुई आवाजें, किसी नुक्कड़ से उठती हुई गुफ्तगू, कहीं से आती सितार की धीमी सी झनकार और किसी महफिल में पढ़े जा रहे शेर की गूंज, ये सब मिलकर जिसे एक ऐसे शहर की तस्वीर बनाते हैं जिसकी पहचान सिर्फ उसकी इमारतों से नहीं बल्कि उसकी आवाजों से होती है। जी हाँ, झीलों का ये खूबसूरत शहर भोपाल, अगर गौर से सुना जाए तो यहाँ सिर्फ पानी की रवानी नहीं सुनाई देती बल्कि सदियों की रिवायात एक दूसरे से हम कलाम होती नजर आती हैं। इस शहर की खूबसूरती यही है कि यहाँ गुजरा हुआ कल आज से लड़ता नहीं बल्कि इसके साथ चलने की कोशिश करता है। पुराने महलात की दीवारों से लेकर नई नस्ल के फनकारों के स्टेज तक हर जगह कोई ना कोई कहानी सांस लेती हुई महसूस होती है। आज के हमारे इस खसूसी प्रोग्राम का मौजू है रंगमंच और रिवायत भोपाल के सकाफती मराकज। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह जदीद थिएटर की चमक और सदियों पुरानी हिंदुस्तानी लोक रिवायत ने मिलकर इस तारीखी शहर को फन का एक अजीम मरकज बना दिया। हम तस्किरा करेंगे फने तामीर के उस शाहकार भारत भवन का जिसके आंगन में बैठकर झील का पानी गौर व फिक्र करने पर मजबूर करता है। हम याद करेंगे बीवी कारंत के उस जादुई मौसिकी को जिसने थिएटर को आवाज और जगह का रिश्ता सिखाया। हम तस्किरा करेंगे अलकनंदन की उस नायाब बसीरत का जिसने आम लोक बोलियों को थिएटर की जबान बना दिया। हम घूमेंगे लोकरंग के उन पांच रोजा मेलों में जहां पूरा हिंदुस्तान एक छत के नीचे रक्स करता हुआ नजर आता है। इससे पहले हम सुनते हैं हमारे प्रोग्राम की पहली पेशकश गुलकारा आशा भोसले की आवाज में और कलाम है नासिर काजमी का। समाप्त कीजिए

दोस्तों, अभी आप गुलुकारा आशा भोसले की आवाज़ में गज़ल समाअत फरमा रहे थे और कलाम था नासिर काज़मी का। गज़ल सुनते हुए हम आवाज़ और अल्फाज के ज़रिए एक दुनिया में दाखिल होते हैं, जबकि रंगमंच हमें इसी दुनिया को अपनी आँखों के सामने जीते हुए देखने का मौका देता है। यही रंगमंच की खूबी है, वो कहानी सिर्फ सुनाता नहीं बल्कि उसे हमारे सामने वखूपज़ीर कर देता है। किसी फनकार का स्टेज पर आना, उसका एक जुमला कहना, उसकी चाल, उसका ठहराव, यहाँ तक कि उसका खामोश रहना भी एक मानी पैदा करता है। भोपाल की रंगमंची रिवायात को समझने के लिए भारत भवन का जिक्र लाजिम हो जाता है। 13 फरवरी 1982 को भारत भवन का इफ्ताह हुआ और इसे इस अंदाज में तरक्की दी गई कि मुख्तलिफ फनून यानी रंगमंच, मौसिकी, शायरी और बसरी फनून एक दूसरे के करीब आ सके। भारत भवन की यही खूबी थी कि यहाँ फन को अलग अलग खानों में बांटने की बजाय उनके दरमियान मुकालमा पैदा करने की कोशिश की गई। इसी माहौल में रंगमंडल ने भोपाल के रंगमंच को एक नई सम्त दी। रंगमंडल मध्य प्रदेश की पहली सरकारी इमदाद याफ्ता थिएटर के तौर पर सामने आया और इसके जरिए फनकारों को मुसलसल तरबियत

तजर्बे और मुख्तलिफ रंगमंची तकनीकों से रोशनास करने का मौका मिला। बीवी कारंत ने लोक रंग रिवायात को जदीद रंगमंची तजर्बात से जोड़ने की कोशिश की। उनकी दिलचस्पी सिर्फ स्टेज की तकनीक में नहीं थी, बल्कि इस बात में भी थी कि रंगमंची अपनी मिट्टी की आवाज को किस तरह अपने अंदर जगह देता है। यही वजह है कि लोक धुनें, मकामी बोलियां और लोक अदाकारी के अंदाज जदीद रंगमंची पेशकश का हिस्सा बने। इस तरह भोपाल के स्टेज पर जदीदियत और रिवायत एक दूसरे के मुख्तलिफ नहीं बल्कि एक दूसरे के माविन बनकर सामने आए। सामीन, इस मौजू पर हम और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सुनेंगे एक गजल गुलकारा आशा भोसले की खूबसूरत आवाज में, और कलाम है शहजाद जालंधरी का। समाप्त कीजिए।

दोस्तों, अभी आप गुलकारा आशा भोसले की आवाज़ में गज़ल समात फरमा रहे थे और कलाम था शहजाद जालंधरी का। रंगमंची दुनिया की तरफ हम वापस आते हैं और बात करते हैं इस दुनिया के स्टेज, रोशनी और पर्दे जितने अहम हैं, उतनी ही अहम वो मिट्टी है जिससे फनकार अपनी जुबान, अपना अंदाज और अपनी कहानी हासिल करता है। अगर रंगमंच बाहर से लाई गई तकनीकों का नाम होता तो शायद हर शहर का रंगमंच एक जैसा दिखाई देता, लेकिन असल रंगमंच वो है जो अपने समाज की आवाज पहचानता है। भोपाल का ये सकाफती मरकज सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसकी बाजगश्त दुनिया भर में सुनी गई। रंगमंडल के कैनवास को बड़ा करने के लिए बैनुल अक्वामी सतह के मायानाज थिएटर डायरेक्टर्स को मदु किया गया। जब भारत भवन कायम हुआ तो दुनिया के अजीम तरीन डायरेक्टर पीटर ब्रूक ने यहाँ 4 दिन का वर्कशॉप मुनाकिद किया। जर्मनी के मशहूर डायरेक्टर फ्रिट्स बेनेविट्स ने रंगमंडल के साथ कसरत से काम किया। मध्य प्रदेश की लोकरंग रिवायत में माच, नाचा और पंडवानी जैसे अंदाज अपनी अलग शनाख्त रखते हैं। इन्हीं लोक रिवायत से रंगमंच को अपनी जमीन, अपनी लय और अपनी जुबान हासिल होती है। हबीब तनवीर का रंगमंच भी इस बड़े सवाल से जुड़ता है कि जिस समाज की कहानी स्टेज पर बयान की जा रही है, उसकी अपनी जुबान और उसके अपनी अदाकारी को स्टेज पर कितनी जगह मिलनी चाहिए। सामीन इस ख्याल को कुछ अशार के साथ महसूस करते हैं और सुनते हैं इस प्रोग्राम की अगली पेशकश गुलकारा फरीदा खानम की आवाज में। समाप्त कीजिए।

दोस्तों, अभी आप गुलुकारा फरीदा खानम की आवाज में गजल समाअत फरमा रहे थे। सामईन, जब हम रंगमंच और रिवायत की बात करते हैं तो भोपाल का लोक रंग मेला हमारे सामने उभरता है, जो महज एक त्योहार नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सकाफती रूह का जश्न है। हर साल यौमे जमहूरिया से शुरू होने वाला ये 5 रोजा मेला मध्य प्रदेश के महकमा सकाफत और ट्राइबल म्यूजियम मिलकर मुनाकिद करते हैं। गुज़िश्ता 20 सालों से ये मेला हमारे देही और कबायली विरसे की तरवीज कर रहा है। ये मेला साबित करता है कि रिवायत जमूद का नाम नहीं बल्कि पानी की तरह बहती हुई नई नस्लों के दिलों को सैराब करती है। शहर के सकाफती मराकज के दरमियान ये ताल्लुक सिर्फ प्रोग्रामों का नहीं बल्कि फिक्र और तजर्बे के तबादले का भी है। एक जगह से निकलने वाली आवाज दूसरी जगह तक पहुंचती है और फिर कोई नया फनकार, नया शायर या नया रंगकार इसे अपने अंदाज में आगे बढ़ाता है। इस सिलसिले में उर्दू की अपनी खास अहमियत है। भोपाल की तारीख में उर्दू अदब, शायरी, मुशायरे और महफिलों की पुरानी रिवायत रही है, इसलिए यहाँ के सकाफती मंजरनामे को सिर्फ रंगमंच के जरिए समझना भी मुकम्मल तस्वीर नहीं देता। रंगमंच, शायरी, मौसिकी और लोक फनून जब एक ही शहर की फिजा में सांस लेते हैं तब ही इस शहर की सकाफती शनाख्त पूरी तरह सामने आती है। और शायद इसीलिए भोपाल में रंगमंच को सिर्फ एक फन नहीं बल्कि मुख्तलिफ आवाजों के दरमियान एक पुल की तरह भी देखा जा सकता है। समय इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश गुलकार विनोद सहगल की आवाज में समाप्त कीजिए।

दोस्तों अभी आप गुलकार विनोद सहगल की आवाज़ में गजल समात फरमा रहे थे। भोपाल की सकाफती शनाख्त किसी एक दौर या जुबान की मोहताज नहीं, इसमें उर्दू अदब की नज़ाकत, हिंदी की रवानी और मालवा की तारीख, लोक थिएटर की सोंधी खुशबू रची बसी है। यहाँ रंगमंच रिवायत को नया स्टेज देता है और रिवायत रंगमंच को अपनी जमीन। जब कोई नौजवान स्टेज पर आकर भोपाल की किसी मकामी बोली में मुकालमा अदा करता है तो समझें रिवायत अपने नए सफर पर निकल चुकी है। जिंदा तहजीब की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि वो माजी की महज कोई बेजान याद न बनकर रह जाए बल्कि हर नए दौर में एक नई आवाज हासिल करती रहे। इसी के साथ आज का हमारा ये खूबसूरत यादगार सफर अपने अख्तिताम पर पहुंचता है। आज आपने हमारे इस खसूसी पड़ाव में सुना रंगमंच और रिवायत भोपाल के सकाफती मराकज। इस सफर के दौरान आपको झीलों के खूबसूरत शहर भोपाल की उन लाजवाब आवाजों की झलक जरूर मिली होगी जो कभी स्टेज से, कभी जादुई शायरी से, तो कभी मौसीकी के सुरों से और कभी लोक रिवायत की खूबसूरत ताने बाने से इस शहर की सच्ची शनाख्त को आज भी जिंदा रखे हुए है। अब वक्त हुआ है आपसे रुख्सत लेने का, अपनी मिट्टी की खुशबू, अपने फन और अपने लाजवाब रिवायतों से अपना रिश्ता हमेशा कायम रखें। इसी दिली तमन्ना के साथ अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए मौजू, नई आवाज और नई दास्तान के सफर में। हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय और तजावीज हमें जरूर अरसाल करें क्योंकि आपकी आवाज कहकशां की रोशनी है। हमारा पता नोट फरमाइए, उर्दू प्रोग्राम कहकशां, मार्फत स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462002। उर्दू प्रोग्राम कहकशां को बरोज मंगल रात 9:30 बजे सुनना ना भूलें। अब अपनी दोस्त शीरिन खान को दीजिए इजाजत। आदाब।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम कहकशां। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है आप ही के पत्रों द्वारा भेजी गई फरमाइशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन।

श्रोताओं, मन भवन कार्यक्रम में आपके पत्रों और आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों के साथ हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो सखी पूजा ठाकुर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर निगाहें फिल्म का गीत। स्वर है मोहम्मद अजीज के, बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत की फरमाइश की है हमें कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूरा श्रीमाली ने। मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस पटेल और मन पटेल। सनावस से सुनना चाहते हैं हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक, सचिन कटारिया, श्रीमती प्रभा कटारिया, कृष्णा, विराज, अर्णव एवं काव्यांशी कटारिया। घंटाघर चौक खंडवा से लिख भेजा है हमें संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। इसी कड़ी में जुड़े हैं हमारे साथ नसीब रेडियो श्रोता संघ संजय कॉलोनी खंडवा से जनाब अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जिया उल हक डावर, अब्दुल रहमान डावर, अब्दुल कादर डावर, मोहम्मद हमजा डावर और तुलसी राम वर्मा। ग्राम अमलेश्वर से सुनना चाहते हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर। पालदाना का इंदौर से हसीना भी मंसूरी, अमीना भी और मोहम्मद रफी मंसूरी। यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीत मालाकार और मुस्कान मालाकार। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिक्का, बलविंदर बिरक, जेतक बिरक और मिका बिरक। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

कुमार शानू और साधना सरगम के स्वर में सुनिए दामिनी फिल्म का गीत। बोल हैं समीर के और धुन है नदीम श्रवण की। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन, परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। कासम कॉलोनी सनावत से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरीस खत्री, नूर मोहम्मद खत्री, इरफान मीना, कासिम और हासिम मीना। सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता, प्रांजलि, सोहम, सुभाष और सदानंद। बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मुड़द, नेहा जैन, दीपक, चेतन, दिलीप सिंह पंवार, दीक्षा और कुश मुड़द। सरवानिया महाराज जिला नीमच से सुनना चाहते हैं गोविंद पाटीदार, ममता पाटीदार, पूजा, मधुसूदन और यशस्वी पाटीदार। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। प्रिमप्री वासिम से गब्बा सिंह, सतीश, अभय, अजय और यश। दयापुर भाभली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले। शेरी वडनेर अकोला से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। सपना संगीतारोड़ इंदौर से सुनना चाहते हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जयस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश बत्ता, ये बत्ता परिवार है जिन्होंने पटियाला से हमें पत्र लिखा है। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

कुर्बान इस फिल्म का गीत सुनिए अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण के स्वर में, बोल हैं समीर के। और इस गीत की फरमाइश की है हमें सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया, अस्मा, सालिया, शोएब, पोतरा से मुस्तबा खान, रऊफ भाई और शहीद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो, महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लाहौरी से राजेश कुमार धनंजय, राहुल कुमार धनंजय, विशाल कुमार धनंजय, शीला धनंजय और गायत्री धनंजय, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद, शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से लिख भेजा है हमें विजय महोविया, कविता, संजय, नंदिनी, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, डॉली, देवराज महोबिया और भयू दादा, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना, योगेश, मेंडी, सौरभ और शाइना शर्मा ने, छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतेरी से सुनना चाहते हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा, प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से सुनना चाहते हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश और ऋषि वर्मा, छत्तीसगढ़ सिग्मा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू, सन्नी और कोमल यादव, डोंगरगांव जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबी, राधिका गजबी, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से सुनना चाहते हैं दिनेश वर्मा, दंतेरी से भागवत वर्मा, लवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्स पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं बांसुरी वादन प्रवीण शर्मा का, राग है चंद्रकोश।

अभी आप सुन रहे थे बांसुरी वादन प्रवीण शर्मा का, राग था चंद्रकोस। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। हिंदी में समाचार होंगे जिन्हें दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सके। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत मोरक्को साझेदारी को और अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सातवीं भारत मोरक्को संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्ष वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद और मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्रालय में विदेश व्यापार प्रभारी राज्य सचिव उमर हेजिरा ने की। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओणम की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ओणम नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। ओणम समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना का उत्सव है। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आर एस राघु। The Unified Payments Interface UPI has completed 10 years of transforming digital payments in the country and abroad. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned global recognition as world's largest real-time payment system, with the system now operational across 11 countries. The UPI, which was launched on this day in 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. The Finance Ministry said that the annual transaction volume increased from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decade-long success of UPI service. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's digital payments journey. Defence Minister Rajnath Singh has approved transfer of DRDO-developed technologies of missile systems to country's private defence industry to bolster indigenous manufacturing. This step marks an important milestone in promoting greater participation of the domestic industries in the defence ecosystem by enabling them to undertake indigenous production. India Today highlighted the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas for the continued development and progress of bilateral relations between the two countries. National Security Advisor Ajit Doval co-chaired the 25th round of the special representative talks on the India-China boundary question with Chinese Foreign Affairs Minister Wang Yi in Beijing. The External Affairs Ministry said in a statement that the two representatives agreed to continue their efforts to seek a political settlement of the boundary question, keeping in view their overall and long-term interests. The two sides noted the progress made in implementing the important consensus reached between the leaders in Kazan in October 2024 and Tianjin in August last year. The government is closely monitoring the prevailing seasonal respiratory illness trends across the country through a robust pan-India surveillance network. It stressed that there is no cause for panic or alarm. Secretary of the Department of Health Research and Director General of the Indian Council of Medical Research, Dr. Rajiv Behl, was addressing the media in New Delhi today. He said the influenza viruses currently circulating in the country are consistent with the seasonal patterns observed in recent years. The Supreme Court today agreed to consider setting up a special bench to hear the Centre's plea on OBC creamy layer criteria. The Centre has sought clarification on the applicability of the 11th of March judgment of the Apex Court for candidates of the Civil Services Examination 2025. The Delhi government has said there is currently no shortage of onions or sugar in the capital. Delhi Chief Minister Rekha Gupta reviewed their availability and prices in the national capital today. Government said if the prices rise further, it will procure onions and sugar from central government institution NAFED and arrange to make them available at various locations across the capital. It is also assured that the items will be sold at the procurement price, while the Delhi government will cover transportation and other related costs. The government has debunked claims circulating on social media that the central government will provide 1 year of free mobile recharge to all women on the occasion of Raksha Bandhan. The fact-check unit of the Press Information Bureau, PIB, said that the video is fake. The PIB said that no such announcement has been made by the central government. In men's cricket, hosts Sri Lanka were 265 for 8 against India in their first innings as rain forced early stumps on day 3 of Colombo Test, Sri Lanka trailing by 238 runs. Earlier, visitors declared their first innings at 503, powered by Dhruv Jurel and Devdutt Padikkal's centuries. India are currently leading the two-match series 1-0. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Chhattisgarh and East Rajasthan tomorrow. Meanwhile, parts of Delhi NCR witnessed light to moderate rain during the day. IMD has said that cloudy sky conditions will continue to prevail over Delhi with spells of light to very light rainfall for the next 2 days. And that is the end of this news bulletin.
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। आज की हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:51 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। अब आज्ञा दीजिए। जय हिंद।